0: कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 6:05 हुए हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है वंदना कार्यक्रम। सबसे पहले लीजिए सुनिए ज्ञान ज्योति।

क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या जैसे विकारों को त्याग कर विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ लेता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन, प्रभु समरण व अच्छे विचारों के लिए अवश्य निकालें। ज्ञान ज्योति।

लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों का भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। शिव क्रोध में रुद्र तो करुणा में भोलेनाथ हैं। कैलाशपति उमापति भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। जटाओं में बहती गंगा और मस्तिष्क पर चंद्रमा सुशोभित है, ऐसे देवों के देव महादेव को हमारा शत शत प्रणाम।

श्री राम अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उनके हर पथ को सुगम बनाते हैं। जीवन में जब भी ठोकर लगती है, प्रभु का नाम सहारा बनता है। अतः राम नाम को अपने मन से कभी न विसारो।

भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। भक्ति का दीप जलाना है तो राधे नाम जपिए, मन को प्रभु से मिलाना है तो राधे राधे कहिए। प्रेम भक्ति और समर्पण की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए मन की वीणा के तारों को भक्ति के सुरों से सजाएं और राधे नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर दें।

हरि नाम वह अमृत है जो जीवन को मधुर बना देता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में प्रेम बनकर बसते हैं और संकट में सहारा बनते हैं। तो आइए भक्ति भाव से श्री हरि का स्मरण करें।

अम्बे माँ ममता में शक्ति है और उनकी भक्ति में भक्तों का कल्याण और उद्धार है। माता रानी हमारे मन से भय, चिंता व निराशा को दूर करती है, तो आइए प्रेम व श्रद्धा से उनकी भक्ति में खो जाएं।

श्रोताओं, भक्ति के इसी क्रम में आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ भाग 11।

श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी चार प्रकार के बताए गए हैं, धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात भगवान के तत्व से परिचित सहज प्रेम मात्र प्रेम से भजने वाले। ये सभी पुण्यात्मा की संज्ञा के अधिकारी हैं। राम शब्द के दो अक्षर वर्षा ऋतु के सावन भादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं, कहने सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज सरल और सुंदर नर नारायण की भांति सुंदर भाई, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन दो अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण कर्णफूल से की है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और अनुराधा पौडवाल। संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित बरेली किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: कार्यक्रम विवरण के बाद यानी 6:55 पर संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात का अंक और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर सुनिएगा हिमाचल डायरी का आज का अंक। सुबह 8:35 पर हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम कानून की बात, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 9 बजे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे और 9:20 पर आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। 9:30 पर विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुबह 10 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। लघु वार्ता आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर। कुछ तुम चलो कुछ हम चलें कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 10:15 पर। 10:45 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम लोक रंग। सुबह 11 बजे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। वनिता मंडल ये कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 12 बजे और 12:30 पर कार्यक्रम रहेगा सैनिकों के लिए। दोपहर 1 बजे हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 2 बजे सुनिएगा दोपहर समाचार और 2:15 पर मिड डे न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 2:30 पर विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुनिएगा। दिन में 3 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 3:10 से लेकर शाम 5 बजे तक हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। 5:05 पर कार्यक्रम रूपरेखा के बाद सुनेगा भजन संध्या। मंच कार्यक्रम युवा साथियों के लिए लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। नए पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने सुनिएगा शाम 6:05 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे खेती बाड़ी। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे शाम 7 बजे। 7:05 पर सुनेगा देश गान। शाम 7:10 पर भारत सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। विषय रहेगा किसान विभाग। शाम 7:45 पर आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम बातें आपकी गीत हमारे। 8:45 पर समाचार संध्या का अंक और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे रूपक आप सुनेंगे और रात्रि 10:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम चांदनी रातें का। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की। FM बैंड 101.8 MHz पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अष्टमः भारत इण्डोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इण्डोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता। भारत इण्डोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा समुद्रीय व्यापार निवेशः औषधीय स्वास्थ्य सेवाः डिजिटल ऊर्जा सम्पर्कः अंतरिक्षम् शिक्षा दूतावास संस्कृति क्षेत्रम् इत्यादीनां विविध क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितानां क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विषयेपि विचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। डॉक्टर जयशंकरः स्वस्य प्रारंभिक भाषणे उक्तवान् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये संयुक्त आयोगः चतुर्णां वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरम् आहूयते। अस्मिन् उपवेशने द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु महती प्रगति अभवत्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः अद्य चण्डीगढ़नगरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघस्य सीपीए इत्यस्य भारतक्षेत्रस्य त्रिदिवसीय मण्डल द्वितीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः, सम्पूर्ण देशस्य 15 विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन एनटीए इत्यनेन अस्मिन् मासे 21 आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 नीट यूजी पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षानगर सूचनापत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्ने 2 सायं 5:15 पर्यन्तं भारतस्य 150+500 नगरेषु 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। एनटीए इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचनापत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति, अपितु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षा केंद्र ज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिक जालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वां राज्यं भविष्यति। राज्ये एबीपीएम जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थम् अद्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारश्च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः जेपी नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ एमओयू इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एलपीएमएस इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्ल क्रीडकाः ह्यः मंगोलियायां ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके 2 कांस्य पदके च विजितवन्तः। इति वार्ताः।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 7:05 हो चुके हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत आज के सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में। जानकारियों से भरपूर, मनोरंजन से भरपूर ये कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। आपके साथ मैं हूँ प्रकाशा। हमेशा की तरह एक खूबसूरत से विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जीवन एक विशाल पुस्तक की तरह है जिसके हर पन्ने पर एक नया अनुभव, एक नई सीख और एक नई कहानी लिखी होती है। कभी ये हमें हंसना सिखाता है तो कभी धैर्य रखना, कभी सफलता के शिखर पर पहुंचाता है तो कभी कभी हमें असफलता भी देखनी पड़ती है और इसके माध्यम से भी हमें स्वयं को पहचानने का जो है अवसर मिलता है। इस जीवन के कई पहलू भी हैं और हर पहलू हमें कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। रिश्तों का पहलू हमें प्रेम, अपनापन और विश्वास का महत्व बताता है, तो कर्म का पहलू हमें सिखाता है बिना मेहनत के कोई भी सपना साकार नहीं होता, और समय का पहलू ये हमें याद दिलाता है कि हर पल अनमोल है और इसे व्यर्थ हमें बिल्कुल नहीं गंवाना है। वहीं संघर्ष का पहलू हमें मजबूत बनाता है और ये विश्वास दिलाता है कि अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। बिल्कुल जी, और इसे हर दिन को एक नए अवसर की तरह हमें स्वीकार करना है। हर व्यक्ति से कुछ सीखने का प्रयास हमें करना चाहिए और हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन की असली सुंदरता मंजिल में नहीं बल्कि उस यात्रा में है जिसे हम प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ जो है तय करते हैं। बिल्कुल, और देखिए ये जो जीवन है हमारा, इसका सबसे बड़ा ज्ञान ये नहीं है कि हम कितना जानते हैं बल्कि ये है कि हम हर अनुभव से कितना सीखते हैं और परिस्थिति में कितनी सकारात्मकता बनाए रखते हैं। ये सारी चीज़ें जीवन हमें सिखाता है, हर पल हर दिन कुछ ना कुछ सीख हमें देकर जाता है। जी बिल्कुल, और यही सीख हमें अपने जीवन में उतारनी है। जब भी लगे कि कभी ऐसी थोड़ी सी मायूसी है चेहरे पर या मन में थोड़ा सा सूनापन है, तो बिल्कुल जी जुड़े हैं आप आकाशवाणी हमीरपुर के साथ, जुड़े रहिए और देखिए ये खूबसूरत विचारों के साथ साथ और मनोरंजन के साथ साथ जानकारियां देता है आकाशवाणी हमीरपुर। तो आप देखिए जानकारी भी ज़रूर साझा करेंगे लेकिन बात मनोरंजन की निकली है तो मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे से गीत हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: जी आओ चलें एक ऐसे गगन के तले जहां प्यार ही प्यार पले। ये गीत बिल्कुल जी खूबसूरत सा, ये हमें जो है कल्पनाओं के शहर में ले जाता है और सैर करवाता है वहाँ की। ये गीत हमें ये याद दिलाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके सुंदर सपने हैं, और इन्हीं सपनों के सहारे वे जीवन की कठिन राहों को भी मुस्कुराते हुए पार कर लेता है। बिल्कुल जी, हम सभी चाहते हैं ना कि कभी कभी इन जिम्मेदारियों से, इन चिंताओं से निकलकर एक ऐसी दुनिया में चलें, एक ऐसी जगह चलें जहाँ सुकून हो, प्यार हो, अपनापन हो और हर ओर खुशियों की बहार हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ न कोई गम हो, न किसी की चिंता, बस सपनों का सुंदर आसमान और उम्मीदों की मीठी छांव हो। दूर गगन की छांव में फिल्म से ये गीत था किशोर कुमार की आवाज़ में। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, इतिहास की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आपने अपने रेडियो सेट पे ट्यून किया है आकाशवाणी हमीरपुर 101.8 MHz पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

चलिए अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आज के इतिहास की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आज है 8 जून का दिन और आज के दिन कुछ खास बातें जो इतिहास के पन्नों में दर्ज

हैं, उनकी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। ১৯৩৬ में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। जी हाँ, ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR। आज ही के दिन इसका नाम पड़ा था ऑल इंडिया रेडियो, और आज जो है वो हम मना रहे हैं इसकी 90वीं वर्षगांठ। जी हाँ, 90 वर्षों का शानदार इतिहास, और ये जो हम सबको जोड़े रखता है एक दूसरे के साथ आकाशवाणी के जरिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। 8 जून 1936 को इसी दिन भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर अखिल भारतीय रेडियो यानी AIR कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण को दर्शाता है, जब एक ऐसी आवाज़ का जन्म हुआ जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। आकाशवाणी के संवाददाता की रिपोर्ट है कि 7 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की तत्कालीन आधिकारिक पत्रिका द इंडियन लिसनर के पहले पृष्ठ पर दुनिया को AIR की घोषणा की गई, और ये उस जादुई शुरुआत से जो है ठीक एक दिन पहले ही खबर छपी। समय में ठहर सा गया एक पल, एक ऐसी विरासत जो आज भी जीवित है, और इस विरासत को हमें हमेशा ऐसे ही संजोकर रखना है, एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना है, आकाशवाणी के साथ जुड़े रहना है। आकाशवाणी का साधारण सा दिल्ली स्टेशन एक ऐसा केंद्र बन गया जहां आवाजों को पंख मिले और इतिहास को एक माइक मिला। इन शांत दीवारों से ऐसी गूंज निकली जिसने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से लेकर आज तक कालातीत, भावपूर्ण और अविस्मरणीय बना हुआ है। स्वतंत्रता के बाद AIR का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशनों का संचालन करता है जो भारत की 98% आबादी तक पहुंचता है। 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। आकाशवाणी का बाह्य सेवा प्रभाग 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है, वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज पहुंचाता है और प्रवासी भारतीयों से जुड़ता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर खरा उतरते हुए AIR का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण में जो है वो उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए इस विशाल देश के प्रत्येक निवासी को विभिन्न भूभागों में 24 घंटे 7 दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार और विचार उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। जी बिल्कुल, हमारा गौरवपूर्ण इतिहास यानी आज़ादी के समय से ही ये जो है चला आ रहा है, और आज इसके 90 वर्ष पूर्ण हुए हैं जब हम ये वर्षगांठ मना रहे हैं। हम सबको गर्व है और गौरव में इतिहास के साथ जुड़कर जो है रेडियो के साथ जुड़कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हर कोई आप श्रोताओं के साथ जुड़कर हमें गौरव होता है, और हमें उम्मीद ये ज़रूर है कि हमारे श्रोता भी खूब आनंद लेते होंगे आकाशवाणी की। देखिए, बहुत सारी हर तरह की जानकारियों का और मनोरंजन का ये खजाना है आकाशवाणी। तो ये तो ही आज के दिन के इतिहास की बात, यानी जो आकाशवाणी से जुड़ा हुआ इतिहास है, जो कि 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का जो नाम बदल के रखा गया था ऑल इंडिया रेडियो। अब और इतिहास की बात करें तो 1948 में भारतीय विमानन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दिन था आज का दिन। भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की थी आज ही के दिन। 1997 की बात करें तो पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के महेश भूपति ने मिश्रित युगल खिताब जीतकर इतिहास बनाया था। 2002 में फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आतंकी संगठन अबू सयाफ के विरुद्ध अभियान शुरू करने का आदेश आज ही के दिन दिया था। २००४ की बात करें तो भारत सहित दुनिया के कई देशों में 100

0: 22 वर्ष बाद पुनः शुक्र पारगमन का नज़ारा देखा था। जी, और अब बात करें जन्म की, किन महान हस्तियों का जन्म हुआ आज के दिन हुआ था। 1996 में भारतीय एथलीट एमपी जवीर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और कुछ ऐसी महान हस्तियों की बात करते हैं जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का निधन हुआ था सन 2009 में आज ही के दिन। और 1968 में मदुराई मणि अय्यर, जो कि कर्नाटक संगीत के गायक थे, उनका भी निधन आज ही के दिन हुआ था। और आज का ये जो दिन है, विश्व महासागर दिवस के रूप में हम मनाते हैं, साथ ही साथ विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। तो ये तो हुई बात आज के इतिहास की, यानी 8 जून से जुड़े हुए कुछ खास ऐतिहासिक तथ्य जो आपके साथ साझा किए। और अब चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, एक और गीत सुनते हैं। लेकिन इस गीत से पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है। और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जी, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना, तीन देवियां फिल्म से इसे हमने लिया था। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से एक छोटा सा अंतराल, और उसके बाद वापिस आते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

इस अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज की ताज़ा तरीन खबरों की बात करते हैं। सबसे पहली खबर की बात करें तो कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भारत चीन के बीच समझौते पर आपत्ति जताते हुए नेपाल ने फिर दावा किया कि कालापानी वाली लिपुलेख क्षेत्र उसके हिस्से में आते हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भारत के साथ सीमा विवाद, कूटनीति व खुले दिल से बातचीत के जरिए

इस सुलझा लेने की उम्मीद जताई है। उन्होंने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर भारत के रुख का समर्थन भी कर दिया है। जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी की दोबारा परीक्षा के लिए शहरों की सूची जारी कर दी है। 21 जून को देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा होगी। अभ्यर्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन संख्या और पासवर्ड की मदद से शहर की जानकारी देख सकते हैं। परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन एंड पेपर मोड में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनकी पहली पसंद के शहर में केंद्र देने का प्रयास किया गया है। अभ्यर्थियों से परीक्षा और एडमिट कार्ड से जुड़े अपडेट के लिए एनटीए की वेबसाइट पर नज़र रखने के लिए कहा गया है।

जी, अगली खबर की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया ने अपने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हुए रक्षा, समुद्री व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देने के तौर तरीकों पर चर्चा की। ये चर्चा रविवार को आयोजित 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में की गई, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनी ने की। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की, मुख्य रूप से राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने का ठोस इस पर जो है ठोस चर्चा हुई है। समुद्री और शिपिंग सहयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी है।

जी, अगली खबर की बात करते हैं और हिमाचल से जुड़ी हुई खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, एसीएस और उपायुक्तों का वेतन 6 माह तक स्थगित करने का फैसला 3 माह में ही वापस ले लिया है। अब उन्हें जुलाई में अप्रैल, मई और जून के अरेर के साथ पूरा वेतन मिलेगा। रविवार को सचिवालय में हुई वित्त विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आर्थिक हालात को पटरी पर लाने के लिए मंत्रियों, विधायकों समेत अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के वेतन में कटौती का निर्णय अपनी बजट घोषणा के दौरान लिया था। इसे 1 अप्रैल से लागू किया गया था, जिसमें सीएम का 50%, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों का 30%, विधायकों का 20%, मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर के अफसरों का 30% और इससे नीचे की श्रेणियों का 20% से लेकर 3% तक वेतन 6 माह तक स्थगित करने का फैसला लिया गया था। हालांकि क्लास ए और बी के अधिकारियों के वेतन कटौती के फैसले को 15 अप्रैल को वापस ले लिया गया था।

और साथ ही देखिए मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार कोविड विभाग की बैठक में 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनभोगियों के लंबित पेंशन एरियर को जारी करने का निर्देश दिया है। ये एरियर अगले महीने वितरित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि एरियर के लिए धनराशि सरकार देगी। कर्मचारियों के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य की रीढ़ हैं। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। और साथ ही हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक में फैसला लिया कि निगम पेंशनरों को प्रत्येक माह की 7

तीनों पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार हो गया है। राजधानी शिमला से लेकर कुल्लू मनाली, धर्मशाला, चंबा, लाहौल स्पीति और मंडी तक हर प्रमुख पर्यटन स्थल पर सैलानियों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। होटल कारोबारियों के अनुसार प्रदेश के अधिकांश होटलों में ऑक्यूपेंसी 80 से 90 फीसदी तक पहुंच गई है। और देखिए, साथ ही पहाड़ों पर हाल ही में हुई बर्फबारी और बारिश ने पर्यटकों को खासा आकर्षित किया है। और देखिए, अब मौसम की ही बात करें तो देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेजी से आगे जो है वो बढ़ रहा है। मानसून मौसम विभाग के अनुसार रविवार को मानसून पूरे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम, अरुणाचल के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। पिछले 24 घंटों में केरल में अति भारी बारिश दर्ज हुई है। अभी मानसून की उत्तरी सीमा देवगढ़, कोपल, अनंतपुरम और चेन्नई से होकर गुजर रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 3 से 4 दिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। मानसून की ये तेज प्रगति वायुमंडल के निचले और मध्य स्तरों पर बने कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन और निम्न दबाव क्षेत्रों पर निर्भर कर रही है। वहीं अगर हिमाचल के मौसम की बात करें तो हिमाचल के जिला ऊना, बिलासपुर और सोलन में 9 और 10 जून को लू चलने का अलर्ट है। 11 से 13 जून तक अलग अलग स्थानों पर बारिश, बर्फबारी और गरज चमक के साथ हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। वहीं शिमला समेत कई जिलों में मौसम साफ रहा है। और रविवार को तावो में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और ऊना में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। अधिकतम तापमान कुछ जगह 2 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 11 जून से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। 11 और 13 जून को अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये तो हमने बात की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की, खेल खबरों के साथ बिल्कुल आपके समक्ष रूबरू होंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आपने अपने रेडियो सेट पे ट्यून किया है आकाशवाणी हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। अंतराल से पहले जो गीत आपने सुना मन्नाडे की आवाज में था, नवबहार फिल्म से इसे हमने लिया था। चलिए अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, आज की कुछ ताजा तरीन खेल खबरों की बात करते हैं। जी हाँ, सबसे पहली खबर फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का बिगुल बजने में अब 3 दिन बाकी हैं। दुनिया भर के खेल प्रेमी अपनी पसंदीदा दिग्गज टीमों की जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन फुटबॉल का इतिहास गवाह है कि असली रोमांच वे टीमें लाती हैं जिन्हें डार्क हॉर्स कहा जाता है। ये उन मजबूत टीमों का टैग बन चुका है जो पारंपरिक चैंपियन तो नहीं है लेकिन किसी भी बड़ी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हैं। हालांकि ये टैग कई बार खतरनाक भी साबित होता है, जैसे यूरो 2020 में तुर्की को छुपा रुस्तम माना गया था लेकिन वह अपने तीनों ग्रुप मैच हार गई। पिछले वर्ल्ड कप में सर्बिया अपने ग्रुप में एक भी मैच जीते बिना सबसे नीचे रही थी। इसके विपरीत साल 2014 में कोस्टा रिका ने इंग्लैंड, इटली और उरुग्वे जैसे दिग्गजों के ग्रुप को टॉप किया था। और 2022 की बात करें तो मोरक्को सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था। तो ये खेल का मैदान है, इसमें उतार चढ़ाव देखे जाते हैं लेकिन रोमांच जो है वो जरूर रहना चाहिए खेल के प्रति। और देखिए अगली खबर की बात करें, क्रिकेट की बात करते हैं। भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट में टीम इंडिया ने दबदबा बना लिया है। न्यू चंडीगढ़ में पहले दिन 3 सेशन अपने नाम करने के बाद दूसरे दिन का पहला सेशन मेजबान ने गवाया जरूर है लेकिन शेष 2 सेशन में 5 विकेट लेकर फिर फ्रंट सीट अपने नाम कर ली है। रविवार को भारतीय बल्लेबाजों की शुरुआती जो है वो कुछ शुरुआत अच्छी नहीं रही है लेकिन सुंदर की अर्धशतकीय पारी के साथ साथ मानव और सिराज के योगदान ने स्कोर को 8 विकेट के नुकसान पर 564 तक पहुंचा दिया है। सेफी ने शानदार बॉलिंग करते हुए 6 विकेट लिए।

भारतीय धावर अनिमेश कुजूर ने न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन पुरुषों के 200 मीटर स्पर्धा में रजत जीता है। कुजूर ने 20.47 सेकंड का समय निकाला, जो उनका इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और इसके साथ ही उन्होंने 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का टिकट भी हासिल कर लिया है। जी, और अगली खबर की बात करें, भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रागन नंदा ने हाल ही में नॉर्वे चेस जीतकर इतिहास रच दिया था। उनकी बहन भी पीछे नहीं है। आर वैशाली ने जापान के टोक्यो में WR महिला चेस टूर के पहले इवेंट का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में कजाकिस्तान की अलुआ नुरमान को जो है वो 0.5 से हराया है। सेमीफाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन अलेक्जेंड्रा को उन्होंने हराया।

0: विश्व की नंबर एक जोड़ी कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड ने फ्रेंच ओपन महिला युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल में नंबर दो जोड़ी अन्ना दानिलीना और अलेक्जेंड्रा क्रिनिक को जो है वो हराया। तो ये थी कुछ ताज़ा तरीन खेल खबरें आपके साथ हमने साझा की, और अब चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, एक गीत सुनेंगे। गीत सुनने से पहले एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
1: बदलो आदत, बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत, बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था ससुराल जी। और कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे, और कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट में बात करते हैं योग की। जी हाँ, जीवन में अगर योग है तो हम निरोग हैं, निरोग रहा जा सकता है, बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है अगर हमने अपने जीवन में जो है वो योग को शामिल कर लिया। और देखिए ना, आज के वक्त में हर कोई जो है इससे जुड़ना चाहता है, जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग जो हैं इसके साथ अपने जीवन में इसे शामिल करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ हमें ज़रूर योग को शामिल करना चाहिए। योग और स्वस्थ वृद्धावस्था का विज्ञान, इस विषय पर आज हम इस सेगमेंट में चर्चा करेंगे। उम्र बढ़ने के साथ सेहतमंद और स्वतंत्र रहने के लिए योग एक बेहद कारगर प्राकृतिक और वैज्ञानिक उपाय है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान से शारीरिक लचीलापन, संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये बढ़ती उम्र में न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक समस्याओं को धीमा करने में जो है वो मदद करता है, जैसे दर्द और सूजन की समस्या जो है उन्हें कम करता है योग। तो देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार तो ये बात है कि नियमित योग उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है, अगर वो बात हम करें तो सबसे पहले तो बात आती है संतुलन की। संतुलन और गिरने से बचाव हो जाएगा। उम्र के साथ जो संतुलन बिगड़ने और गिरने की समस्या आम हो जाती है, योग शरीर के संतुलन और मुद्रा में सुधार करता है, जिससे चोट लगने का जोखिम जो है वो कम हो जाता है। यानी आपको चलने फिरने में जो है वो परेशानी नहीं होगी। कई बार होता है ना कि हमारा संतुलन बिगड़ जाता है और कई बार हम गिर भी सकते हैं। तो अगर हम योग का सहारा ले रहे हैं और हमने अपने योग को शामिल किया है जीवन में, उन आसनों को शामिल किया है, तो ज़रूर हम इससे बच सकते हैं। साथ ही मस्तिष्क स्वास्थ्य की बात करें तो योग और ध्यान मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाते हैं, और ये हिप्पोकैम्पस जैसे क्षेत्रों की रक्षा करता है जो याददाश्त और उम्र से जुड़ी संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने में सहायक है। यानी आपके जो मस्तिष्क स्वास्थ्य है वो भी सही रहेगा। साथ ही देखिए, सूजन और तनाव में कमी आ सकती है। योग तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के स्तर को कम करता है। ये शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है, जो कई पुरानी बीमारियों और समय के साथ से पहले बूढ़े होने का कारण बनती हैं। कई बार होता है ना कि हमें कोई किसी तरह का कोई दर्द हो जाता है, तो उस दर्द की वजह से जो है हम चल फिर नहीं सकते, थोड़ी मुश्किल होती है। तो इन चीज़ों को शामिल करेंगे, योग को शामिल करेंगे, तो ज़रूर उसमें मदद मिलेगी आपको। मांसपेशियों और जोड़ों की मजबूती के लिए भी बहुत ज़रूरी है योग। योग से मांसपेशियों में मजबूती आती है और जोड़ों का जो लचीलापन है वो बरकरार रहता है, तो इससे जो है वो गठिया जैसे रोगों में भी राहत मिलती है। बिल्कुल जी, तो ज़रूर हम करें, प्राणायाम करें श्वास नियंत्रण के लिए, और साथ ही ताड़ासन और वृक्षासन हम कर सकते हैं, जिससे कि बैलेंसिंग हमारी जो है वो ठीक रहेगी। और साथ ही भद्रासन हम कर सकते हैं, जो कि हमारे घुटनों के लचीलेपन के लिए बेहतरीन है। तो योग को अपने जीवन में हर कोई शामिल करे, और बढ़ती उम्र के साथ तो हमें ज़रूर इसे शामिल करना ही करना है। योग के आसनों से हम अपनी एजिंग को भी जो है वो कम कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, आगे बढ़िए योग के साथ। और अब गीत के साथ भी हम आगे बढ़ते हैं, आइए सुनते हैं।

0: जी, समय ये बिल्कुल कम है, ये गीत हम पूरा नहीं सुन पाए, लेकिन अगले किसी कार्यक्रम में ज़रूर आपके साथ ये साझा करेंगे। अब इसी के साथ आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात का अंक, और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ोरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
4: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
3: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित

0: रोकने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश

0: भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
1: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी

0: उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस अंक में विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमीरपुर केंद्र द्वारा संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के योगा सत्र में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय योगासन खिलाड़ी यशोवर्धन अत्री ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने युवाओं से नियमित रूप से साइकिल का उपयोग करने व फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। प्रतिभागियों ने साइकिल रैली व योग सत्र के माध्यम से फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए कमरुनाग क्षेत्र में स्वच्छ पहाड़ सुरक्षित हिमाचल अभियान चलाया। कुलपति प्रोफेसर ललित अवस्थी के नेतृत्व में 106 सदस्यीय दल ने रोहाड़ा से देव कामरुनाग ट्रेल तक स्वच्छता अभियान संचालित किया। इसमें शिक्षकों, कर्मचारियों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। अभियान के दौरान मार्ग में फैले प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर उनका पृथककरण किया गया। कुल सचिव शशि पाल नेगी के समन्वय से वन विभाग के सहयोग से अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान करीब 55 किलोग्राम सूखा प्लास्टिक कचरा एकत्र किया नगर निगम मंडी को सौंपा गया और अभियान की विशेषता QR कोड आधारित स्वच्छ एवं हरित कामरुनाग संकल्प रही, जिसके माध्यम से 124 लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की डिजिटल शपथ ली। संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रवास के दौरान आज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के उपलक्ष्य में विकसित भारत सम्मेलन में भाग लेंगे, जो बसंत रिजॉर्ट हमीरपुर में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 2 बजे हमीरपुर में दिशा कमेटी की बैठक में शिरकत करेंगे। ठाकुर राम सिंह इतिहास शोध संस्थान नेरी में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति, सिद्धांत और व्यवहार विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का रविवार को समापन हो गया। कार्यशाला का आयोजन ठाकुर राम सिंह इतिहास शोध संस्थान, सरदार पटेल विश्वविद्यालय और SGVN के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। समापन सत्र में आचार्य कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ प्रोफेसर नारायण सिंह राव और डॉक्टर सूर्य ठाकुर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर शोध और इतिहास लेखन के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की गई।

हिमाचल प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और युवाओं को रोजगार स्वरोजगार की ओर आकर्षित करने के लिए उद्योग विभाग ने प्रदेश भर में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। विभाग की ओर से विभिन्न जिलों में विशेष जागरूकता व प्रोत्साहन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में सरकारी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देश भर में 9वां स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही CUHP हिमाचल का सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय बन गया है। IIRF रैंकिंग शैक्षणिक प्रतिष्ठा, शोध परिणाम, रोजगार क्षमता, छात्र प्रोफाइल, संस्थागत विकास और जनधारणा सहित 9 मानदंडों के आधार पर तैयार की जाती है। हिमाचल डायरी के आज के अंक में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 MHz पर सुबह के 8:35 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

जब तक है जान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी राघव माथुर, शिल्पा राव की, गुलजार के बोल थे ए आर रहमान की तर्ज थी। चित्रलोक कार्यक्रम में अब ये गाना, आवाज मोनाली ठाकुर की है।

0: लुटेरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम।

श्रोतो, अब तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। आज का विषय है नालसा एसिड हमला पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016। वार्ताकार हैं श्री कुलदीप शर्मा, माननीय न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। इनसे बातचीत करेंगे श्री अनुज कुमार।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कानून की बात कार्यक्रम। कानून की बात कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नालसा एसिड हमला पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 विषय पर न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर श्री कुलदीप शर्मा से अनुज कुमार की बातचीत। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुन सकते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कानून की बात। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं माननीय न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर के सचिव श्री कुलदीप शर्मा जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है माननीय न्यायाधीश महोदय आकाशवाणी हमीरपुर के स्टूडियोज में।
2: धन्यवाद अनुज जी।
1: जी श्रोताओं, आज का हमारा विषय है नालसा एसिड हमलों के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016। कुलदीप जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि योजना की पृष्ठभूमि क्या है।
2: अनुज जी, एसिड अटैक एक ऐसा क्रूर अपराध है जो पीड़ितों को न केवल शारीरिक रूप से विकृत करता है बल्कि समाज में उनके अस्तित्व और आर्थिक स्वतंत्रता को भी गहरी चोट पहुंचाता है। पहले यह देखा जाता था कि ऐसे मामलों में पीड़ित को तुरंत उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिलती थी या फिर आर्थिक तंगी या जानकारी के अभाव के कारण वे कोर्ट कचहरी में न्याय से वंचित रह जाते थे और चक्कर लगाते रहते थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक दिशा निर्देशों के बाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे नालसा बोलते हैं, ने वर्ष 2016 में इस विशेष योजना को तैयार किया। इसका मूल दर्शन यह है कि राज्य का यह संवैधानिक और कानूनी कर्तव्य है कि वे ऐसे पीड़ितों को तत्काल मुफ्त कानूनी सहायता, तत्काल और पूर्ण चिकित्सा उपचार, गरिमामयी मुआवजा और समाज में सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करे। यह योजना न्याय को केवल अदालत के कमरों तक सीमित नहीं रखती बल्कि पीड़ित के अस्पताल के बेड से लेकर समाज में दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने तक उसका हाथ थामती है।
1: जी माननीय न्यायाधीश महोदय, बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि ये योजना एक संबल प्रदान करती है उस पीड़ित को, उस व्यक्ति को जिसको उस वक्त बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। इसी में आगे बात करें आपसे तो पीड़ित को जो तुरंत मिलने वाली कानूनी और आर्थिक राहत है, क्या इसके लिए बड़ी लंबी कोई कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है या कितने समय बाद ये मिल जाती है?
2: इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें किसी भी प्रकार की लाल फीताशाही या कागजी कार्रवाई को इलाज और न्याय की राह में बाधा बनने नहीं दिया जाता।
1: जी
2: जैसे ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पुलिस, अस्पताल या पीड़ित के रिश्तेदारों या अन्य किसी भी माध्यम से घटना की सूचना मिलती है, हमारा तंत्र जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए सक्रिय हो जाता है। और इसके बाद जो है तीन स्तरों पे मुख्यतः काम किया जाता है। सबसे पहला होता है वो है विधिक सहायता। पीड़ित व्यक्ति को बिना किसी आय सीमा की शर्त के पूरी तरह से मुफ्त एक वरिष्ठ और अनुभवी कानूनी सहायता के लिए वकील आवंटित किया जाता है। यह वकील पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने से लेकर माननीय अदालत में अंतिम फैसले तक पूरी पैरवी निःशुल्क करता है। दूसरा जो कार्य होता है वो होता है इंटरिम कॉम्पनसेशन, त्वरित अंतरिम मुआवजा जिसे बोलते हैं। तो कानूनी प्रावधानों और संशोधित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत जो एसिड अटैक पीड़ित होते हैं, इनकी चोट की गंभीरता को और इनके चेहरे के विकृतिकरण के आधार पर जो न्यूनतम मुआवजा है वो 3 लाख से 7 लाख तक का निर्धारित है। इसमें इस नालसा योजना का सबसे कड़ा और महत्वपूर्ण नियम यह है कि घटना सूचना मिलने के 15 दिनों के अंदर कम से कम 1 लाख रुपए का इंटरिम जो मुआवजा होता है वो पीड़ित को दिया जाता है ताकि वो शुरुआती और सबसे नाजुक दौर में पैसों की कमी के कारण उसका इलाज जो है प्रभावित ना हो, और जो शेष राशि होती है उसका भुगतान जो है मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 2 महीनों के अंदर सुनिश्चित किया जाता है। जो तीसरा कार्य है वो यह है कि निःशुल्क और अनिवार्य इलाज। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सख्त निर्देश हैं कि देश का कोई भी अस्पताल, चाहे सरकारी हो या निजी, एसिड अटैक पीड़ित को इलाज देने से इनकार नहीं कर सकता है। अस्पताल को अनिवार्य रूप से तत्काल प्राथमिक उपचार और उसके बाद सभी प्रकार की रिकंस्ट्रक्टिव या प्लास्टिक सर्जरी और दवाइयां पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध करवानी होती हैं लोगों को।
1: जी कुलदीप जी, आपने अस्पतालों का यहाँ जिक्र किया। सरकारी अस्पतालों में तो ये चीज़ें अक्सर निशुल्क ही होती हैं, लेकिन आपने निजी अस्पतालों की भी बात करी, तो क्या निजी अस्पतालों में पीड़ित का निशुल्क इलाज किया जाता है? अगर इनकार करता है कोई इलाज करने से, तो क्या इसमें किया जा सकता है?
2: अनुज जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सवाल है। मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को पूरी कानूनी स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूँ कि निजी अस्पतालों के लिए भी यह सख्त विधिक बाध्यता है, और यदि कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल एसिड अटैक पीड़ित का तुरंत और मुफ्त इलाज करने से मना करता है, तो यह कानूनन एक गंभीर अपराध है,
1: जी
2: और इसके लिए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान है। यदि ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा होती है, तो पीड़ित परिवार का सदस्य या कोई भी जागरूक नागरिक हमारे राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1500 पर संपर्क कर सकता है, या सीधे हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर में कार्यालय में सूचना दे सकता है। हम बिना 1 मिनट गवाए इस मामले में कानूनी हस्तक्षेप करते हैं और तुरंत इलाज शुरू करवाना सुनिश्चित करते हैं।
1: जी ये अच्छी बात है कि इसमें कोई देरी नहीं करते और तुरंत तो इलाज है वो किया जाता है। माननीय न्यायाधीश महोदय, इसमें देखिए शारीरिक कष्ट या शारीरिक दुष्प्रभाव तो होते ही हैं, एक पीड़ित की मानसिक स्थिति को भी बड़ा असर पड़ता है, तो क्या ये मानसिक स्थिति को संभालने के लिए भी इस योजना में कुछ खास है?
2: जी, नालसा की ये जो योजना है, ये केवल आर्थिक या चिकित्सीय मदद तक सीमित नहीं है। यह पीड़ित की निजता, गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी पूरी तरह संवेदनशील है। इसके तहत कई सुरक्षात्मक कदम उठाए जाते हैं, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164, या जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके अंतर्गत मैजिस्ट्रेट के सामने जब बयान दर्ज किया जाता है या फिर जब उसकी कोर्ट में गवाही होती है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से एक स्पोर्ट पर्सन या महिला सुरक्षा अधिकारी या फिर एक काउंसलर हमेशा उनके साथ मानसिक संबल के लिए मौजूद रहता है। इसके अलावा विधिक प्रावधानों के अनुसार पीड़ित की पहचान, फोटो या और उसके पते को मीडिया या सार्वजनिक डोमेन में पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है।
1: जी
2: अदालती कार्रवाई के दौरान भी ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो पीड़ित है और आरोपी है, वो सीधे संपर्क में ना आए, वो आमने सामने ना आए, इसलिए इन कैमरा सुनवाई की व्यवस्था की जाती है इसमें। इसके अलावा हमारा प्राधिकरण जो है पुलिस विभाग से निरंतर समन्वय बना के रखता है और सुनिश्चित करता है कि चार्जशीट जो है वो सही समय पे दाखिल हो, मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्राथमिकता के आधार पे हो,
1: जी
2: ताकि आरोपी को जल्द से जल्द कानून के तहत कठोरतम सजा मिल सके।
1: जी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर द्वारा विशेष संबंधित जागरूकता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
2: जी, यद्यपि पिछले कुछ सालों में हमारे जिले में एसिड अटैक का कोई भी मामला नहीं हुआ है, फिर भी हमारा ये निरंतर और निष्ठापूर्वक प्रयास रहता है कि कानून केवल किताबों या अदालतों की फाइलों तक सीमित ना रहे, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए हम नियमित रूप से विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करते रहते हैं, विशेषकर स्कूलों में, कॉलेजेस में, पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां हमारी कोशिश रहती है कि युवाओं, महिलाओं और स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए।
1: जी ये बहुत अच्छे प्रयास हैं और इस तरह के प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए। माननीय न्यायाधीश महोदय, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं इसमें?
2: अनुजी, चिकित्सा विज्ञान से शारीरिक घाव तो भर जाते हैं, लेकिन समाज का सामना करने का जो मानसिक संकोच और डर होता है, उसे दूर करना पुनर्वास होता है। तो कानूनी संशोधनों के तहत एसिड अटैक से उत्पन्न हुई शारीरिक या चेहरे की क्षति को जो है बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ितों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करवाने में मदद करवाता है, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, वजीफों और सरकारी नौकरियों में नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिल सके। हम विभिन्न सरकारी विभागों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के समन्वय से पीड़ितों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, वित्तीय साक्षरता, सिलाई कढ़ाई या अन्य कोई हुनर प्राप्त करने में भी मदद करते हैं।
1: जी
2: हमारा अंतिम उद्देश्य यह होता है कि समाज उन्हें केवल एक बेबस पीड़िता के रूप में ना देखे, बल्कि वह एक सशक्त सर्वाइवर बनकर गरिमा के साथ समाज की

0: मुख्यधारा में लौट जाएं।
1: दीप जी, दया दृष्टि के बजाय उनको एक सर्वाइवर के रूप में देखना चाहिए, एक फाइटर के रूप में देखना चाहिए। लेकिन ऐसे मामले हो ही ना कुलदीप जी, तो तेजाब की जो खुलेआम और अवैध बिक्री होती है उसकी रोकथाम हेतु क्या कुछ खास है?
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, रोकथाम ही सबसे अचूक उपाय होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट और कड़े दिशा निर्देश देकर के ये जो तेजाब की काउंटर पे सेल होती है, खुली खुदरा बिक्री जिसे बोलते हैं, इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को तब तक तेजाब या एसिड नहीं बेच सकता जब तक कि वह ग्राहक का सरकार के द्वारा कोई जारी किया हुआ पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड ना देख ले और उसका पूरा विवरण, नाम, पता, मात्रा एक विशेष रजिस्टर में ना दर्ज कर ले। इसके जो अतिरिक्त खरीदार को जो एक लिखित में घोषणा पत्र देना होता है कि वह किस विशिष्ट और वैध कार्य के लिए जो है इसको खरीद रहा है।
1: जी
0: सबसे महत्वपूर्ण नियम यह भी है इसमें कि 18 वर्ष से कम के किसी भी नाबालिग को तेजाब बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी और दंडनीय है। सभी थोक और ये जो खुदरा विक्रेता होते हैं इनको अपने स्टॉक की घोषणा जो होती है स्थानीय सब डिविजनों में संबंधित एसडीएम के पास नियमित रूप से करवानी होती है। अब अगर कोई भी दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाने के साथ साथ उसका लाइसेंस जो है उसको भी निरस्त कर दिया जाता है और इसके अलावा उसके ऊपर कानूनी मुकदमा भी चलाने का प्रावधान है। सभी व्यापारियों और प्रबुद्ध नागरिकों से भी अपील करूंगा कि वो इस नियम का पूरी कड़ाई और सामाजिक जिम्मेवारी के साथ पालन करें।
1: महोदय, जैसे ये तो बात करी हमने एसिड की, इसके अलावा कई अलग ज्वलनशील रसायन भी होते हैं या कोई पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा हमला किया जाता है, तो क्या जो पीड़ित है वो मुआवजे के हकदार होंगे?
0: जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कानून के तहत जो एसिड या कोरोसिव सब्सटेंस है इसकी परिभाषा जो है बहुत व्यापक है।
1: जी
0: इसमें हर वह रासायनिक पदार्थ शामिल है जो मानव शरीर के संपर्क में आने पर जलन, घाव या शारीरिक विकृति पैदा करने की क्षमता रखता है। इसलिए चाहे हमला सल्फ्यूरिक एसिड से हुआ हो या किसी अन्य ज्वलनशील केमिकल या अत्यधिक तीव्र तेजाब से, पीड़ित को इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली मुफ्त विधिक सहायता, 3 लाख से 7 लाख तक का मुआवजा,
1: जी
0: 15 दिनों के अंदर 1 लाख रुपए की अंतरिम राहत और निशुल्क इलाज के सभी अधिकार जो हैं पूरी तरह समान रूप से प्राप्त होते हैं। कानून तरल पदार्थ के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं करता है, वह कृत्य की क्रूरता को देखता है।
1: जी दीप जी, अब इस कार्यक्रम में क्योंकि समय भी हो चला है, आप जितने भी हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: मैं आकाशवाणी के माध्यम से बस यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारे देश का कानून आपकी सुरक्षा, सहायता और न्याय के लिए सदैव पूरी सजगता के साथ तत्पर है। यदि कभी भी आपके आसपास कोई भी अमानवीय या अप्रिय घटना घटती है तो डरे नहीं, मूक दर्शक बिल्कुल ना बने, तुरंत आगे आए, कानून का सहयोग करें,
1: जी
0: स्थानीय पुलिस को सूचित करें और हमारे राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1500 पर या सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क करें। याद रखिए, एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपका एक त्वरित और सही कदम किसी पीड़ित की जिंदगी को बिखरने से बचा सकता है और उसे सही समय पर न्याय दिला सकता है। आइए हम सब मिलकर ऐसे संवेदनशील, सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण करें जहां हर एक नागरिक, विशेष तौर पे हमारी महिलाएं और बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित और सशक्त महसूस करें।
1: माननीय न्यायाधीश महोदय, आपने बहुत ही अच्छी विशेष संबंधित जानकारी दी, अच्छा संदेश दिया कि महिलाओं और बेटियों को पूरी तरह से सुरक्षित और सशक्त महसूस करवाना चाहिए, तभी हमारा देश जो है आगे प्रगतिशील होकर बढ़ेगा। आकाशवाणी हमीरपुर को आज आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
2: आकाशवाणी शिमला और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे कानून की बात कार्यक्रम के अंतर्गत नालसा एसिड पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 विषय पर न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर कुलदीप शर्मा से अनुज कुमार की बातचीत। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया गया। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नालसा एसिड हमला पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 विषय पर माननीय न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कुलदीप शर्मा से अनुज कुमार की बातचीत। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजे हैं, अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
4: शाश्वत सचदेव विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: दोस्तों, आज 8 जून है, वर्ल्ड ओशंस डे, विश्व महासागर दिवस। आज पूरा विश्व महासागर दिवस मना रहा है। कहा जाता है यदि पृथ्वी का हृदय कहीं धड़कता है तो वो महासागरों में धड़कता है। पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागर से घिरा है। ये महासागर हमें वर्षा, जलवायु, भोजन और ऑक्सीजन का संतुलन प्रदान करते हैं। आज महासागरों में बढ़ता प्रदूषण, खास तौर से प्लास्टिक, एक गंभीर समस्या बन चुका है। जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने जैसी बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं जो महासागरों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। विश्व महासागर दिवस मनाने का ये उद्देश्य है लोगों को महासागरों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना, लोगों को ये याद दिलाना कि समुद्री संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग ना करें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाकर हम महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए संकल्प लें कि प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित रखेंगे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं अब एक और संदेश।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार।

0: है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।

रेखा भारद्वाज की आवाज में डेढ़ इश्किया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा एक और ब्रेक लिया जाए।

आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है। शिल्पा शेट्टी अपनी खूबसूरती, फिटनेस और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी को जन्मदिन की विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको फिर से याद दिला दें, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर।

0: श्रोताओ, अब तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 9:18 और 20 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में यानी 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: बारिश साधनाएं तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। एचआरटीसी पेंशनरों के लिए हर महीने 23 करोड़ रुपए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 20 करोड़ रुपए देगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज संजौली में बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम और मशोबरा में नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र का करेंगे उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से समर्पण व जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का किया आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल आज से ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा शुरू। 5 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव के दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व हिमाचली कलाकार मचाएंगे धमाल। और प्रदेश में पर्यटन सीजन जोरों पर, सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ने से पर्यटन व्यवसायी खुश। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार एचआरटीसी पेंशनरों के लिए हर महीने 23 करोड़ रुपए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 20 करोड़ रुपए देगी। शिमला में एचआरटीसी पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन दी जाएगी। उन्होंने निगम प्रबंधन को अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए उन कर्मचारियों को शीघ्र पेंशन लाभ देने के निर्देश दिए जिनकी पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के निकट संजौली में लगभग 3 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। इस स्टेडियम में रसोईघर, चेंजिंग रूम, शौचालय व ओपन हॉल जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सहित विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री का बाद में मशोबरा में निर्मित नवजीवन, नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। ये केंद्र नशे की समस्या से प्रभावित व्यक्तियों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करेगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधियों से जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सेवा, समर्पण व जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। शिमला में उनसे मिलने आए भाजपा समर्थित नव निर्वाचित प्रतिनिधियों से उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने व संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण होती है। इस अवसर पर सभी नव निर्वाचित सदस्यों ने क्षेत्र के विकास व जन कल्याण के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन व जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के समीरपुर, बगवाड़ा व दाड़ी सहित अन्य स्थानों पर विशेष जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं ने देश के करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, जबकि उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का

0: मनोरंजन करेंगे। ये मंच न केवल स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा समर फेस्टिवल के दौरान स्कूली बच्चों की भाषण प्रतियोगिता, वॉलीबॉल, डॉग शो और फूड फेस्टिवल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन जोरों पर है। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला, डलहौजी, मनाली व खजियार सहित अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की लगातार बढ़ती तादाद से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग काफी उत्साहित हैं। हमारे शिमला जिला संवाददाता ने बताया कि शिमला में हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से लोगों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है।
1: वीकेंड पर बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं, जिससे न केवल होटल कारोबार में तेजी आई है, बल्कि शहर की सड़कों में जाम की समस्या भी बढ़ गई है। जाम के चलते आम लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। पिछले एक महीने में शिमला शहर में 8 लाख वाहनों की एंट्री हुई है। हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। शहर के होटलों में लगभग 90% ऑक्यूपेंसी चल रही है। वीकेंड पर शिमला की ओर आने वाले वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर शोघी, तारा देवी, टूटीकंडी बाईपास और ढली जैसे प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ी है। इस बीच आज से शिमला में समर फेस्टिवल का आगाज भी होगा, जिससे पर्यटकों की तादाद में और इजाफा होने का अनुमान है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: उधर कुल्लू जिला के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता के अनुसार सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिला है।
2: कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है तथा मनाली सहित जिला के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली पड़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए काफी संख्या में लोगों ने पहाड़ों की ओर रुख किया है तथा आजकल यहां मौसम भी सुहाना बना हुआ है। पर्यटक यहां पर रोहतांग पास में जाकर जहां बर्फ का दीदार कर रहे हैं, वहीं अटल टनल होते हुए लाहौल की तरफ भी जा रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिला है तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खुश हैं। शाम के समय मनाली के माल रोड में पर्यटक की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं बहुत ज्यादा संख्या में पर्यटक वाहनों के आने से मनाली में जाम की समस्या भी बढ़ती जा रही है तथा स्थानीय लोगों सहित सैलानियों को भी इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: सिरमौर जिले में किसान बड़ी संख्या में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जिले के 2200 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 12,000 किसान प्राकृतिक खेती से उगाई जा रही फसलों से अच्छे दाम प्राप्त कर रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
3: जिला सिरमौर में मौजूदा समय में करीब 2200 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है, जिसमें किसान गेहूं, मक्की, धान, हल्दी और अदरक का मुख्य रूप से उत्पादन कर रहे हैं। जिला में करीब 12,000 ऐसे किसान हैं जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से उगाए जा रहे उत्पादों के भी किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। वहीं कृषि विभाग इन किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध करवा रहा है, साथ ही लगातार प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ है। मौसम विभाग ने कल यानी 9 व 10 जून को ऊना, बिलासपुर व सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 11 से 13 जून तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला व पंजाब केसरी की लगभग एक जैसी सुर्खी है, मंत्री, विधायकों, मुख्य सचिव, एसीएस और उपायुक्तों को अगले माह से मिलेगा पूरा वेतन। इसी खबर पर हिमाचल दस्तक लिखता है, मुख्यमंत्री ने वापिस लिया 30% वेतन स्थगन का फैसला। दैनिक भास्कर की एक खबर है, हिमाचल का पहला सरकारी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा केंद्र चयन आयोग हमीरपुर में तैयार। मुख्यमंत्री के हवाले से दिव्य हिमाचल लिखता है, एचआरटीसी पेंशनरों को हर माह समय पर मिलेगी पेंशन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, एचआरटीसी पेंशनरों के लिए हर महीने 23 करोड़ रुपए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 20 करोड़ रुपए

0: देगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज संजौली में बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम और मशोबरा में नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र का करेंगे उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से समर्पण व जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का किया आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल आज से ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा शुरू। 5 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव के दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व हिमाचली कलाकार मचाएंगे धमाल। और प्रदेश में पर्यटन सीजन जोरों पर, सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ने से पर्यटन व्यवसायी खुश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब से लेकर 10 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुनेंगे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्ते, और आज की फनकार हैं खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा डिंपल कपाड़िया।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा, मैं कहती हूँ।

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: पहले तुम।
2: हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। सबसे पहले तो ये कहना है कि आज है डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे।

0: 8 जून सन 1957 को एक गुजराती परिवार में जन्मी डिंपल कापाड़िया को सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म बॉबी में हीरोइन का टाइटल रोल प्ले करने का मौका मिल गया और इस फिल्म ने डिंपल को रातों रात स्टार बना दिया।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो।

0: जिस तरह रातों रात उन्हें शोहरत मिली, उसी तरह अचानक ही डिंपल ने इस चमक दमक और स्टारडम को नमस्ते कह दिया और उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया।
1: हाँ

राजेश खन्ना के साथ अपने वैवाहिक जीवन में डिंपल को दो बेटियां मिली, ट्विंकल और रिंकी। लेकिन डिंपल का वैवाहिक जीवन ज्यादा लंबा नहीं चल सका।

डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी डिंपल को अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अच्छे जीवन के लिए कोई ना कोई फैसला तो करना ही था। स्वाभिमानी डिंपल ने खुद अपने ही बलबूते पर कुछ करने की ठानी और उनके इस फैसले का स्वागत किया फिल्म इंडस्ट्री ने, निर्देशक रमेश सिप्पी ने और उनकी पहली फिल्म के को स्टार ऋषि कपूर ने। 1985 में उनकी कमबैक फिल्म आई सागर।

इस फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया ने अपनी उपस्थिति को फिल्म इंडस्ट्री में मजबूती से दर्ज किया और हर तरह की फिल्में स्वीकार करने लगी। यानी उस दौर में भी डिंपल ने अपनी फिल्मों में बोल्ड सीन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं।

डिंपल को 1973 में बॉबी और 1985 में फिल्म सागर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और 1991 में फिल्म दृष्टि के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड मिला। और फिर 1993 में डिंपल ने साबित कर दिया कि उनके अंदर कितनी सशक्त अभिनेत्री छिपी है। फिल्म आई रुदाली।

डिंपल की उल्लेखनीय फिल्में हैं क्रांतिवीर, गर्दिश, दिल आशना है, अजूबा, अर्जुन, आज की औरत, काश, जख्मी औरत, लावा, राम लखन।

0: डिंपल कपाड़िया ने हीरोइन के रूप में अपनी अदाकारी और अपनी खूबसूरती से जो जादू अपने दर्शकों पर चलाया उससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 2009 से उन्होंने जो पारी शुरू की चरित्र अभिनेत्री के रूप में, वो भी कम दमदार नहीं है। लक बाय चांस, तुम मिलो तो सही, दबंग, पटियाला हाउस और कॉकटेल। तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था डिंपल कपाड़िया पर। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 MHz पर सुबह के 10 बजने को है थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंच सके जो दशकों से पीछे छूट गए थे। कोलकाता के जाधवपुर स्टेशन के पास कल रात अवैध फेरी वालों को हटाने की कार्रवाई के दौरान तनाव बढ़ गया। दरअसल वामपंथी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कार्रवाई का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद केंद्रीय बलों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सृजन भट्टाचार्य समेत कई वामपंथी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने आज तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 10:05 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है आज की लघु वार्ता।

आज की लघु वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है 12 वर्षों में भारत सरकार की उद्यमी महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं। भारतीय महिलाएं उस समय से काफ़ी आगे निकल चुकी हैं जब वे आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर थी। आज वे अपने वित्त का प्रभार लेते हैं और अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए कई सरकारी पहल, विशेष रूप से महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और सुधार लाने पर केंद्रित है। और भले ही कई कामकाजी और स्वरोजगार वाली महिलाएं से लाभों और वित्तीय अवसरों के बारे में जानती हैं, लेकिन कई अन्य महिलाएं भी हैं जो इस लाभ से पूरी तरह से अनजान हैं। और इसी की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में, आज की लघु वार्ता में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं।

भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता, कम ब्याज दर पर ऋण और प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, महिला उद्यम निधि योजना और लखपति दीदी योजना शामिल है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिला उद्यमियों को बिना किसी कोलेट्रल के माइक्रो एंटरप्राइज या अन्य या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है और ये ऋण सीमा जो है वो 50,000 से लेकर 10,00,000 रुपए तक हो सकती है। इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पोर्टल या नज़दीकी बैंक में आप आवेदन कर सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है और इसकी जो ऋण सीमा है ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10,00,000 रुपए से 1,00,00,000 के बीच जो है वो दी जाती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा समर्थित एक योजना है महिला उद्यम निधि योजना, जो कि महिलाओं के छोटे व्यवसायों को सहायता देती है और इसकी ऋण सीमा जो है 10,00,000 तक है। खास बात यह है कि इसके लिए जो आपको अवधि दी जाती है ऋण चुकाने की वो है 10 वर्ष। अब लखपति दीदी और स्त्री शक्ति पैकेज की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं खासकर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए ये एक प्रमुख योजना है जहां कम ब्याज पर ऋण के साथ मुफ्त परीक्षण दिया जाता है। और इसी तरह स्त्री शक्ति पैकेज SBI और अन्य बैंकों द्वारा महिला संचालित व्यवसायों के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाता है। अब बात एक और योजना की करें जिसे ट्रेड योजना कहा जाता है, यानी TREAD, व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास योजना महिलाओं को परियोजना लागत का 30% तक सरकारी अनुदान देती है और ये कौशल विकास और प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करती है। कुछ राज्य विशिष्ट योजनाएं भी हैं जो कि चलाई जा रही हैं राज्य सरकारों के द्वारा, जिनका लाभ हमारी जो महिला उद्यमियां हैं वो ले सकती हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत वुमेन फॉर स्टार्टअप्स विशेष पहल है जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को क्षमता निर्माण, वित्तीय सहायता और नेटवर्किंग के जरिए सशक्त बनाना है। इसके तहत महिला नेतृत्व वाले नए और मौजूदा व्यवसायों को विशेष प्रोत्साहन, सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी का लाभ जो है वो प्रदान किया जाता है। और देखिए अब इसमें क्या क्या मुख्य लाभ हैं और क्या विशेषताएं हैं इसकी, क्यों ये खास हैं योजना, तो इसके बारे में बताएं। विशेष फंड और निवेश जो है वो इसमें दिए जाते हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को भारी वित्तीय सहायता प्रदान होती है। अब क्रेडिट गारंटी की बात करें तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स के जरिए महिला उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अब टैक्स में भी छूट है। जो मान्यता प्राप्त महिला स्टार्टअप्स हैं उनको शुरुआती सालों में आयकर में भारी छूट मिलती है जी, और साथ ही पंजीकरण में भी बहुत आसान है ये प्रक्रिया। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर आसान पंजीकरण, पेटेंट शुल्क में 80% तक की कमी और सरकारी टेंडरों में प्राथमिकता इनको दी जाती है।

स्टार्टअप इंडिया के अलावा सरकार महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए कई विशेष योजनाएं भी उनके लिए चला रही है, जिसमें स्टैंड अप इंडिया योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक बैंक शाखा से महिला उद्यमियों को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट यानी नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बैंक लोन दिया जाता है। महिला उद्यम निधि योजना एक और योजना है, जिसमें जो है वो सिडवी और पीएनवी जैसे संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है। अब इसमें पात्रता क्या होगी, कौन सी ऐसी महिलाएं हैं, उद्यमी हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं, तो उसमें सबसे पहले तो स्वामित्व की बात करें। व्यवसाय में कम से कम 51% हिस्सेदारी महिला उद्यमियों या महिला समूह की होनी चाहिए। और अब कौन सी कंपनी हो, किस तरह की हो, अगर उसमें बात करें तो कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। इसमें कौन कौन सी इनोवेशन आप कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी आपके साथ साझा करें। तो इसके लिए व्यवसाय नया होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए यानी नवाचार वाला होना चाहिए, और स्केलेबल होना चाहिए यानी विस्तार योग्य वो होना चाहिए। तो ये इसकी खासियत होनी चाहिए कि इसमें जो है नवाचार के लिए स्थान हो, कुछ नया करने के लिए जो है वो आपकी जो भी आप कर रहे हैं उसमें जगह हो, तो इसके लिए आप पात्र हैं। महिला उद्यमियों के लिए लाभकारी मौद्रिक योजनाओं की हम बात कर रहे हैं। सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि भारतीय महिला बैंक व्यवसाय योजना उन महिलाओं के लिए है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। ये योजना महिलाओं के स्वामित्व वाली विनिर्माण कंपनियों के लिए 10.10% की ब्याज दर पर जो है 20 करोड़ तक का ऋण जो है प्रदान करती है। ये योजना सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 1 करोड़ तक का जो है वो मुफ्त ऋण भी प्रदान कर सकती है। महिलाओं के लिए एक और सरकार समर्थित मौद्रिक पहल अन्नपूर्णा योजना है। कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो खाद्य खान पान व्यवसाय स्थापित करने में महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता करता है। और देखिए, ये कार्यक्रम महिलाओं को व्यवसाय के लिए बर्तन, रसोई उपकरण और अन्य उपकरण खरीदने की अनुमति देने के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण देता है। ब्याज दर बाजार मानक और संबंधित बैंक के अनुसार विभिन्न भिन्न भिन्न हो सकती है। ऋण राशि का भुगतान 3 वर्ष में करना होगा। ट्रेड यानी व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास योजना की बात करें तो ये व्यापार से संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास योजना भारत सरकार की एक योजना है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गैर कृषि गतिविधियों में उद्यमिता कौशल विकसित करने में मदद करती है। ये योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं को उद्यमिता कौशल विकास प्रशिक्षण, व्यावसायिक सलाह और मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्यमिता, वित्त, विपणन और व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शामिल हैं। व्यावसायिक सलाह और मार्गदर्शन महिलाओं को अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक शुरू करने और चलाने में मदद करता है, और वित्तीय सहायता महिलाओं को अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में मदद करती है। जी हाँ, बहुत सारी महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती, तो ये योजनाएँ जो हैं उन महिलाओं के लिए ही है जो कि अपना जो है व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। तो ये हमने बात की। कुछ और योजनाएं हैं जिनमें महिला शक्ति केंद्र हैं, महिला उद्यमियों के लिए महिला ई हार्ट है, ये सारी योजनाएं भी। अन्नपूर्ण योजना की बात करें, ओरिएंट महिला विकास योजना है, ये सारी योजनाएं जो हैं वो महिलाओं के लिए शुरू की गई हैं। तो ये थी आज की लघु वार्ता, जिसका विषय था 12 वर्षों में भारत सरकार की उद्यमी महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर।

FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। कुछ तुम चलो कुछ हम चलें कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रेरणा से भरा हुआ कार्यक्रम, मोटिवेशन देता हुआ ये कार्यक्रम बिल्कुल लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। कुछ तुम चलो कुछ हम चलें और इस कार्यक्रम में आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो हम सब के लिए बहुत ख़ास विषय है, क्योंकि आज जो है वो आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरा कर रहा है। तो इसके 90 वर्ष पूरा होने पर जो है अपने 90 गौरवशाली वर्ष पूरे करने वाला आकाशवाणी, इस यात्रा में कई दिग्गजों ने अपनी आवाज़, लेखन और संगीत के माध्यम से प्रसारण की दुनिया में मील के पत्थर स्थापित किए हैं। और देखिए आकाशवाणी के स्वर्णिम इतिहास को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली कुछ महान हस्तियां हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया और उच्चतम आयाम हासिल किए, उनके बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम जानकारी देने वाले हैं।

और बात जब आती है इन दिग्गजों की जिन्होंने आकाशवाणी को अपनी आवाज़ दी या लेखन या संगीत के माध्यम से जो है वो योगदान दिया, तो उनमें बहुत सारे नाम हैं जिनमें देखो सबसे पहले नाम लेंगे मेलविले डी मेलो का, अमीन सयानी, डॉक्टर एम बी गोपाल स्वामी, सईदा वानो, पंडित रविशंकर और विश्मिल्ला खान, देवकीनंदन पांडे, जसदेव सिंह, इंद्रानंद सिंह झा और भी बहुत सारी महान हस्तियों जिन्होंने इसके लिए जो है वो इसे इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया, और उनके बारे में ही आज के इस कार्यक्रम में आपसे हम जानकारी साझा करने वाले हैं। तो बिल्कुल जी, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें कार्यक्रम आज समर्पित है आकाशवाणी के इन दिग्गजों को जिन्होंने अपनी आवाज़ के ज़रिए या अपने गीत संगीत के ज़रिए जो है वो इस आकाशवाणी को इस मुकाम तक पहुँचाया। देखिए, जब हम सुबह अपना रेडियो शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी धुन बजती है जिसे हम आकाशवाणी की संकेत धुन कहते हैं। तो ये संकेत धुन किसने बनाई, किसने तैयार की, अब बात उनके बारे में करते हैं। उनका नाम है वॉल्टर कॉफमैन। जी हाँ, इन्होंने इस धुन को तैयार किया था जिसे कि ऑल इंडिया रेडियो की सिग्नेचर ट्यून कहा जाता है। और देखिए, उनके बारे में बताएं तो ये ऑल इंडिया रेडियो की धुन तैयार करने वाले जो ये व्यक्ति हैं वॉल्टर कॉफमैन, ये बोहेमिया में इनका जन्म हुआ था। और ऑल इंडिया रेडियो के साथ इनका जुड़ाव ये है कि इन्होंने इसकी धुन तैयार की भारत में रहते हुए और ऑल इंडिया रेडियो के लिए उस प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक सिग्नेचर ट्यून की रचना उन्होंने की जिसे आज हम सभी रेडियो पर सुनते हैं। इनका योगदान भी बहुत सराहनीय रहा। उन्होंने भारत में लगभग 14 साल बिताए और यहाँ के शास्त्रीय संगीत पर उन्होंने शोध किया। उन्होंने बॉम्बे चैम्बर म्यूजिक सोसाइटी की स्थापना की और मशहूर संगीतकार जुबिन मेहता को भी संगीत सिखाया। जी हाँ, और देखिए, इनकी ही खास देन है ये जो आकाशवाणी की सिग्नेचर टोन है, और उनका नाम वॉल्टर कॉफमैन है। जिन्होंने एक संगीतकार थे और उन्होंने जो है वो इस धुन को तैयार किया जो हम आकाशवाणी पर सुनते हैं। और जब भी ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण शुरू होता है सबसे पहले ये धुन बजती है।

और भी बहुत सारे नाम जिन्हें अब आप सब ने सुना भी होगा, उनके बारे में जो है इस कार्यक्रम में ज़रूर आपके साथ हम जानकारी साझा करेंगे। तो देखिए, एक नाम जो कि नाम है मेलविले डीमेलो, ये आकाशवाणी के सबसे प्रतिष्ठित और जादुई आवाज़ वाले अंग्रेजी समाचार वाचक और कमेंटेटर थे। उनके ओजस्वी स्वर और स्टीक कमेंट्री ने 1948 में जब महात्मा गांधी जी की अंतिम यात्रा हुई थी तो उसमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। अब देखिए, बात अमीन सयानी जी की करते हैं। कौन नहीं जानता उन्हें, जो रेडियो को जानने वाले हैं, रेडियो सुनने वाले हैं, उनके लिए ये नाम बहुत ख़ास है क्योंकि भारत के सबसे लोकप्रिय रेडियो उद्घोषक और आरजे थे ये। गीतमाला के माध्यम से घर घर में अपनी जादुई आवाज़ पहुंचाने वाले सयानी ने जो है वो रेडियो को भारत में मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बना दिया था। जी हाँ, इन्होंने जिस तरह की इनकी आवाज़ थी, खनकती हुई आवाज़, और जो अंदाज था इनका वो सबसे अलग था, निराला था उस समय। और एक आरजे के रूप में, एक रेडियो उद्घोषक होते हुए एक आरजे के रूप में इन्होंने काम किया, तो उनकी आवाज़ जो थी बहुत ख़ास थी। और उनका प्रोग्राम को जो प्रस्तुत करने का अंदाज था वो बहुत अलग था, बहुत ख़ास था, जिसकी वजह से रेडियो घर घर में प्रसिद्ध हुआ और लोगों ने बहुत सराहा, बहुत इन्हें प्यार दिया। और देखिए, इनके अंदाज की बात करें ना, तो सुना होगा आपने कि उनके द्वारा जो शो की शुरुआत में बोला गया वाक्य बहनों और भाइयों इतना प्रसिद्ध हुआ कि ये उनकी पहचान बन गया, क्योंकि उनका अंदाज़ इसे बोलने का बहुत ख़ास था। और इस तरह से वो ये बोलते थे तो हर कोई उस कार्यक्रम को सुनने के लिए बेचैन हो जाता था कि इतनी अच्छी आवाज़, उसके बाद रेडियो पर बजने वाले इतने खूबसूरत से गीत, है ना। और ये काउंटडाउन शो था जिसमें कि हफ्ते भर की जो गीतों की जो एक रैंकिंग थी उसे बताया जाता था और साथ में वो गीत बजाए जाते थे। और ये कार्यक्रम जिस किसी ने भी सुना है वो दीवाना हुआ अमीन सयानी जी का। और उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की 1951 से अपने करियर में 54,000 से अधिक रेडियो कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और 19,000 से अधिक विज्ञापनों जिंगल्स के लिए उन्होंने अपनी वॉइस ओवर दिया। तो ये इनकी उपलब्धि थी। अब देखिए, एक और नाम है डॉक्टर एम बी गोपाल स्वामी। मैसूर विश्वविद्यालय के इन प्रोफेसर ने 1935 में भारत का पहला निजी रेडियो स्टेशन शुरू किया था। जी हाँ, इन्होंने ही संस्कृत भाषा, संस्कृत शब्द आकाशवाणी यानी आकाश से आने वाली आवाज़ गढ़ा, जिसे बाद में ऑल इंडिया रेडियो के आधिकारिक नाम के रूप में जो है वो अपनाया गया। देखिए, और ये बात उस टाइम की है कि एक व्यक्ति का जुनून जो है वो क्या सहयोग कर सकता है, ये हम सीख सकते हैं इनसे। तो 1930 के दशक की बात है और भारत में रेडियो का विस्तार नए नए रूप में हुआ था। और इसी दौर में 10 सितंबर 1935 को मैसूर में एक अनोखी पहल हुई जब आकाशवाणी नाम से एक निजी रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई, जो भारत का पहला निजी प्रसारण केंद्र बना। मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर एम बी गोपाल स्वामी ने अपने घर पर 30 वाट के ट्रांसमीटर के साथ एक इस प्रसारण की शुरुआत की और इसे और अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर से सुसज्जित किया गया। ये पहल किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं थी बल्कि एक व्यक्ति के जुनून और समाज के सहयोग का परिणाम था, जिसने रेडियो को लोगों के और करीब ला दिया। आकाशवाणी यानी आकाश से आने वाली आवाज़, ये नाम भी यहीं से लोकप्रिय हुआ, जिसे आगे चलकर पूरे देश में रेडियो की पहचान बनाया गया। समय के साथ साथ इस सेवा को मैसूर राज्य से अपने अधीन ले लिया और बाद में ये आकाशवाणी का हिस्सा बन गई। और देखिए, ऐसे बहुत सारे और महान हस्तियां हैं ऐसी ही जिन्होंने रेडियो से जुड़कर अपनी पहचान बनाई और रेडियो के लिए उन्होंने खास योगदान दिया, रेडियो को पहचान दिलाई एक तरह से, और रेडियो को जिस मुकाम पे वो आज है उस मुकाम पर पहुंचाया। तो बात रेडियो की हो रही है और एक खूबसूरत सा गीत आइए सुन लेते हैं, इसी तरह का आइए सुनते हैं।

जी बिल्कुल, मन का रेडियो बजने दे जरा, जब भी रेडियो बजता है और रेडियो पर जब आपका मन पसंदीदा गीत बजता है तो वाकई आप सभी गमों को भूल जाते हैं और खो जाते हैं उस धुन में, रेडियो की उस धुन में। और आज हम बात उसी रेडियो के बारे में कर रही हैं क्योंकि 90 वर्षों का एक गौरवमयी जो सफ़र है वो तय किया है रेडियो ने। आज के दिन हम मना रहे हैं 90 वर्ष का इतिहास, यानी कि 90वीं वर्षगांठ रेडियो की। तो बात आज उन महान हस्तियों की कर रहे हैं जो रेडियो से जुड़ी हुई हैं और जिन्होंने रेडियो को पहचान दिलाई। एक और पहचान दिलाने वाली एक और आवाज़।

की हम बात करते हैं। ये आकाशवाणी की पहली महिला समाचार वाचिका थी। उनका नाम था सईदा बानो। जी हाँ, उन्होंने 1947 में विभाजन के कठिन दौर में उर्दू समाचारों का बेहतरीन संपादन और वाचन करके प्रसारण जगत में महिलाओं की सशक्त उपलब्धि जो है वो, उपस्थिति जो है वो दर्ज कराई थी। जी हाँ, देखिए इनके बारे में जाने अगर तो आकाशवाणी प्रसारण के माध्यम से 5 मिनट का उर्दू समाचार पढ़कर सईदा बानो ना सिर्फ भारत की पहली महिला समाचार वाचिका बन गई बल्कि पहली भारतीय उद्घोषिका भी बन गई थी। आज़ाद भारत की दहलीज पर अपना करियर शुरू करने वाली 34 वर्षीय सईदा बानो ने जब 13 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में न्यूज़ रीडर की कुर्सी संभाली तो शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि वह अब इतिहास रचने वाली हैं। जी हैं बिल्कुल, और उन्होंने ये इतिहास रचा और इस रेडियो की वो सबसे पहली महिला समाचार वाचिका बन गई। एक और नाम है देवकीनंदन पांडे जी का। एक ज़माना था कि रेडियो सेट से गूंजती देवकीनंदन पांडे की आवाज़ भारत के जन जन को सम्मोहित कर लेती थी। अपने जीवन काल में ही लेजेंड बन गए देवकीनंदन पांडे। के समाचार पढ़ने का अंदाज, उच्चारण की शुद्धता, देखिए उनकी आवाज़ जो कि रोबीली आवाज़ थी, किसी भी श्रोता को रोमांचित कर देने के लिए काफ़ी थी। देवकीनंदन पांडे को के साथ काम कर चुके कुछ मशहूर पत्रकारों का कहना है, जिनमें एक उमेश जोशी हैं, उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि 8:45 का बुलेटिन जैसे ही शुरू होता था बस एक ही आवाज़ सुनाई देती थी, ये आकाशवाणी है। अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। बहुत भारी भरकम और बहुत करण प्रिय आवाज़। जितने भी बड़े अवसर थे, चाहे खुशी का अवसर हो या गम का अवसर हो, देवकीनंदन पांडे समाचार पढ़ देते। और जितने भी बड़े अवसर होते थे उन्हें खास तौर पर समाचार पढ़ने जो है बुलाया जाता था, चाहे उनकी ड्यूटी हो या ना हो। और सबको पता था कि ये देश की आवाज है, पांडे जी कह रहे हैं तो इसका मतलब पूरा देश कह रहा है। तो ये उपलब्धि थी इनकी, जिन्होंने एक समाचार रीडर के रूप में जो है वो अपना योगदान दिया और जन जन तक अपनी आवाज इन्होंने पहुंचाई। कानपुर में पैदा हुए देवकीनंदन पांडे ने 1943 में आकाशवाणी लखनऊ से कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। और 1948 में जब दिल्ली में आकाशवाणी की हिंदी समाचार सेवा शुरू हुई तो करीब 3,000 उम्मीदवारों में उनकी आवाज़ और वाचन शैली को सर्वश्रेष्ठ पाया गया। जी हाँ बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक और नाम जो है जसदेव सिंह जी का, एक प्रसिद्ध भारतीय खेल कमेंटेटर। और देखिए इनकी कमेंट्री में खास बात थी, इन्होंने जब भी कमेंट्री दी तो श्रोता मंत्रमुग्ध हुए। उन्होंने उस मैच को ऐसे देखा जैसे अपनी आंखों से वो देख रहे हों। रेडियो पर कमेंट्री सुनते हुए लोगों ने ऐसा महसूस किया। जसदेव सिंह ने आकाशवाणी में उर्दू एवं हिंदी समाचार वाचक के रूप में कार्य शुरू किया। बाद में जयपुर रेडियो स्टेशन में भी उद्घोषक नियुक्त किए गए, लेकिन जसदेव सिंह ने कमेंटेटर के रूप में जो है वो अपनी पहचान बनाई। सन 1960 में जयपुर में फुटबॉल मैच की कमेंट्री की उन्होंने, और सन 1962 में 15 अगस्त के मौके पर उन्होंने शिव सागर मिश्र के साथ कमेंट्री दी। 1964 में आकाशवाणी ने टोक्यो ओलंपिक कवर करने के लिए करने के रूप में उन्हें जापान भेजा। जसदेव सिंह विशेषकर हॉकी कमेंटेटर थे और उन्हें माना जाता था कि हॉकी कमेंटेटर यानी जसदेव सिंह। उन्हें भारत सरकार द्वारा सन 2008 में पद्म भूषण और 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और देखिए एक और नाम आकाशवाणी से जुड़ा हुआ, वो नाम है इंद्रानंद सिंह झा।
आकाशवाणी दरभंगा के एक बेहद लोकप्रिय और दिग्गज रेडियो प्रस्तुतकर्ता यानी रेडियो जॉकी थे। उन्हें विशेष रूप से ग्रामीण दर्शकों के लिए, ग्रामीण श्रोताओं के लिए उनके रेडियो टॉक प्रोग्राम गांव घर के लिए जाना जाता था। रेडियो श्रोताओं के बीच उनकी गहरी पैठ थी और वह खुरखुर भाई नाम से अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे और लिखित कार्य भी वो खुद ही करते थे। उनका कार्यक्रम गांव घर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संस्कृति, संगीत और मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपनी अनोखी और सरल शैली से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी। जी, और देखिए, इनके अलावा बहुत सारे एक और ऐसे नाम हैं, जैसे सुरजीत सेन है, एक दिग्गज समाचार वाचक थे जिन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ढाका से ऐतिहासिक समर्पण की रिपोर्टिंग के लिए जो है वो जाना जाता है। विनोद कश्यप और लतिका रत्न है जो कि आकाशवाणी के शुरुआती दौर में जो है अत्यंत लोकप्रिय न्यूज रीडर हुए, जिनकी आवाज सुनकर पूरा जो है समाचार सुना जाता था, सुनने के लिए लोग बेचैन रहते थे। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिन्होंने रेडियो से शुरुआत की और हमारे बहुत सारे श्रोता जानते भी होंगे कि कुछ एक ऐसे गायक हैं जो कि आगे चलकर इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने शायद इस जगत को एक तरह से जीवंत कर दिया जो कि संगीत जगत था। और उनमें बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने शुरुआत की थी रेडियो से, तो उनके बारे में भी हम आपके साथ जानकारी साझा करते हैं। रेडियो ने भारत के कई महान गायकों को शुरुआती मंच प्रदान किया। इनमें से कई कलाकार पहले रेडियो स्टेशनों पर गाते थे या फिर वहीं से अपनी पहचान बनाकर देश के शीर्ष पार्श्व गायक बने। जी हाँ, और उनमें बहुत सारे नाम हैं जिनमें सबसे पहला नाम है मोहम्मद रफ़ी का। शुरुआत उन्होंने की, मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर की 1944 में लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो से। उन्होंने पहली बार रेडियो स्टेशन पर लाइव गाना गाया था। जी हाँ, और देखो, शुरुआत उन्होंने रेडियो से की और बाद में कितने सफल हुए कि रेडियो पर उनके गीत जो है बजने लगे, रेडियो जो है वो उनके गानों से भरा पड़ा था। यानी रेडियो का कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता था जहाँ पे इनकी आवाज़ ना हो, यानी इनके गाए हुए गीत ना सुनाई दें। बाद में वे हिंदी सिनेमा के सबसे महान और बहुमुखी गायकों में से एक बने। उन्होंने अपने करियर में हजारों सदाबहार गीत गाए हैं। एक और महान नाम है और नाम है मन्ना डेगा। मन्नाटे ने संगीत की दुनिया में कदम ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से ही रखा था। वे शुरुआती दिनों में रेडियो पर शास्त्रीय संगीत और गीत गाते थे और अपनी दमदार शास्त्रीय गायकी के लिए जाने जाने वाले मन्नाटे ने पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई और जिंदगी कैसी है पहेली जैसे कालजे गीत गाए बाद में और सफल हुए। यानी इनकी शुरुआत रेडियो से हुई और उन्होंने सफलता के उच्चतम आयाम को छुआ। तलत महमूद जो कि एक और ख़ास नाम है, लखनऊ के रहने वाले तलत महमूद ने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से अपने करियर की शुरुआत की और उनकी मखमली गज़ल गायकी को रेडियो के माध्यम से ही पहली बार देश भर में पहचान मिली थी। और उन्हें देखिए किंग ऑफ गज़ल भी कहा जाता है। उन्होंने दिले नादान, तुझे हुआ क्या है जैसे बेहतरीन गीत गाए। भूपेन हजारिका का एक और नाम है जो कि रेडियो से जुड़ा हुआ है, जिनकी शुरुआत रेडियो से हुई। असम के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका ने 1940 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो पर अपने गीतों का प्रसारण शुरू किया था। रेडियो ने उनकी लोक संगीत शैली को लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और वह एक महान गायक, कवि और फिल्म निर्माता बने। और देखिए, उनके गाए हुए गीत भी बहुत सारे आपने ज़रूर सुने होंगे, जिनमें है दिल हुम हुम करे और गंगा बहती हो क्यों जैसे गीत। उनके अमर गीत हैं जो एक अमर संगीत के उदाहरण हैं। हर
हरिहरन ने शुरुआत की मशहूर गजल और पार्श्व गायक हरिहरन

अपने करियर की शुरुआत 1977 में ऑल इंडिया रेडियो पर एक गज़ल गायक के रूप में की थी। इसके बाद ही उन्हें फिल्मों में गाने के मौके मिलने लगे थे। जी हाँ, और भूपेंद्र सिंह ने भी शुरुआत यहीं से की, ऑल इंडिया रेडियो से। दिल्ली और आकाशवाणी के अन्य स्टेशनों पर एक गिटार वादक और

खर्च किया। पंडित भीमसेन जोशी जी की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने में अतुलनीय योगदान उनका रहा। रेडियो पर उनके नियमित प्रसारणों और आकाशवाणी संगीत सम्मेलनों ने उस घराने की एक इस अनूठी गायकी को घर घर तक लोकप्रिय बनाया जी। और 1943 में मुंबई में रेडियो कलाकार के रूप में काम करने से उन्हें काफ़ी पहचान मिली और उनके संगीत को एक व्यापक मंच मिला। जब भारत में रेडियो मनोरंजन का मुख्य साधन था तब उनके गाए शास्त्रीय ख्याल, ठुमरी और भजनों के प्रसारण ने आम लोगों के बीच शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ पैदा कर दी थी जी। और आकाशवाणी के पास पंडित जी की अनगिनत दुर्लभ और ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग्स जैसे कि राग यमन, भीम पलासी आदि जो है वो उनका बड़ा संग्रह जो मौजूद है। उनके रेडियो और संगीत के प्रति विशाल योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा आकाशवाणी संगीत सम्मेलनों का नाम बदलकर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन कर दिया गया। लता मंगेशकर जी ने वहीं से शुरुआत की, उनका भी शुरुआती जो सफर था रेडियो से शुरू हुआ और आगे चलकर वो सुर सम्राज्ञी कहलाईं।

जी हाँ, गीत वो है, संगीत वो है जो आपको सुकून दे जाए, और ऐसा ही संगीत आप सुनते हैं रेडियो पर, रेडियो के 90 वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास और जिसके बारे में और उनसे जुड़े हुए दिग्गजों के बारे में आज आपके साथ हमने साझा की जानकारी कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चले में। और अब इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 10:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

जी सारे श्रोताओं जो संगीता दी राम राम। दिखा जी कार्यक्रम है अपना लोक रंग कने श्रोताओं लोक गीत लोक जीवन यानी अहां दे अपने जीवन दी सच्ची भावनाओं जो प्रस्तुत करदे हन है ना। ते इना लोक गीतां च ना सिर्फ माणुआ दे पारिवारिक बल्कि सामाजिक जीवन दा भी सामयिक कने भावनात्मक भी चित्रण होंदा है। चला तो करदे हन शुरुआत गीता दी राजेंद्र कुमार शर्मा दी आवाज़ च।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी श्रोताओं, तो सुना करते कार्यक्रम लोक रंग, हुण सुनदे हन मनीषा ठाकुर की आवाज़ च अगला लोक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: तो श्रोताओं, इसी सोगी अज का कार्यक्रम लोक गीत लोक रंग एथी कर देन संपन्न। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के निकट संजौली में लगभग 3 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। इस स्टेडियम में रसोई घर, चेंजिंग रूम, शौचालय व ओपन हॉल जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सहित विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री का बाद में मशोबरा में निर्मित नवजीवन नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। ये केंद्र नशे की समस्या से प्रभावित व्यक्तियों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करेगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। ये मंच न केवल स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधियों से जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सेवा, समर्पण व जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। शिमला में उनसे मिलने आए भाजपा समर्थित नव निर्वाचित प्रतिनिधियों से उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने व संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण होती है। प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन जोरों पर है। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला, डलहौजी, मनाली व खजियार सहित अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की लगातार बढ़ती तादाद से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग काफी उत्साहित हैं। हमारे शिमला जिला संवाददाता ने बताया कि शिमला में हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से लोगों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है।
1: वीकेंड पर बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं, जिससे न केवल होटल कारोबार में तेजी आई है, बल्कि शहर की सड़कों में जाम की समस्या भी बढ़ गई है। जाम के चलते आम लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। पिछले एक महीने में शिमला शहर में 8 लाख वाहनों की एंट्री हुई है। हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। शहर के होटलों में लगभग 90% ऑक्यूपेंसी चल रही है। वीकेंड पर शिमला की ओर आने वाले वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर शोघी, तारादेवी, टूटीकंडी बाईपास और ढली जैसे प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ी है। इस बीच आज से शिमला में समर फेस्टिवल का आगाज भी होगा, जिससे पर्यटकों की तादाद में और इजाफा होने का अनुमान है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: उधर कुल्लू जिला के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार है। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता के अनुसार सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिला है।
2: कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है तथा मनाली सहित जिला के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली पड़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए काफी संख्या में लोगों ने पहाड़ों की ओर रुख किया है तथा आजकल यहां मौसम भी सुहाना बना हुआ है। पर्यटक यहां पर रोहतांग पास में जाकर जहां बर्फ का दीदार कर रहे हैं, वहीं अटल टनल होते हुए लाहौल की तरफ भी जा रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिला है तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खुश हैं। शाम के समय मनाली के माल रोड में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं बहुत ज्यादा संख्या में पर्यटक वाहनों के आने से मनाली में जाम की समस्या भी बढ़ती जा रही है तथा स्थानीय लोगों सहित सैलानियों को भी इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ है। मौसम विभाग ने कल यानी 9 व 10 जून को ऊना, बिलासपुर व सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 11 से 13 जून तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर 12 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। शायर हैं राजेश रेड्डी, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ें, इन्हीं का संगीत, शब्दकार आर एस हरियाणवी रतन, एल्बम का नाम तस्वीर।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। यूफोरिया की आवाज पलाश और दीक्षांत का लिखा हुआ गाना, संगीत पलाश और डीजे का,

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। कमाल खान की आवाज, संगीत साजिद वाजिद का एल्बम कल रात।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: कार्यक्रम वनिता मंडल को सुनने वाली हमारी सभी बहनों का, सखियों का जो है बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हैं, मैं हूँ संगीता और मेरे साथ हैं
1: जी मैं प्रकाशा, और हम दोनों की तरफ से हमारी सभी सखियों को प्यार भरी
0: नमस्कार। जी प्रकाशा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए, गर्मी थोड़ी सी बढ़ रही है तो हर किसी को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है संगीता जी।
0: जी
1: और देखिए, कभी आपको ज़रूरत पड़े बाहर जाने की तो बड़े एहतियात के साथ जाएं, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखते हुए हर चीज़ का, और तभी आप जो है कहीं बाहर निकलें, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है और गर्मी की वजह से कई बार हमें कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं।
0: बिल्कुल, और हम आशा भी करती हैं कि हमारी बहनें भी इन बातों का ख्याल रखती होंगी।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना, क्योंकि तेज़ धूप में, पर आजकल प्रकाशा जी वैसे भी खेतों में तो काम बहुत ज़्यादा हो रहा है।
1: बिल्कुल, लेकिन सुबह शाम का सबसे उपयुक्त समय होता है ना
0: जी
1: खेतों में काम करने का। बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी जाएं तो, क्योंकि सेहत आपकी सही रहेगी, काम भी तभी हो पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। और देखिए ना, जब भी कभी आप घर से बाहर हों तो थोड़ा सा हमें लगता है ना कि वो सुकून कहीं हमें नहीं मिल रहा है ना। और देखिए, घर एक ऐसी जगह है, जब भी आप कहीं बाहर से आते हैं या कहीं बाहर गए हैं तो हमें कितनी बेचैनी होती है ना कि अपने घर पहुंचने की।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि घर में जाके आप जो महसूस करते हैं,
0: जो सुकून मिलता है, वो कहीं भी नहीं मिलता है ना। हाँ, और वैसे तो हम घर से बाहर जाने की बातें करते रहते हैं, कभी नौकरी पर या कभी घूमने या कभी कहीं और।
1: हाँ।
0: तो आज जो है हम सुकून लेंगे अपने घर से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए इससे बेहतर जगह कोई और हो नहीं सकती संगीता जी, क्योंकि घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने तरीके से रहते हैं और एकदम अपने आप को ऐसा तरोताजा महसूस करते हैं। कहीं बाहर से आ रहे हैं आप, घर पहुंच गए, हाँ सुकून की सांस लेते हैं, हमें लगता है बस अब तो हमारा घर है, अब जैसे मर्जी हम रहें, है ना।
0: बिल्कुल,
1: कहीं बैठें उठें, या अगर आपको लगे कहीं थकान है थोड़ी सी तो लेट जाएं अपने कमरे में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम घर में जितने आसानी से सहज रूप से हम कर सकते हैं वो बाहर हम नहीं कर सकते, और बाहर से आते ही हमें ज़रूरत होती है अपने घर के उस सुकून की।
0: लेकिन प्रकाशा जी, इसके साथ साथ ये भी तो बात मायने रखती है ना कि हम घर में पहुंचें
1: जी,
0: और अगर आगे कुछ हमें बिखरा हुआ नजर आए
1: हाँ,
0: तो उस वक्त जो है हम पर क्या बीतेगी, है ना। क्योंकि एक तो हम थके हुए आ रहे हैं
1: जी,
0: अपने सुकून की तलाश में कि हम घर जाकर आराम करेंगे
1: जी,
0: लेकिन अगर हमें अपना घर पहुंचकर जो है वो अव्यवस्थित मिले
1: जी,
0: तो फिर उसका तो बहुत ही मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे दिल पर भी और दिमाग पर भी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो हम कह रहे हैं ना कि वहाँ आराम हमें मिलेगा, तो आराम की जगह हमारे मन में, हमारे दिमाग में वो तनाव की स्थिति
0: जैसी आ जाती है। बिल्कुल,
1: और ये बहुत जरूरी है कि देखिए, घर एक ऐसी जगह जहाँ पे ये सिर्फ ईंट और सीमेंट का एक ढांचा नहीं होता है, बल्कि आपकी भावनाओं, यादों और सुकून का एक ठिकाना होता है। ये तो सच है कि घर वह जगह है जहाँ आप अपने सबसे वास्तविक रूप में होती हैं, है ना।
0: बिल्कुल,
1: और देखिए यही वजह है कि आप उसे सजाती हैं, वह भी खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए। मगर अब ये सजावट जो है वो एक थेरेपी बनकर उभर कर सामने आ रही है, वह भी एक नई और प्रभावशाली प्रवृत्ति के रूप में, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ी हुई है। और इसे ही तो हम नाम देते हैं, जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने नाम दिया इसे होम मेकओवर थेरेपी। जैसे कि आपने कहा ना कि अगर घर आपको लगता है कि बिखरा हुआ है, हर चीज इधर उधर पड़ी है, तो वो एकदम से आपके दिमाग में वो स्थिति पैदा कर देती है कि बिल्कुल आप जो है वो और ज्यादा अपने आप को चिड़चिड़े से हो जाते हैं ना, कि चिल्लाने लगते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों के ऊपर सबसे पहले हम कि आपने घर को इस तरह से क्यों बिखेर के रखा है
0: जी,
1: तो वो ये हमारी मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई बात है ये।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम घर को सजाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने घर में वो शांति चाहते हैं कि जो हमें मिले जब कभी बाहर से भी हम आ रहे हैं थके हारे कहीं से अपने काम से, तो घर आके वो शांति हमें मिले।
0: बिल्कुल प्रकाशा जी, और देखें ना, हम कई बार वैसे देख भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं इस बात को, और या फिर अगर नहीं तो बेशक हमारी बहनें करके भी देखें इसे कि किसी दिन जो है वो जब भी किसी बिखरे हुए कमरे में या किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ हमें सुकून नहीं मिलता, वहाँ हमें कुछ अजीब सा लगता है, घुटन महसूस होने लगती है।
1: हाँ।
0: और जबकि इसके उल्टे कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाएं, ऐसे कमरे में जाएं जो साफ सुथरा हो और अच्छा खुला हो और रोशनी से भरपूर हो
1: जी जी,
0: है ना, जहाँ खिड़कियां हैं, आप वहां से ताजी हवा ले रहे हैं, तो ये सब जो है हमारे मन को उसी वक्त जो है वो हल्का कर देता है और हमें सकारात्मकता से जो है वो भर देता है। और यही जो होम मेकओवर थेरेपी का जो है ये मूल मंत्र है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, साफ सुथरा खुला रोशनी से भरा हुआ एक घर
0: जी,
1: छोटा हो भले ही घर, लेकिन वैसा हो कि जो आपको शांति प्रदान करे, जहाँ रहकर आप अपने आप को अपने परिवार को जो है वो सुरक्षित तो महसूस करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आरामदायक महसूस करें, सुकून से भरा हुआ वो एक स्थान हो। और देखिए अब बात ये है ना कि

0: मनोविज्ञान के अनुसार जो है वो ये चीजों को कहा गया कि बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है।
1: हाँ
0: ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ
1: बिल्कुल
0: करना है ना।
1: जी
0: हम छोटी छोटी चीजें करके, छोटे छोटे बदलाव करके जो है संगीता जी उस घर को बहुत अच्छा बना
1: चेंज कर
0: सकते
1: सकते हैं। हाँ
0: हैं।
1: मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि उसमें हमें अपने घर में और नई चीज़ें लेकर आनी है,
0: हाँ
1: बाज़ार से खरीद कर
0: जी
1: कोई फर्नीचर लाना है या कुछ
0: जी
1: और डेकोरेटेड पीसेस लाने हैं, तो मतलब पर जो हमारे पास घर में उस वक्त हमारा सामान है
0: जी
1: उसमें ही हम कुछ चेंजेस करके उनकी जगह को बदल कर हम अपने घर को जो है वो तरोताज़ा बना सकते हैं।
0: बिल्कुल। देखिए जैसे कि हम हर रोज चाहते हैं ना कि हम खुद को सजाने के लिए, संवारने के लिए, कई बार होता है कि कुछ नया ट्राई करते हैं, नए कपड़े
1: जी
0: हम पहनते हैं है ना, और कुछ नई चीज़ें हम चाहते हैं कि हमें अच्छा महसूस हो, इसके लिए हम लेकर आते हैं। तो वही
1: बिल्कुल
0: है, घर को भी हमने बहुत सारी चीज़ों से लादना नहीं है, बल्कि उन्हीं चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करके जो है रख दें, या थोड़ा बदलाव कर दें उन्हीं चीज़ों में। घर के
1: जी
0: जो रखा हुआ सामान है उसको रखने का एक डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या कुछ और उस थोड़ा बहुत बदलाव करके आप उस घर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं, अपने सपनों के घर की तरह जो आप हमेशा जिस घर में रहना चाहते हैं, है ना। और
1: जी
0: देखिए मनोविज्ञान के अनुसार घर को बदलना कभी कभी खुद को बदलने जैसा होता है। जब आप अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाते हैं तो अनजाने में अपने भीतर भी एक नई जगह जो है वो बन जाती है आपकी, है ना,
1: बिल्कुल
0: नए विचारों के लिए, फ्रेश चीज़ों के लिए, फ्रेश हवा मतलब जैसे होती है ना कि अंदर आती है तो सुकून देती है, वैसे ही नए विचारों के लिए जो है आपके अंदर जगह बनती है एक तरह से, और आपके घर के अंदर भी।
1: बिल्कुल। और देखिए ना जैसे कि कुछ रंग हैं, प्रकाश आता है या पौधे और या फिर छोटी छोटी अच्छी सी जो सरल सजावटें होती हैं
0: जी जी
1: वो सब जो हैं हमारे घर की सुंदरता को भी बढ़ाती हैं।
0: जी जी
1: और जब हम कभी वहाँ सोफे पर बैठकर या अपने कमरे में बैठकर बिस्तर पर बैठकर जो है जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो वो काफ़ी हमें जो है उस वक्त खुशी महसूस करवाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और प्रकाशा जी कहा भी गया है ना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो मतलब अध्ययन किए गए हैं उनके
0: जी
1: अनुसार जो कहा गया है कि हमारे स्वास्थ्य परिणामों का 80 से 90% जो हिस्सा है इस बात का परिणाम है कि हम कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं।
0: जी जी
1: और ये अध्ययन हमें बताते हैं कि बिखरे हुए घरों में रहने वाली महिलाओं में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो आमतौर पर अधिक मिलता है।
0: देखिए ना, आप अपने घर में, हमने हर चीज़ के लिए एक स्थान बनाया होता है, हम जो है कहाँ बैठकर अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, या एक घर में प्रार्थना की एक जगह हमने बनाई होती है,
1: जी
0: या अपने लिए एक ऐसा कोना जो हमें सुकून देता है, या बच्चों के साथ खेलने की एक जगह होती है ना,
1: जी
0: अपना अपना एक कमरा होता है जहाँ पे आप आराम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें सुकून देती है, क्यों नहीं देती। तो बस ये है ज़रूरत कि आप अपने घर को बहुत ज़्यादा बदलाव की तरफ ना ले जाएं, बल्कि अपने छोटे छोटे बदलावों के द्वारा ही आप ये सुकून हासिल कर सकती हैं।
1: जी बिल्कुल। और जैसे कि हमें और सब इन सब जो बातों से मतलब जो नकारात्मक प्रभाव जो पड़ते हैं ना
0: हाँ
1: अव्यवस्थित रूप से जो जब देखा जाता है तो उसमें हमें काम टालने की आदत बन जाती है
0: जी
1: हमारी,
0: जी
1: है ना, हमें खुद को अपराध बहुत महसूस अपराध बोध जो है वो महसूस होता है, शर्मिंदगी और मतलब ये सभी बातें जो हैं वो सभी हमें अव्यवस्थित कर देती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। और देखिए यही है कि अपने घर को सजाना या उसके इंटीरियर में पसंद के अनुसार बदलाव लाना भी एक प्रकार का एक रचनात्मक कार्य ही है ना।
1: जी
0: सजाते हैं हम कितने सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं कि इस घर को ऐसे बनाएंगे, ऐसे सजाएंगे, है ना, तो ये एक क्रिएटिविटी ही है हमारी, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो ये क्रिएटिविटी अपने दिमाग में जब हम लेकर चलते हैं तो एक सकारात्मकता के साथ तो हम जुड़ते ही हैं। तो बिल्कुल जी, ये भी हमारे इसके ऊपर, दिमाग के ऊपर जो है वो अच्छा प्रभाव डालते हैं जब आप सकारात्मक होते हैं, है ना। और इसे एक आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो खराब मूड है वो अच्छा कर सकता है आपका सजा सवरा घर।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण अगर हम लें ना कि जब हम चाय पीने बैठे हैं जैसे शाम
0: जी
1: की
0: जी
1: और अगर हम अपने हॉल में या फिर ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ से हमें बाहर खिड़की से बाहर का नज़ारा नज़र आ रहा
0: जी
1: है
0: जी
1: ना, तो उस वक्त हमें बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और अगर हम किसी एक कोने में अंदर बंद कमरे में बैठ जाएंगे तो हमें वहाँ पता नहीं लगेगा कि अभी शाम है या क्या दिन है या कितना टाइम हो चुका है ना, तो मतलब बाहर का जो प्राकृतिक नज़ारा है वो हमारे दिल को बहुत ही सुकून देता है। और क्योंकि जो अलग अलग रंग हमें देखने को मिलते हैं तो ये रंग जो हैं हमें शांत, सहज, सुरक्षित और खुश, और जो मतलब काफ़ी हमारे मन को जो है वो आनंदित कर देते हैं।
0: बिल्कुल जी। और देखिए, प्रकृति के साथ जुड़े रहना, मतलब अपने आसपास ग्रीनरी महसूस करना
1: जी,
0: अगर ग्रीनरी होगी है ना, हरियाली होगी, और जब उस हरियाली के बीच में भी हम अपने आप को अच्छा महसूस करवाते हैं,
1: बिल्कुल
0: लगता है अच्छा है
1: जी।
0: अगर रूखा सूखा है हर जगह तो वो उतना अच्छा हमें नहीं लगेगा, लेकिन अगर हरियाली है हमारे आसपास या पंछियों की आवाज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं है ना, तो वाकई वो चीज़, वो जगह जो है वो आपको अच्छा महसूस करा दी है। और ऐसा ही वातावरण अपने आसपास हमें रखना है, और ये तभी होगा जब हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे,
1: बिल्कुल
0: है ना
1: सही।
0: या मैं ये नहीं है कि कुछ, कई बार ऐसा होता है कि हमारा घर भी बहुत सजा संवरा है, सब ठीक है, लेकिन कई बार हम अपने ही अंदर कुछ नकारात्मकता लेकर चले होते हैं, है ना, किसी ने कुछ बोल दिया है उस बात को लेकर पकड़ कर चले हैं, तो फिर तो चाहे आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, फिर वो चाहे कितनी ही सुंदरता हो हर तरफ, अगर आपने मन में कड़वी यादों को जगह देके रखी हुई है, फिर आप कभी अच्छा महसूस नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को बाहर निकालें अपने से, छोड़ें उन्हें, जो आपको लगता है कि हमें दुख देने वाली चीज़ें हैं, बातें हैं, उन्हें आप पीछे छोड़ते जाएं, अच्छी यादें बनाएं, और उन अच्छी यादों को संजो कर रखें अपने परिवार के साथ, जो अच्छी यादें होती है बच्चों के साथ, है ना, बुजुर्गों के साथ, अपने घर के बड़ों के साथ जो अच्छी यादें हमने बना के रखी है, उन्हें अपने दिल में जगह दीजिए। और वैसे ही जैसे आपका घर आपको अच्छा महसूस कराता है, फिर आपको हर जगह वैसा लगेगा, है ना, क्योंकि मन अच्छा होगा तो फिर आप अच्छा महसूस कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही। और ये सभी बातें जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
0: बिल्कुल जी।
1: तो चलिए अब हम अपनी सखियों को भी जोड़ते हैं एक खुशी भरे माहौल के साथ, एक गीत के साथ।
0: बिल्कुल जी, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी बिल्कुल, देखिए घर सपनों का प्यारा सा गीत में भी वही सुना संगीता जी, कितना अच्छा ये पूरा वो किया हुआ ना, एक अच्छा सा चित्रण बन रहा है कि सपनों का घर है ना, जिसमें हम अच्छे से रह सके प्यार से। तो ये तो चलो अब बात घर की, अब आगे बढ़ते हैं अपनी बहनों के साथ कुछ और बातें साझा करते हैं। आजकल के वक्त में हर कोई चाहता है संगीता जी कि हम जो हैं वो दुबले पतले दिखें, है ना, खासकर हमारी बहनें। अगर थोड़ा सा भी कहीं उन्हें लगता है कि थोड़ा सा भी अगर वजन उनका लग रहा है, कई बार तो खुद से ही ऐसी आशंका पाल के बैठ जाते हैं कि हमारा तो वजन बढ़ रहा है।
4: हाँ, और खासकर से जब हम किसी को देखते हैं ना, अपनी सहेली को या अपनी पड़ोसन को या किसी और को, तब हमें लगता है कि शायद हम कहीं हैवी तो नहीं होते जा रहे।
3: जी जी जी, और उस चक्कर में फिर क्या है कि चलो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अब उस वजन को हम कम करें। और है भी, चलो अगर हमें लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा है वजन, तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं या अपनी थोड़ी सी अपनी डाइट को हम सही ढंग से प्लान करके जो है वो कर सकते हैं
4: जी,
3: है ना। लेकिन उस डाइट को किस तरह से करना है वो बहुत ज़रूरी है कि आपके शरीर को पोषण भी मिले और आप जो चाहती हैं कि हमारा जो ज़्यादा वजन हो गया है वो कम भी हो जाए।
4: बिल्कुल प्रकाशा जी, वैसे एक तरह से देखा जाए ना कि उम्र के साथ साथ जो है वो हर व्यक्ति का, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, तो उनका थोड़ा बहुत वजन वो चलता है
3: जी जी,
4: या आपके कद के हिसाब से भी वो
3: जी
4: सूट करता है आपको। लेकिन अब आजकल का जो ट्रेंड ही ऐसा बन गया है शायद ना, एक तरह का रिवाज ही बन गया है ये कि भी आप अपने आप को थोड़ा और कम देखना चाहते हैं वजन के हिसाब से, है
3: बिल्कुल
4: ना?
3: जी, अगर हमें लग रहा है कि हम अपनी सेहत के हिसाब से ठीक हैं, है ना, और ज्यादा नहीं है वजन, चले वैसे तो कहते हैं ना कि अगर हम ज्यादा वो ओवरवेट हो जाते हैं तो भी कई बीमारियों जो है वो उसकी समस्या आ जाती है, कई बीमारियों से संबंधित चीजें हमारे शरीर में। लेकिन देखिए, अगर आपका आपकी हाइट के हिसाब से वजन, या फिर आपको थोड़ा सा अगर आपकी एज बढ़ने के बाद जो थोड़ा सा वजन वो चलता है जैसे आपने कहा
4: जी,
3: लेकिन जब कभी हम अपने आप में ठीक हैं लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम और इससे भी पतले हों, और उसके लिए फिर हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमारे शरीर पर शायद गलत इफेक्ट भी डाल सकती हैं।
4: बिल्कुल,
3: है ना,
4: बिल्कुल प्रकाशा जी। और आजकल जो है वो एक क्रैश डाइटिंग जो है वो चलन में है काफी, और महिलाएं भी इसे अपना रही हैं क्योंकि इससे वजन जो है वो तेजी से कम होता जाता है
3: जी जी।
4: तो हम यही बात करना चाहेंगे कि क्रैश डाइट है क्या, और इसका अगर हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम इसे लेते हैं
3: जी जी,
4: तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे शरीर पर। तो उसमें जो है वो कैलोरी जो है वो काफ़ी कम कर दी जाती है, एकदम से ही कम कर दी जाती है, जिससे कि हमारे शरीर का वजन जो है वो तेज़ी से घटता जाता है
3: जी जी।
4: तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि दिन के भोजन में हम लोग फल सब्जियां, प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो शामिल करते हैं, और इस दौरान जो है वो दिन भर में हम छोटे छोटे अंतराल पर थोड़ी थोड़ी या कम मात्रा की जो कैलोरी वाली चीज़ें होती हैं वो खाते हैं, और साथ में जो प्रोसेस्ड और जंक फूड हैं उनसे भी दूर रहा जाता है
3: जी जी।
4: तो इस दौरान जो है शरीर धीरे धीरे नए खाने की आदतों के अनुसार ढलता है और वजन जो है वो कम होता जाता है।
3: बिल्कुल जी, देखिए क्रैश डाइटिंग की जैसे आपने बात की, तो इस डाइट में कम मात्रा में कैलोरी वाले भोजन शामिल होते हैं, और जिसे शरीर अपनी संचित चर्बी जलाकर जो है वो ऊर्जा प्राप्त करता है ना
4: जी।
3: और ये डाइट जो है खासतौर पर अधिक वजन वाले लोगों के लिए तो फायदेमंद है, और आमतौर पर केवल 1-2 हफ्तों के लिए अपनाई जाती है, तभी तो इसका नाम वो रखा है ना क्रैश डाइटिंग, है ना, कि थोड़े समय के लिए अपनाई जाती है। डॉक्टर कभी कभी इसे बीमारियों में कैलोरी नियंत्रित आहार के रूप में भी सुझाते हैं। ये तो ठीक है, फायदे हैं इसके, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा वजन है, और कुछ हफ्तों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, शरीर है तो उसे चलाने के लिए कैलोरी तो चाहिए,
4: बिल्कुल,
3: है ना,
4: जो तो चाहिए,
3: बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे कुछ नुकसान भी हैं जिनके ऊपर भी ध्यान हमने देना बहुत जरूरी है। हमें क्रैश डाइट में कम खाना और कैलोरी जो है होती है, जिससे भूख थकान और कमजोरी जैसी महसूस होती है, और अगर लंबे समय तक इस अपनाते हैं हम तो दिक्कत हो सकती है
4: जी। मतलब बात ये है कि अगर हम इसे अपना रहे हैं तो बीच बीच में अपनाएं, और साथ में हम ऐसा पोषण युक्त जो है वो भोजन लें अपना, जिसमें कि हमारे शरीर में जो है वो एनर्जी की कमी ना हो, कमजोरी ना आए।
3: बिल्कुल जी, देखिए ना कभी कभी ये जो कैलोरी है ये बहुत कम हो जाती है, जैसे 500 से 800 तक ये हो जाती है, लेकिन सामान्य जो है किसी व्यक्ति की वो है 1800 से 2200 तक, है ना। तो अगर इतनी ज्यादा कैलोरी हो जाएगी तो शरीर तो फिर कमजोर होगा ही, है ना, क्योंकि उतना ज्यादा फिर होता है ना कि जितनी जरूरत है वो तो चाहिए ही शरीर को। तो इसे अपनाएं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि कुछ समय के लिए अपनाएं और फिर आपको लगता है कि बस अब जरूरत नहीं है तो फिर वो आप अपना रूटीन जो है वो चेंज कर सकते हैं
4: जी। प्रकाशा जी, ऐसे तो इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आप वो सभी अच्छे खा रहे हैं, फल सब्जियां वगैरह, मतलब ग्रीनरी की तरफ बढ़ रहे हैं, पर और साथ में जो प्रोसेस्ड और जंक फूड्स हैं वो भी आपका बंद हो जाता है
3: जी, जी,
4: है ना। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है इसका, लेकिन बात वही आ जाती है कि भी इसको छोड़कर, इन्हें तो आप छोड़ ही दीजिए इन चीजों को तो, पर बाकी जो आप खा रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा कमी जो ना, कैलोरी की कमी जो है वो ना हो,
3: बिल्कुल
4: तो इन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं।
3: एक संतुलित आहार जो है ना, जब आप बोल लेते हैं और आप उस खाने को खा रहे हैं और साथ ही साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं
4: जी,
3: है ना, तो उससे भी आपका वजन नियंत्रित हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा से वही चीजें खाएं। अब देखिए संतुलित आहार में तो हर चीज चाहिए आपको, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, विटामिन, हर चीज चाहिए। तो एक संतुलित आहार लेते हुए आप डाइट करें, ये बहुत जरूरी है। और पानी की कमी शरीर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आप अपने वजन को कम करने के चक्कर में जो है वो अपने स्वास्थ्य के साथ ही समझौता कर लें, वो गलत है।
4: बिल्कुल, एक्चुअली में क्या होता है कि पानी जो है वो जितना हम खा पी रहे

0: है, तो उसके साथ वो मतलब पाचन शक्ति जो है वो हमारी बढ़ाता है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल
0: काफ़ी अच्छा रहता है हमारे स्वास्थ्य के लिए।
1: बिल्कुल जी। देखिए ना, एक ऐसा नहीं है कि हम ये चाहते हैं, कि हम ये नहीं कह रहे कि आप करो ना, लेकिन आप स्टार्वेशन की तरफ ना जाएं, या कि ऐसा ना हो कि आप भूखे रह जाएं, बिल्कुल है ना।
0: जी बिल्कुल
1: तो कुछ समय के लिए ये अपनाएं, और फिर जो जितना आप, बेशक आप थोड़ा कम कर दें खाना, आपको लगता है कि, या कई बार ऐसा होता है ना कि अब ओवर ईटिंग के चक्कर में भी हमारा वजन जो है वो बढ़ जाता है ना, तो
0: जी
1: जितना आप खाते हैं, अब मौसम के हिसाब से भी अपनी डाइट को आप नियंत्रित करें, है ना। तो बस उस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखते हुए हम डाइट करें, ये
0: बिल्कुल
1: ज़रूरी है, क्योंकि हम सबसे ज़रूरी तो स्वास्थ्य होता है। अगर वो है, अगर आपको लग रहा है कि आपका हल्का सा वजन बढ़ भी गया है, लेकिन आप फिट हैं, स्वस्थ हैं, तो कोई ज़रूरत इतनी नहीं महसूस होती फिर उस समय, है ना। तो चलिए, अब बातें हो गई, अब एक गीत और सुन लेते हैं
0: जी प्रकाशा जी, और उससे पहले एक सुनते हैं विज्ञापन।
1: जी।
2: वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना।
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जी प्रकाशा जी, और इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम वनिता मंडल हम यहीं संपन्न करते हैं।
1: जी बिल्कुल, और अपनी सभी सखियों से लेते हैं इजाजत और कहते हैं
0: नमस्कार।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वनिता मंडल, ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, अब वक्त हो चुका है कार्यक्रम सैनिकों के लिए का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में फिल्म जुबेदा का ये गीत।

जी सैनिक भाइयों, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आपने ये गीत सुना फिल्म यतीम से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से।

0: Yes, yes. Say it again.
1: जी सैनिक भाइयों, जसविंदर नरूला और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। तो चलिए, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको हम सुनवाते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म निकाह से।
2: अलविदा मत कहो।

जी सैनिक भाई, और इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सैनिकों के लिए हम यहीं संपन्न करते हैं। तो दीजिए इजाजत, जय हिंद।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। जी श्रोताओं, दिन के एक बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आज की इबारत जो है वो आपको बता देते हैं। खारे पानी का विशाल जलाशय, दूर से देखो तो मन मोहने वाला नीला रंग दिखाई देता है, जो पृथ्वी की जलवायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे तापमान को नियंत्रित करते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए भी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे जीव इसमें पलते हैं। परिवहन, व्यापार और वाणिज्य के लिए भी ये आवश्यक है। भोजन, ऊर्जा और खनिजों के स्रोत हैं। बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ये। रहस्य और रोमांच से भरी लहरें इसकी रेतीली जमीन पर टकराती है, आवेग से आती है और टूट जाती है। जाते हुए अनूठी सौगातें हमें दे जाती है, जैसे सीप, शंख, मोती। शाम होती है, सैलानी चले जाते हैं, पर वे अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। उसका दिल तो देखिए, सबको अपने में आत्मसात कर लेता है। प्रकृति का अटूट समर्पण है ये। मन के भीतर भी लहराता है और बाहर भी अटखेलियां करता है। बताइए क्या है उसका नाम? जी हाँ, उसका नाम है सागर। आज वर्ल्ड ओशियन डे, ओशियंस डे यानी कि विश्व महासागर दिवस है, तो इसी अवसर पर आज हम बातें करेंगे सागर की, समंदर की। बहुत सारी चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं, इसलिए कुछ प्रश्न हैं हमारे, लेकिन वो प्रश्न हम आपसे कुछ देर के बाद पूछेंगे। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि ये धरा का वह अनंत आंचल है जिसकी गहराइयों में अनगिनत राज दफन है। इसका संगीत कभी लोरी की तरह शांत होता है तो कभी तूफान की तरह रौद्र रूप धारण कर लेता है। सूर्य की पहली किरण जब इसके सीने पर पड़ती है तो मानो सोने की चादर बिछ जाती है। वो इंसानों के लिए प्रदूषण को भी अपने भीतर समेट लेता है। ये बिना थके हर सुबह नई उम्मीदों के साथ जागता है। ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं बल्कि पृथ्वी का हृदय है। ये बादलों को जन्म देता है और नदियों को अपनी बाहों में समेट लेता है। इसके किनारे खड़े होकर हर इंसान इसकी विशालता में खो जाता है। जी हाँ, बात जब विशालता की आती है तो किसी भी चीज़ का आकलन हम करते हैं या फिर एक उसका कंपैरिजन जब करते हैं तो कहते हैं सागर की तरह। सागर की तरह गहरी आँखें, सागर की तरह गहरा दिल, सागर के जैसा गहरा प्यार। और भी बहुत जगह जहाँ पर हमें बहुत गहराई दिखानी होती है तो हम उसकी उपमा सागर से करते हैं। ऐसी और कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी बातें हैं जब हम कहते हैं कि ये तो सागर जैसा है? जी बताइएगा हमें। सबसे पहले आपको सीमा फिल्म का गाना सुनवाते हैं। शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, नूतन और बलराज साहनी पर फिल्माया गया गाना है। आवाज़ किसकी है आप हमें बताइए।

मन्ना डे की आवाज़ में सीमा फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि सागर महासागर के कई ऊंच नीच लहरों में छिपी अनगिनत यादों को, मन की भावनाओं को दिल की गहराइयों से सलाम। मिटने वाली सभी निशानियों का कभी अंत नहीं, सूरज को अपने भीतर समाने वाला सागर। अथांग तीर में बंदिस्त होकर भी सभी नदियों का पानी पीकर सीमा नहीं छोड़ता है, ये उसकी खासियत है, अपनी सीमाओं से वो बंधा होता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि समंदर शोर भी करता है और सुकून भी देता है, ऊपर से नीला शांत और अंदर मूंगा मोती तूफान सब छुपाए बैठा है। समंदर की हर लहर आती है, वापस जाती है और कहती है कि फिर आऊंगी। वो बना तो बूंद बूंद से है, पर बड़े बड़े जहाजों को भी डुबो देता है। फिर भी न छोटा होने का गम और न बड़ा होने का घमंड। वो हजारों नदियों का दर्द पीकर भी गमगीन नहीं होता, इसलिए अक्सर टूटे हुए लोग समंदर के किनारे जाते हैं और से सीखते हैं कि दर्द पीकर भी कैसे मुकम्मल रहा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बारूद फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। इसमें जो आवाज़ है वो लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है। ये कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

मेरी हद है कहाँ तक। जी हाँ, इस बात को हमें याद ज़रूर रखना चाहिए कि हमारी हदें कहाँ तक है। सागर के किनारे हम जाते हैं, अटखेलियाँ करते हैं, आनंद लेते हैं पानी के आने और जाने का, लहरों का आनंद लेते हैं, वहाँ की जो ठंडक होती है उसको महसूस करते हैं। दूर तक दिखता हुआ सागर, जहाँ उसका कोई किनारा नहीं दिखता है, सूरज डूबता रहता है, वो जो मंज़र होता है बहुत खूबसूरत होता है। क्या हमें इस खूबसूरती को बरकरार नहीं रखना चाहिए? ये प्रश्न अभी हमारे सामने है। जब हम समुद्र किनारे जाते हैं, बहुत सारी गंदगी फैला करके आते हैं, उसे गंदा करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी हदें हैं। तो इस बात को बताता हुआ ये गाना आपने सुना। मैंने आपको बताया कि ऋषि कपूर और शोमा आनंद पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समंदर सिर्फ पानी का विशाल संग्रह नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं का आईना है। उसकी खामोशी में भी एक शोर महफिल है, इसकी हर लहर में एक रहस्य छुपा हुआ है, तो गहराइयों में दबी है एक असीम दुनिया, सदियों से बहता फिर भी ताज़ा लगता है। उसकी गहराइयों में कितने रहस्य दफन हैं, उसके हर मोती में कितने ख्वाब छुपे हैं। समंदर की शरण में जिंदगी मुस्कुराती है, उसकी विस्तृतता में एक आज़ादी का एहसास है। देखने में अथाह और शक्तिशाली समंदर, फिर भी कितना बेबस है। यह बेबसी इंसानी फितरत और भावनाओं से भी मेल खाती है, जहाँ हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ खास चीज़ों के लिए लाचार होते हैं। अब आपको हम आगे जो गीत सुनवाने वाले हैं, ये झुक गया आसमान इस फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

झुक गया आसमान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, राजेंद्र कुमार और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि आज की इबारत में विशाल अनंत कभी शांत चित्त तो कभी विकराल रौद्र रूप सिंधु की महिमा बखान है, कभी अटखेलियां करती लहरों और ज्वार भाटा से पर्यटकों को आनंदित करती है तो कभी पर्यावरण असंतुलन से असंतुष्टि का प्रदर्शन अपने रौद्र रूप चक्रवातों और सुनामी से करती है। समंदर मानव कल्याण के लिए खनिज, जीव जंतु, संचार, परिवहन, देश सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ भी है। अनेकों रहस्यों को समेटे सिंधु आज भी दहाड़ते हुए आकर्षण की प्रधानता स्वयं प्रमाणित करती है। सागर की लहरों संग का मनोरंजक सफर का हमें इंतजार है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज बातें होंगे समुद्र की, जिसे हम सागर, जलधि, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव आदि नामों से भी जानते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से ढका है, जिसमें महासागरों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। ये सूर्य की हानिकारक और तीव्र गर्मी को सोखकर वैश्विक तापमान को संतुलित रखता है। अगर समुद्र न हो तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले सबसे बड़े सिंक के रूप में काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, सागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। गाना है सागर जैसी आंखों वाली, अभिनेत्री कौन है, उनका आज जन्मदिन भी है तो उन्हें हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्म का ये गाना सुनते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ से जावेद अख्तर के बोल संगीत आरडी बर्मन का।

ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना है, सागर जैसी आंखों वाली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया। आज उनका जन्मदिन भी है, तो एक बार फिर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र केवल खारे पानी का अथाह विस्तार नहीं, बल्कि पृथ्वी का धड़कता हुआ हृदय है। दूर तक फैला उसका नीला कैनवास जितना मनोहारी है, उतनी ही गहरी उसकी संवेदनाएँ हैं। उसकी लहरें तट से मिलने की उत्कंठा में दौड़ती है, टूट जाती है, फिर भी जाते जाते सीप, शंख और मोतियों जैसी अनमोल सौगातें दे जाती है। मानव की उपेक्षा, प्रदूषण और प्रकृति की चुनौतियों को सहते हुए भी वो एक मौन तपस्वी की तरह बिना किसी शिकायत के सब कुछ न्यौछावर कर देता है और सृष्टि के लिए जीवन संतुलन तथा समृद्धि का आधार बना रहता है। अनंत गहराइयों, असीम धैर्य और मानवीय भावनाओं के इस जीवंत दर्पण में अनगिनत कहानियां, रहस्य और जीवन के सूत्र समाये हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अनोखी रात फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज़, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत, संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। संजीव कुमार इस गाने में एक वाहन चलाते हुए दिखाई देते हैं, वो वाहन कौन सा है आप हमें बताइए।

अनोखी रात फिल्म का ये गाना संजीव कुमार पर फिल्माया गया है और इस फिल्मांकन में वो बैलगाड़ी चलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र हमें सिखाता है कि गहराई में ही असली खजाना छिपा होता है। ऊपर लहरों का शोर होता है लेकिन भीतर अनगिनत मोती पलते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि इसका यानी कि समुद्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारी पृथ्वी को करीब 70% घेर के रखता है और हमें हवा पानी मुहैया करवाता है। हजारों लोगों को रोजगार देता है। इसके किनारे खड़े होने पर अलग अलग समय में अलग अलग दृश्य देखने का रोमांच अलग ही होता है। ठंडी हवा के झोंके से मन आनंदित होता है तो कभी दूर तक शांत दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि समुद्र केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि एक भावना है। इसे देखकर मन में असीम शांति और कभी कभी विचारों का ज्वार भाटा उठता है। यह बाहर जितनी अटखेलियां करता है इंसान के भीतर भी उतनी ही गहरी हलचल पैदा करता है। समुद्र की लहरें जब तट की रेतीली किनारे से टकराती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। लहरें अपने साथ गहरे समंदर में सुंदर सीप शंख और मोती तट पर छोड़ जाती है जिन्हें लोग यादों के तौर पर समेट लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रंगोली फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल और संगीत है शंकर जी जय किशन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है आप बताइए हमें।

अभिनेत्री वैजयंती माला ये गीत गा रही हैं फिल्म में जो हमें दिखाई देता है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सागर की लहरें किनारे से टकराकर लौट तो जाती है लेकिन हार कर नहीं, वे फिर जाती है, फिर कोशिश करती है। शायद इसी में जीवन का सबसे सुंदर संदेश छिपा है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज विश्व महासागर दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और उज्जवल भविष्य की नींव है। बढ़ते प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें समुद्रों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है कि ऐसी चीज़ों का उपयोग हम कम करें या ना करें जिनसे ये जो जलाशय हैं हमारे ये प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाएं तो प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा और गंदगी वहाँ पर फेंक करके ना जाएं, क्योंकि दूसरे भी तो सैलानी वहाँ आने वाले हैं ना देखने के लिए, और वो जब देखेंगे इस गंदगी को तो उन्हें फिर कहाँ आनंद आएगा। और वैसे भी इन चीज़ों से, प्लास्टिक से या गंदगी से, वो जलाशय जब गंदे

होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या देखेंगे, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या देख पाएगी? इस बात को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये गंदे हो गए तो ये हमारे दिल को बहला नहीं पाएंगे। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद का।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना दिलीप कुमार पर ये गाना फिल्माया गया है। एक हमारे साथी की बात है कि समुद्र सागर या फिर महासागर मनुष्य की जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये मात्र विशाल जलराशि का स्रोत नहीं है बल्कि असीम धैर्य स्थिरता और जीवन चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। सागर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हो सागर की गहराई उतनी ही शांत और गंभीर होती है जो एक संदेश देती है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो जीवन का उतार चढ़ाव में संयम और धैर्य रखें मन को विचलित न होने दें। समुद्र के सामने मनुष्य का अस्तित्व उसकी एक बूंद के बराबर है। समुद्र की विशालता हमें अहंकार मुक्त होकर प्रकृति के प्रति विनम्र रहने की प्रेरणा देती है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नीले जल में छिपे हैं कितने अनकहे राज, लहरों की जुबां पर बस प्रकृति का साज। शाम ढले जब सूरज समंदर में खो जाता है, हर कतरा तब प्रेम का दीप जलाता है। सीप की खामोशी में मोती का जन्म होता है।

राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, ये गाना अभी हमने आपको सुनवाया। एक साथी की ये बात है कि जब हम सागर के किनारे अपने पैर डालकर बैठे हैं तो वहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, आती जाती लहर को हम देख रहे थे, मानो वो हमसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, कुछ बताना चाह रही हो। हम सुनना चाहते थे उनकी बातें, कुछ सुनी। हर जाती लहर मानो हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ दूर, बहुत दूर ले जा रही हो, और हर आती लहर हमें अनगिनत खुशियां दे रही हो। बस फिर क्या, हमारी नटखट सी परी ने कहा, नानी उठो, हम दोनों इसमें पत्थर फेंकेंगे। और हमारी बातें अधूरी रह गई, हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे समुद्र से। एक साथी लिख रहे हैं कि सागर की आती जाती लहरें हमें ये संदेश देती है कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियों की लहर आती, कभी चुनौतियों की। लेकिन जैसे लहरें बार बार किनारे पर पहुँचने का प्रयास करती है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार कर लौटना नहीं, बल्कि फिर से उठकर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे सुंदर सीख है। चलिए अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं, तकदीर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ और साथ में कुछ और भी आवाज़ें हैं, सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और ईला देसाई की इसमें आवाज़ें हैं, और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है ये, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत कि जब हमारे घर के कोई व्यक्ति सात समंदर पार जाते हैं तो हम क्या उम्मीद रखते हैं, यही ना कि चाहे जो भी हो, बस आप सुरक्षित घर लौट आइए, घर लौट आइए।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सागर किनारे जो शाम होती है वो प्रकृति में सबसे मनमोहक और सुरमई सा रूप लेते हुए मनुष्य में एक कौतूहल उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इस समय सागर में उठने वाली लहरें मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, विरह और शांति को बहुत ही मनोयोग से बयां करती है। ढलती हुई शाम को सूर्य जब लालिमा बिखेरता है और सागर में उठती लहरों से किरणें आर पार गुजरती है, तो मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सागर का सोलह श्रृंगार कर दिया है। साथ ही नीला आसमां भी लालिमा बिखेरता है जो एक मनमोहक दृश्य बना देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है बल्कि प्रकृति की अनंत भावनाओं का प्रतीक भी है। इसकी अथाह गहराइयाँ हमें जीवन के रहस्यों का एहसास कराती है, जबकि इसकी लहरें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। महासागर प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो अपने सुंदरता, शक्ति और शांति से हर हृदय को छू लेता है। धन्यवाद आपका। और अब मजेदार फिल्म का गाना एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

एक साथी लिखते हैं कि कुछ बातें गीतों की तरह होती है, जितना सुनो उतनी ही अच्छी लगती है, और कुछ रिश्ते लहरों की तरह जो दूर रहकर भी मन के किनारों को छूते रहते हैं। कुछ गीत भी ऐसे होते हैं जो मन के किनारों को छूते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना संकल्प फिल्म का गाना, कैफी आजमी के बोल, संगीत खय्याम का, आवाज़ किसकी है बताइए हमें।

जी हाँ, इन सागरों की गहराई को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missile attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashvani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforced follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said that India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, Direct Benefit Transfer (DBT), Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said that technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor.
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन, आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण का अभियान उन गरीब लोगों के जीवन में गरिमा लेकर के आया। जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ।
0: Home Minister Amit Shah has said that welfare of the poor is the topmost priority of the government. In a social media post, Mr. Shah said that in the last 12 years, the government connected crores of citizens to banking facilities, financial security and self-employment opportunities through welfare schemes like the PM Awas, Jan Dhan, Mudra and PM Swanidhi. The minister said that by integrating the country's poor to the economic mainstream through basic infrastructure, social security and a better standard of living, a strong foundation for a developed India is being built. West Bengal is set to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, marking a significant step towards expanding healthcare coverage in the state. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding in New Delhi today in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Under the Trinamool Congress regime, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was not implemented in the state. More from our correspondent.
2: The development marks a major milestone in the journey towards achieving equitable and accessible healthcare for all citizens across the nation. Ayushman Bharat scheme provides health cover of up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. West Bengal will become the 36th state and UT to implement the scheme. Under the scheme, more than 36,000 government and private hospitals are empaneled and more than 44 crore Ayushman cards have been issued till date. Since its launch, the scheme has emerged as a cornerstone of India's healthcare transformation, reducing out-of-pocket expenditure and improving access to quality treatment through a vast network of empaneled public and private hospitals. With Dipendra Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
0: Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the three-day Zone 2 conference of the Commonwealth Parliamentary Association CPA India region in Chandigarh this afternoon. Our correspondent reports, legislators from across the country will attend the CPA conference being hosted by the Haryana Assembly. Lok Sabha Speaker Om Birla and other dignitaries will address the inaugural session. During the three-day conference, deliberations will be held on topics like the role of legislatures in the nation-building Vikasit Bharat 2047, artificial intelligence, and making democratic institutions more effective. Trinamool Congress strongman Jahangir Khan was arrested early this morning by the West Bengal police. He was apprehended near the Nepal border. He was reportedly attempting to flee across the border when STF officials, acting on a secret tip-off, intercepted and detained him. Khan is now being brought back to Kolkata for further questioning. The arrest comes in the wake of the Khalta Assembly re-election held on the 21st of last month. Following the defeat, Khan disappeared from public view, absent from both his home and party office. Considered close to Trinamool leader Abhishek Banerjee, Jahangir Khan was an influential leader of Khalta in South 24 Parganas. After the change of regime in the state, several villagers had raised allegations of land grab and extortion against Jahangir Khan. Trinamool Congress member of parliament in the Rajya Sabha Sukhendu Shekhar Roy announced his resignation today. Mr. Roy has stepped down not only from the upper house, but also from the primary membership of the Trinamool Congress. In a press note, Mr. Roy accused the Trinamool Congress of rampant corruption, extreme violence against women, and failures across sectors. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The Delhi High Court today issued notices to the Centre and the Central Board of Secondary Education, CBSE, over a PIL challenging the newly introduced on-screen marking system for Class 12 board exam answer sheets. A bench of Justices Nina Bansal Krishna and Madhu Jain sought responses from the Centre and CBSE on the plea filed by the National Students' Union of India and SUI. The court has listed the matter for hearing on the 12th of June. The PIL questions the fairness, transparency and reliability of the digital evaluation system adopted by CBSE. It alleged that thousands of students faced problems after the Class 12 results were declared. Meanwhile, the CBSE today said the application window for verification and revaluation for Class 12 examination 2026 remained fully functional from the 2nd to the 7th of this month. During the period, more than 1,60,000 candidates successfully submitted requests for over 3,08,000 answer books. The system remained under continuous monitoring by dedicated cybersecurity teams throughout the operational period to prevent malicious traffic and cyber threats. The National Testing Agency, NTA, has released the Exam City Intimation Slip for the NEET UG 2026 re-examination, scheduled to be held on the 21st of this month. Our correspondent reports that registered candidates can now check their allotted exam city by logging into the official website using their application number and password.
2: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to fall prey to the fraudulent solicitations. The agency has also urged all aspirants to ignore the rumors and to rely solely on official communication issued by NTA through its verified website and channels. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
0: Israel and Iran have traded fresh missile attacks on each other, triggering escalation in West Asia and jeopardizing the ceasefire. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, launched a fresh wave of strikes on key Israeli military installations. The IRGC Aerospace Force said the operation, named Operation Nasr, targeted core sectors of two of Israel's most important air bases, Nevatim and Tel Nof. The Israeli military has confirmed executing targeted airstrikes against a major industrial site in southwestern Iran. The military apparatus disclosed that the Israeli Air Force had recently attacked Several targets at the petrochemical complex in Mashhad, located in the strategic energy-rich coastal belt of Iran.
3: The latest exchange marks a significant setback for efforts to preserve a ceasefire that had largely held since April. Iran has portrayed its missile launches as a measured response to Israeli military actions in Lebanon, while Israel says its operations are aimed at degrading Iranian military capabilities, preventing further attacks. Diplomatic efforts are now intensifying to prevent the conflict from expanding further. United States President Donald Trump has urged both sides to avoid additional escalation and return to negotiations. Regional mediators are also working to keep communication channels open. Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani held discussions with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi as a part of ongoing efforts to preserve dialogue between Tehran and Washington. The broader negotiations remain complicated by disagreements over maritime access through the Strait of Hormuz and wider regional security arrangements. As military activity continues across multiple fronts, concerns are growing that the latest exchange could trigger a broader regional crisis with implications for energy markets, aviation and international shipping. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: Meanwhile, the Indian Embassy in Iran has advised internationals to avoid any travel to Iran in view of the recent developments in the region. In a social media post, the embassy also advised the internationals currently present in Iran to exit the country by available means of transport. Akashvani is celebrating the completion of its 90 years today. On this day in 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio, ushering the country into a special journey of culture, information and broadcasting to echo through generations. Post-independence, All India Radio expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Akashvani brings forth a voice that echoes through generations, carrying the nation's stories, values and aspirations to listeners across the country. More from our correspondent.
4: Post-independence, AIR expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Today, Akashvani operates 591 stations, reaching 98% of India's population, broadcasting in 23 languages and 146 dialects. Akashvani's External Services Division broadcasts to over 100 countries, projecting India's voice globally and connecting with the diaspora. Living up to its noble ideals of Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai, the News Services Division of AIR strives to provide news and views to every dweller in this vast country, in varied terrains, 24/7, in all major languages and dialects, while adhering to highest professional ethics and standards in radio broadcasting. With Aman Yadav, Vishnu PS, Akashvani News, Delhi.
0: In the Philippines, 16 people have been killed after a 7.8 magnitude offshore earthquake hit the Mindanao region of the archipelago this morning. More than 200 people have been injured due to the earthquake that also set off a tsunami. The local authorities are still verifying the extent of the fatalities and damage. In cricket, Afghanistan were 98 for 4 in their second innings on day 3 after being asked by hosts India to follow on in the one-off test at New Chandigarh. Earlier today, India's Manav Sutar snared a 6-wicket haul on a dream debut as Afghanistan were bowled out for a paltry 152. Earlier, India declared its first innings at a commanding 564 for 8. The India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missiles attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashvani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforce follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
6: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
7: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
5: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
8: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और वे सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
9: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
5: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
10: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
5: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
11: आ आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
12: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
13: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
11: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
14: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
5: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
15: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
5: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
16: आप सुन रहे हैं रेडियो भारती राष्ट्रीय सेवा, देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आज और कल। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिर लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम

अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ये सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में है, बीडी मिश्रा ने लिखा है, एसएन त्रिपाठी का संगीत है और फिल्म का नाम बीन का जादू।

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कैप्टन शेरू। इस फिल्म का ये गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, नक्श लायलपुरी के बोल और संगीत है एस मोहिंदर का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 3 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। नरेंद्र मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के संजौली में लगभग 3,18,00,000 रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नशा मुक्ति का संदेश देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से ही मशोबरा में महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार का पहला नशा मुक्ति केंद्र भी आरंभ हो गया है और जल्द ही दूसरा महिला नशा मुक्ति केंद्र कांगड़ा में खोला जाएगा।
2: समर फेस्टिवल शिमला का आगाज हर वर्ष होता था, इस बार इस कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम को जोड़ा गया है जो चिट्टा मुक्त वॉलीबॉल प्रतियोगिता का ये आयोजन किया जा रहा है और इसमें 12 हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीमें वो सम्मिलित हो रही है और इसमें चिट्टा मुक्त वॉलीबॉल जो हमारा ये आयोजन है इसके लिए आज शिमला समर फेस्टिवल से आज इसकी शुरुआत। मशोबरा में पहला डी एडिक्शन सेंटर जो हमारी लेडीज है उसके लिए खोला जा रहा है।
0: इस बीच अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक चलने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत है, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। प्रदेश कांग्रेस ने नीरज भारती विवाद पर पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक बुलाई है। पार्टी महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में कहा कि नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यहीन और निराधार है। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर किसी भी नेता या कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके लिए किसी भी सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति की बैठक में नीरज भारती घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा होगी। विनोद जिंटा ने यह भी कहा कि भविष्य में यदि कोई नेता या कार्यकर्ता इस तरह की अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने नीरज भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। इस बीच प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीप निभारद्वाज ने नीरज भारती द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर है और इन आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संदीप निभारद्वाज ने दावा किया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के भीतर चल रही खींचतान अब सार्वजनिक मंचों तक पहुंच गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार के भीतर भारी असंतोष और सरकार दिशाहीन हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब उसके नेता आपसी गुटबाजी में उलझकर जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर उसका उचित जवाब देगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: ये थे प्रादेशिक समाचार। आइए अब सुने सामयिक चर्चा। विषय है, मोदी सरकार के 12 वर्षों ने भारत के निर्माण में जन आकांक्षाओं को दिया नया आकार। वाचक हैं राकेश शर्मा।
0: नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल ने भारत को अवसरों, इनोवेशन और आत्मविश्वास से प्रेरित एक आकांक्षी देश में बदल दिया है। गवर्नेंस में सुधार, टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण और नागरिकों पर केंद्रित नीतियों ने भारतीयों के अपने भविष्य को देखने के नजरिए को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, अगले 7 से 8 वर्ष में बढ़कर लगभग 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। भारत का अंतरिक्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम कुछ साल पहले एकल अंकों की संख्या से बढ़कर आज लगभग 400 हो गया है, जिसमें से एक स्टार्टअप ने हाल ही में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य अब लगभग 9 अरब डॉलर है और अगले 7 से 8 वर्ष के अंत तक इसके 45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम 2014 में लगभग 350 से 400 स्टार्टअप से बढ़कर वर्तमान में 23 लाख से अधिक हो गया है, जिससे लगभग 24 से 25 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। इनमें से लगभग आधे स्टार्टअप द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों में स्थित है, जबकि 35 से 39% स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित है। हाल ही में हुए एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण में लगभग 1,500 मीडियाकर्मी और लगभग 10,000 दर्शक शामिल हुए, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। सरकार के कुछ शुरुआती सुधार नागरिक केंद्रित शासन मॉडल की ओर बदलाव का प्रतीक थे। इन सुधारों से ये विश्वास पैदा हुआ कि सफलता प्रभाव या सिफारिश की बजाय योग्यता और कड़ी मेहनत से प्राप्त की जा सकती है। पिछले 12 वर्षों में प्रक्रियात्मक के साथ साथ सबसे गहरा परिवर्तन मनोवैज्ञानिक भी रहा है और भारत में एक नई महत्वाकांक्षी संस्कृति का उदय हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में मानसिकता में जो बदलाव आया है, वो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। ये बदलाव छोटे शहरों और गैर महानगरीय पृष्ठभूमि से उभरने वाले सिविल सेवा परीक्षा के शीर्ष विजेताओं की बढ़ती संख्या में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अवसरों के लोकतंत्रीकरण का दर्शाव है। सरकार ने एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया है जिसमें नागरिक राष्ट्रीय वैज्ञानिक उपलब्धियों से अधिकाधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और नवाचार को एक साझा राष्ट्रीय प्रयास के रूप में देखते हैं। मोदी ने असफलताओं के बाद वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और उनकी सफलताओं का जश्न मनाया, जिससे ये धारणा सामान्य हो गई है कि विफलता नवाचार और प्रगति का एक हिस्सा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास भारत की सफल लैंडिंग ने विज्ञान में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई है, जबकि भारतीय लूनर मिशन की पिछली खोजों से चंद्रमा पर पानी के अणुओं के सबूतों का पता लगाने में मदद मिली थी। मोदी सरकार ने दशकों से सीमित पहुंच वाले रणनीतिक क्षेत्रों जैसे कि अंतरिक्ष और परमाणु इकोसिस्टम के कुछ हिस्सों को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है। ये क्षेत्र परंपरागत रूप से बंद दरवाजों के पीछे संचालित होते थे, लेकिन अब उद्योग, उद्यमियों और स्टार्टअप्स के साथ एकीकृत हो गए हैं। इस नीतिगत बदलाव ने करियर के अवसरों का विस्तार किया है, नवाचार को गति दी है और भारत के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया है। विकसित भारत जैसी पहल घरेलू तकनीक तुलनाओं की बजाय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर भारत की प्रगति का मूल्यांकन करने पर व्यापक जोर देती है। कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में भी सार्वभौमिक और पारदर्शी कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति हुई है। आवास और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत जाति, धर्म या किसी अन्य संबद्धता के आधार पर भेदभाव किए बिना लाभ वितरित किए जा रहे हैं, जिससे सार्वजनिक संस्थानों और शासन प्रणालियों में अधिक विश्वास पैदा हो रहा है। भारत के विकास के सफर में सार्वजनिक निजी सहयोग को और मजबूत करना, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों का निरंतर विस्तार करना और प्रदर्शन एवं नवाचार के वैश्विक मानकों का पालन करना आवश्यक होगा। सरकार का दीर्घकालिक उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि एक सशक्त और महत्वाकांक्षी समाज का निर्माण करना है, जो 2047 तक एक विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान दे सकें। इसके साथ ही सामूहिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 3:10 हुए हैं अब से लेकर शाम 4:59 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: ठीक आया कि दिल में।
1: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण, इसका भाग दो।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
4: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधु को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
3: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
4: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे। उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है, पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा, यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय ना कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही ना होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया, घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते, फिर हाँप कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
2: क्या बात है,
1: मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली।
0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
3: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या, लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन निद्रा राग रंग आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। साहब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं।
0: अंत को न रहा गया, जनान खाने में आकर बोले,
3: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
4: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
3: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
4: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
3: फजूल की मचमच,
4: तुमसे मतलब।
3: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
4: तो मेरा घर कहीं और है।
3: इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
4: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
3: ओहो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
4: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
3: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
4: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
3: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
4: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
3: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
4: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
0: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने

बैठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहाँ चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूँ बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन? वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ताका।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहाँ है?
2: मैके कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहाँ जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
0: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
3: मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल वेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मछली तो वहां पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे

0: बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं, और इससे
1: तेल मिलता है
0: हाँ तेल
1: जिससे, जो
0: जी
1: बहुत बड़ा स्रोत है हम सब जो.
0: बिल्कुल ईंधन का साधन है, और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
1: बिल्कुल, हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है. ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान हैं. रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहाँ जहाँ पानी है वहाँ उठती है फेनिल हिलोरें, और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है. क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो
0: जी
1: चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के
0: बिल्कुल
1: किनारे सैर करना बहुत सुहाता है. हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को,
0: जी
1: लेकिन सुखद भी लगता है.
0: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती हैं, ऐसा लगता है वो दृश्य।
1: इसी तरह की
0: तो
1: बात हमारी एक और सखी
0: जी
1: लिख रही हैं कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है, जो मनमोहिनी का काम करता है. उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है. दूध सी आतिशुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पाँव में पायल बांध दी, और नूपुर बज उठते हैं. उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है. क्या बात है भाई, आज तो
0: बहुत
1: हमारी
0: बड़ी अच्छी अच्छी
1: सखियाँ
0: बातें लिखी हुई
1: बड़ी
0: जी
1: ललित भाषा
0: जी
1: में ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है. शुक्रिया अदा करते हैं.
0: जी और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है, जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर हैं। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
1: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने. और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरती देखें तो एक संदेश होता है. हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है.
0: क्या
1: तो
0: बात
1: जब
0: है
1: बहुत
0: जी
1: ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए. कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा है ये. इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है. इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है. बहुत सी चीज़ें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएँ तो वहाँ स्वच्छता, साफ़ सफाई ज़रूर रखें. ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई
0: जी
1: तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते
0: ऊंचे
1: हैं
0: ख्वाब देखते
1: और
0: हैं
1: ये अपनी अपनी जड़ों को, ज़मीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज़्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज़्यादा लगेगी, है ना?
0: बिल्कुल। जब आप
1: तो
0: ये बात कह रही थी ममता जी तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर, कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि आपकी जो कलम चलती है, तो उस नज़रिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती
1: शुक्रिया
0: हैं
1: मंजरी जी.
0: जी
1: लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
0: जी
1: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय, हम प्रकृति के उन नज़ारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें,
0: जी
1: आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं.
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
1: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें.
0: बहुत सारी
1: लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ पढ़ देते हैं दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार। और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है, बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए। सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है। बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो।
1: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देवबर्मन ने संगीत दिया। बारू

0: तैयार किया
1: और देखिए ना, कुछ
0: था
1: कहने
0: तो,
1: वाले नहीं
0: अरे
1: हमें।
0: आपने मुझे बोली नहीं थी, काट दिया
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम अगले
0: तपाक
1: विषय,
0: से,
1: तपाक से
0: मतलब ये तपाक से बोलना हुआ
1: तपाक से बोलना हुआ
0: लेकिन कई बार
1: जी
0: जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है। और तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसा बोला ना कि तपाक से बोल दिया, तो
0: हाँ
1: उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है। लोग सोचते
0: नहीं,
1: हैं ये
0: कई बार
1: क्या
0: सही
1: कह
0: भी
1: रहा
0: तो
1: हूँ,
0: हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता
0: जैसे
1: है।
0: अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया
1: लेकिन
0: लेकिन आप घबरा
1: हमें
0: गई
1: लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। और
0: हाँ,
1: कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी
0: कोई
1: कि मतलब वो
0: अच्छी
1: जानबूझ के
0: बात
1: अपने,
0: जान बोल
1: हाँ
0: देते हैं, कोई जानकारी होती है
1: जी
0: और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं, ये ऐसा था।
1: बिल्कुल। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है, मतलब है कहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए, कहाँ बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आप में आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं। कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है। और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी। और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन
1: तो
0: हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं, जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई, तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ, भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से,
1: बिल्कुल
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो, तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को बर्बाद करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुभते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए। पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले, सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है। इन्होंने ये बात लिख करके भेजी
0: और
1: है।
0: हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी, विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती, बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है। जहाँ लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं, वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन, रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो, मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी, अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है, इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं, सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में ना काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से, कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं
1: जी
0: मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं, तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात है
1: बिल्कुल
0: कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है तो इसलिए एक दूसरे को काट कर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
1: देखिए, एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे। ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है, लेकिन प्रायः

0: महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है, इन्होंने लिखा है। पड़ोसी की
1: काफी
0: पति
1: विश्लेषण किया है
0: हाँ, देखिए ना,
1: इन्होंने।
0: पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ, कभी कभी हमारी भी ऐसी करती हैं। अब नहीं तो कहकर सर मैं उन्हें तकलीफ क्यों
1: अच्छा, वैसे
0: पहुंचाऊं।
1: झगड़े के वक्त
0: जी
1: तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना,
0: बिल्कुल,
1: फटाफट फटाफट
0: वो जो
1: तपाक से।
0: तपाक से
1: ऐसे
0: फूटते
1: नॉर्मल
0: हैं।
1: बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और
0: तेजी से,
1: फास्ट बोलने लगते हैं।
0: सही
1: तो
0: बात
1: ये
0: है,
1: क्या वजह है? हमें लगता है कि
0: भरे
1: अंदर
0: बैठे होते होंगे
1: से
0: इसलिए बोल जाते
1: एक श्रोता ने लिखा है कि
0: होंगे।
1: तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती हैं?
0: नहीं, अब गीत सुन लेते।
1: सुनते हैं।

0: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम कल
1: ही कहना पड़ेगा
0: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से, तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज।
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी।
0: तो ये रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
1: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
0: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
1: अभी तो
0: सिर्फ बनाया नहीं जाता है।
1: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे, आपकी आंखों की जो चमक थी वो समझ गई थी।
0: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही हैं?
1: आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं। इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। अब आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो लोई आटा साना है उससे लोइयां बनाइए, उसमें आलू का भ्रावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हाथ हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आँच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियाँ तैयार हो जाए।
0: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
1: बिल्कुल ये टाली भी नहीं जाएगी।
0: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल, 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1/6 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1/6 चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकाल कर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें, अब दाल मध्यम आँच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें, अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें, इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
1: जी।
0: और अब ये गाना सुनें।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज़ थी। और अब घड़ी की ओर ज़रा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

పెట్టారా. పెట్టారా మే ఆజ్ సెహత్నామా.

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूँ, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूँ और उनको मेरे विचार पहुँचा सकता हूँ, और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह, कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खास तौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल एक कॉमन सी बात हो गई है। और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज़ मलाइटस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है, और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मलाइटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मलाइटस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह डायबिट इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफ़ी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज़ होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मलाइटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज़ शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज़ पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है तो उनको डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
0: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वह किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया। हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटिसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है।
1: सी, डायबिटीज़ मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडिमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
0: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नज़रिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है।
1: टाइप वन के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफ़ी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है,
0: ओहो,
1: इतना ज़्यादा शुगर होता है।
0: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
1: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं, फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है, जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज़्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज़ लेबल कर देंगे।
0: अच्छा यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो, कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वज़न कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज़्यादा खा लिया है, तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
1: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा। बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी,
0: अच्छा,
1: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत ज़रूरी है।
0: जी हाँ भाई, देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप।
1: श्रोताओं को मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज़ ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
0: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप 1 के भी मिलते हैं, टाइप 2 के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप 2 मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप 1 कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज़ के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज़ हो सकता है, या बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज़ का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज़्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का इंडिकेटर है, और अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते
0: तो कभी
1: हैं।
0: कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज़ का इंडिकेटर मिलता है, और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज़ का मरीज़ ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है। तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है, बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का BP बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको OPD बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज़ नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज़ का रोगी है क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है? ये आप देखते हैं,
1: सही
0: पूरा
1: बात,
0: हिस्ट्री मालूम पड़ता है?
1: यस।
0: कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें, जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या है, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं, तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
1: राइट पेशेंट्स
0: वो
1: को
0: दूर
1: बहुत
0: हो जाता
1: टेंशन
0: है।
1: होती है।
0: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
1: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा जो मेरे एमडी के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा।
0: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज़ होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज़ है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स हैं, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन्स देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके।
0: हाँ,
1: तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहाँ पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज़ की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज़ की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वज़न बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज़ इट्सेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस, डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज़ आ जाता है?
1: ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज़ हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है तो काफ़ी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज़ आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज़ होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि ये पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज़ के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता है?
1: टाइप 1 डायबिटीज़ में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज़ है कि नहीं। बट अगर बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन्स है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, उसमें इंसुलिन इज़ द लास्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन दवाइयाँ मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज़ से के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही है उसको,

0: तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
1: जी सही बात है। इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा, बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं।
0: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दौर्बल्यता आती है।
1: डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
0: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
1: डायबिटीज़ जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स हैं जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दें, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूअसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशंस है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज़ की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज़ हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली हैं।
0: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
1: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे ज़मीं पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा।
0: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे ज़मीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज़ हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज़ के लिए प्रोन हैं। ज़रूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज़ होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज़ नहीं है, उससे आप रिस्क पे हैं, उससे ज़्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज़ होने की। आजकल जो उससे ज़्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज़ है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदी हैं, ये पेशेंट्स में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज़ डायबिटीज़ जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें। तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज़ को डायबिटीज़ हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरेडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज़ देखने को मिलते होंगे आपको, कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है?
1: डायबिटीज़ में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज़ है तो सभी बच्चों को डायबिटीज़ होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज़ नहीं हो।
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी। अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं,
1: सही
0: तभी
1: बात,
0: इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं?

0: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है भागदौड़ वाली, मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी स्टडीज़ है जो बताती हैं कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो दूसरे से बाहर लो, बीच में जो दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो,
1: जी
0: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज़ के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
1: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए।
0: जी, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफ़ी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर,
1: जी
0: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है, और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज़ होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज़ जो जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊँ तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहाँ पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोतीबिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं, इतना गंभीर रूप से डायबिटीज़ का असर होता है।
1: ओहो
0: तीसरा असर डायबिटीज़ का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में, स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है, और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है, ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ़ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
1: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पत्तलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
0: डायबिटीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट, जैसे कि मैंने बताया न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में ज़ख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये ज़ख्म बढ़ता जाता है, और डायबिटीज़ के जो मरीज़ है ये काफ़ी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए, और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुटवेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पूटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल।

0: यूज़ होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं लें, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज़ कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
1: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
0: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूँगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।
1: आइए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुनें तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।

0: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थीं और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहे।
4: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
5: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
6: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
3: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रमीण खन्नुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सांसद पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा और शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफल रहने का आरोप लगाया है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी नेता सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कुछ विपक्षी दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक में 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित की थी। जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई। इसके बाद फॉलोवन खेलते हुए दूसरी पारी में भी अफगानिस्तान 112 रन ही बना सका। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 146 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

कार्यक्रम रूपरेखा के बाद भजन संध्या कार्यक्रम के साथ हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम में कुछ पहाड़ी भजन हम आप तक पहुंचाएंगे। युव मंच कार्यक्रम सुनिएगा 5:30 पर। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे 6:00। सफर सुहाने, गाने नए पुराने, जी हाँ, इस कार्यक्रम में कुछ नए कुछ पुराने फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा 6:05 पर। 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। 7:05 पर सुनिएगा देश गान। 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा और आज का विषय रहेगा किसान सशक्तिकरण। 7:45 पर जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली

शिमला केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद के अंतर्गत विशेष वार्तालाप का प्रसारण किया जाएगा। प्रतिभागी रहेंगे डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, कुलपति भारतीय जनसंचार संसाधन और पूर्व महानिदेशक आकाशवाणी, प्रोफेसर अशोक टंडन वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर वर्तिका नंदा वरिष्ठ लेखिका, श्री प्रदीप सरदाना वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही समाचार संध्या 9 बजे News@9 अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 10 बजे सुनिएगा नाटक। 10:30 पर रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। देर रात्रि 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 5:08 और पूरे 36 सेकंड्स हो चुके हैं। जी, आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं आज के भजन संध्या कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का पहला शिव भजन आपके रेडियो सेट्स पर भेज रही हैं। गायक कलाकार हैं करनैल सिंह राणा।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
3: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
4: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
5: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: जी श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं माता रानी की ये भेंट, जिसे गाया है जोगिंदर बल्लानी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। शाम के 5:30 हुए हैं और अब वक्त है आज के युवमंच कार्यक्रम का।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे दैनिक कार्यक्रम यू मंच में और आज मैं हूं आपके साथ संगीता। तो दोस्तों, कार्यक्रम यू मंच भरा हुआ है जानकारियों से और देखिए, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं।

0: हैं कि देश की प्रगति में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। वे किसी भी राष्ट्र की रीढ़, ऊर्जा के मुख्य स्रोत और परिवर्तन के अग्रदूत होते हैं। उनकी नई सोच, तकनीकी कौशल और असीम उत्साह सीधे तौर पर देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को दिशा देते हैं। राष्ट्र निर्माण या विकास में युवाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का विकास भावी पीढ़ी पर निर्भर करता है। लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति का भविष्य युवाओं पर आधारित होता है। गरीबी, बेरोजगारी, वैश्विक तापमान वृद्धि और अनेक प्रकार के प्रदूषण जैसी समस्याएं आज विश्व के सामने हैं, और इन सभी समस्याओं का समाधान भी हमारी अगली पीढ़ी के पास ही है, क्योंकि युवाओं की सबसे विशिष्ट विशेषता उनकी असीम ऊर्जा और उत्साह है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सामने आती है, जब इसे रचनात्मक रूप से उपयोग में लाया जाता है, चाहे वह स्वयं सेवा हो या सार्वजनिक सेवा में शामिल होना या फिर किसी सामाजिक आंदोलनों में भाग लेना। यह गतिशील ऊर्जा परिवर्तन को गति प्रदान करती है। और देखिए दोस्तों, आज का नव प्रवर्तक एक युवा ही है जो भारत में स्टार्टअप शुरू करता है, ऐप बनाना या किसी स्थानीय समस्या का जमीनी स्तर पर समाधान खोजना जानता है। प्रौद्योगिकी, शिक्षा, डिजिटल साक्षरता तक बढ़ती पहुंच के साथ भारतीय युवा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और शासन के क्षेत्र में सदियों पुरानी चुनौतियों से निपटने के लिए नए दृष्टिकोण और नवीन तरीके ला रहे हैं। देखा जाए तो समाज के परिवर्तन में युवाओं की भूमिका कोई नई बात नहीं है। बीते हुए समय से लेकर वर्तमान समय तक सामाजिक सुधार या जितने भी अन्य क्षेत्र हों, उनमें युवाओं ने निरंतर परिवर्तन की जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि युवा लोग कार्यबल और उद्यमी दोनों के रूप में राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। तो दोस्तों, आज दैनिक कार्यक्रम यू मंच में भी हम बात करेंगे उस विषय पर जो हर युवा के भविष्य से जुड़ा है। जी हाँ, पिछले 12 वर्षों में युवाओं के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। भारत एक युवा देश है जहाँ बड़ी संख्या में आबादी युवाओं की है, इसलिए युवाओं को कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किल इंडिया मिशन की। 2015 में शुरू किया गया स्किल इंडिया मिशन युवाओं को रोजगार योग्य बनाने की एक बड़ी पहल है दोस्तों। इसका उद्देश्य है युवाओं को तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण देना। आज कई युवा पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं पा पाते, इसलिए उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई। इसकी मुख्य बातें हैं फ्री या कम खर्च में स्किल ट्रेनिंग, 40 से ज्यादा सेक्टर में प्रशिक्षण जिनमें IT, हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन आदि शामिल हैं, प्रमाण पत्र जो नौकरी में मदद करता है और इससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। यह स्किल इंडिया का सबसे बड़ा हिस्सा है दोस्तों। इसमें युवाओं को शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराए जाते हैं ताकि वे जल्दी रोजगार पा सकें। 15 से 45 दिन या कुछ महीनों के कोर्स इसमें शामिल हैं, मुफ्त प्रशिक्षण, कभी कभी स्टाइफंड भी दिया जाता है, प्लेसमेंट सपोर्ट यानी नौकरी दिलाने में मदद भी की जाती है। और यह योजना खासकर उन युवाओं के लिए है जो जल्दी काम शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं PMKVY। अब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की। 2016 में शुरू हुई यह योजना युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए है। पहले लोग नौकरी ढूंढते थे, लेकिन अब युवा खुद बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसलिए तो कहा जा रहा है कि अब युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले उद्यमी भी बन रहे हैं। इन योजनाओं में युवाओं को फंडिंग, टैक्स छूट और मार्गदर्शन भी मिलता है। इसमें स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है, फंडिंग और निवेश की सुविधा भी मिलती है, मेंटरशिप और इनक्यूबेशन सपोर्ट भी मिलती है, और इससे भारत में हजारों नए स्टार्टअप बने हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही वक्त हो चुका है कार्यक्रम यू मंच में एक अंतराल का।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यू मंच आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। तो युवा दोस्तों, अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया मिशन की। जी हाँ, यह योजना भारत को डिजिटल देश बनाने के लिए शुरू की गई। अब सरकारी काम, बैंकिंग, पढ़ाई, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है, तो डिजिटल इंडिया मिशन ने देश को तकनीक से जोड़ा है। और इसकी मुख्य बातें हैं जैसे ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, आधार, पैन, राशन इत्यादि, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का विस्तार होना, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन क्लासेस का होना, युवाओं के लिए नए डिजिटल रोजगार भी शुरू हुए और इससे गांव और शहर के बीच की दूरी भी कम हुई है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करें PM सेतु की, तो इसमें ITI संस्थानों का आधुनिकीकरण करना, युवाओं को आधुनिक उद्योगों से जोड़ना, यह सब इसकी मुख्य बातें हैं। बात करें अटल इनोवेशन मिशन की, तो यह योजना छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच बढ़ाने के लिए है, जिससे कि युवाओं में नवाचार बढ़े। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाना, बच्चों को रोबोटिक्स, AI, विज्ञान प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिलना, स्टार्टअप और नए आइडियाज को बढ़ावा मिलना, और इससे बच्चे छोटी उम्र से ही इनोवेशन सीखने लगते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020, यह नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लाई गई, जिसकी मुख्य बातें हैं +2 सिस्टम बदलकर नया ढांचा तैयार करना, पढ़ाई के साथ स्किल शिक्षा पर जोर देना, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम बनाना, व्यवहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करना, और इसका उद्देश्य है रटने की बजाय सीखने वाली शिक्षा देना। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री युवा योजना की, यानी PM युवा। यह योजना युवा लेखकों और विचारकों को तैयार करती है और इससे युवा अपने विचार, संस्कृति और भारत की विरासत पर लिखने के लिए प्रेरित होते हैं दोस्तों। इसकी मुख्य बातें हैं लेखन प्रतियोगिता और प्रशिक्षण, भारत की संस्कृति और इतिहास पर लेखन, युवा लेखकों को राष्ट्रीय मंच का मिलना, और इससे युवा अपनी सोच को किताबों और लेखों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे माई भारत प्लेटफॉर्म की बात करें, तो यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को राष्ट्र निर्माण और गतिविधियों से जोड़ता है। इसमें वॉलंटियरिंग और इंटर्नशिप के अवसर मिलते हैं, नेतृत्व विकास होता है, सामाजिक कार्यों में भागीदारी मिलती है, और इससे युवा समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भाग लेते हैं। इन जानकारियों के साथ कुछ और भी बातें करेंगे आपके साथ, इससे पहले सुन लेते हैं एक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: तो दोस्तों, पिछले 12 वर्षों में इन सभी योजनाओं का एक ही उद्देश्य रहा है, युवाओं को शिक्षित, कौशलयुक्त, आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बनाना। तो आज का युवा अगर आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी देश की प्रगति उसकी युवा शक्ति पर निर्भर करती है। और एक प्रगतिशील देश वही होता है जहाँ युवा केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्माता बनते हैं। तो बस इसके लिए चाहिए कि हमारे युवा देश की प्रगति का आधार बने, और प्रगति का आधार होता है शिक्षा, यानी वो शिक्षावान बने। और आज का युग तकनीक का युग है, तो नवाचार और तकनीकी विकास हमारे युवाओं का होना बहुत जरूरी है। और इन सब योजनाओं के साथ युवा केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि देने वाले भी बने। इससे युवा समाज सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसके साथ साथ युवाओं का एक जिम्मेदार नागरिक होना भी बहुत जरूरी होता है, जिसमें मतदान करना, कानून

इसलिए तो कहा जाता है ना कि आज का युवा कल के भारत का निर्माता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम यू मंच यहीं संपन्न होता है। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी के लिए बहुत सी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। संगीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युव मंच। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को है थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: Oh, lovely. Well done.
2: Business loan approved.
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे जिम्मेदार, संवेदनशील और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित नागरिक बन सकें। राज्यपाल आज शिमला में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति हमारी पहचान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि नई पीढ़ी को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्वतों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। रामनाथ कोविंद आज कुल्लू के घुड़दौड़ स्थित ऋषि भूमि योग आश्रम परिसर में नवस्थापित ऋषि भूमि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति और मानव का संबंध अत्यंत गहरा और हमें प्रकृति का सम्मान करते हुए उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने संजौली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर कहा कि चक्का जाम किसी समस्या का हल नहीं है और सरकार किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए उपलब्ध है।
8: जो भी कानून हाथ में लेगा वो गलत बात है। अगर ये सोचे कि इतने लोग ट्रैफिक में चलते हैं, वही प्रॉब्लम है, समस्या मिल बैठ के समाधान किया जा सकता। मैं तो सबकी समस्याओं को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन ये सरकार का राजनीतिक चक्का जाम अच्छा नहीं होता।
7: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने नीरज भारती द्वारा मुख्यमंत्री

0: पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इन आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब उसके नेता आपसी गुटबाजी में उलझकर जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर इसका उचित जवाब देगी।
1: कांगड़ा से संबंध रखने वाले नीरज भारती जो पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पे जिस तरह से आरोप लगाए हैं, किस तरह से सूट केस में हिमाचल प्रदेश से पैसे इकट्ठे करके दिल्ली जा रहे हैं या मुख्यमंत्री के कार्यालय में बंट रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में इसलिए नहीं लाया कि वो इस तरह के कार्य, इस तरह की कुरीति करें, और वो आरोप भी इनके अपने लोग जो कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उन पे लगा रहे हैं। जो भी आरोप है वो गंभीर है और हिमाचल की जनता आने वाले 2027 में इसका जवाब देगी।
0: लाहौल स्पीति के कोकसर की ओर से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग पास जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी होगा। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने आज जारी आदेशों में कहा है कि बिना वैध परमिट के किसी भी वाहन को पुलिस बैरियर कोकसर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार ये व्यवस्था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। इन निर्देशों के तहत रोहतांग पास जाने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज ने टांडा मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग के एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर का सरकार द्वारा स्थानांतरण किए जाने का विरोध किया है। डॉक्टर जनकराज ने आज कहा कि एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर के तबादले का हजारों मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस तबादले को तुरंत रद्द करने की मांग की। डॉक्टर जनकराज ने हृदय रोग विभाग में और अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात करने का भी सरकार से आग्रह किया। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में फिर से मौसम के बिगड़े तेवरों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को राज्य के चार जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश के मैदानी इलाकों में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी शिमला में भी दिन के समय लोगों को कड़क धूप का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहां सुबह शाम मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6:06 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है आज का सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम। जी श्रोताओं, सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और हम जानते हैं कि ये आपका मनपसंद कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पर बातें होती हैं दिल से सीधे आपके दिल तक। और आज के इस सफ़र में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस मुसाफिर की जिसका नाम है जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे ज़माना है, खूबसूरती तो तब है जब हर मोड़ पर मुस्कुराना है। दोस्तों, हर उम्र का अपना एक अलग मिजाज होता है, अपनी एक अलग धूप छांव होती है। बचपन की नादानियों से लेकर बुढ़ापे के तजुर्बों पर जिंदगी का हर पड़ाव एक नया पन्ना खोलता है। और बात करें अगर उस बचपन की, तो वहाँ सबसे बड़ी

चुनौती होती है शाम को खेलने का वक्त मिलेगा या नहीं, या फिर होमवर्क कैसे पूरा होगा। वो एक ऐसा सफर जहां घुटने पर चोट लगती थी तो दिल नहीं दुखता था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि काश वो बेफिक्री का दौर एक बार फिर से लौट आए। तो चलिए उसी दौर पर आपको ले चलते हैं एक बार फिर से।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी श्रोताओ, सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उस मुसाफिर की जिसका नाम है जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में हर उम्र हर पड़ाव पे अपने ही संघर्ष होते हैं और अपनी ही चुनौतियाँ भी होती हैं। वहीं हम अगर बात करें तो ये भी सच है कि हर उम्र का अपना एक अनोखा सफ़र है और उसका अपना ही एक मज़ा भी होता है। दोस्तों, युवावस्था की दहलीज की अगर हम बात करें तो ये वो उम्र होती है जहाँ पैरों में गति और आँखों में आसमान छूने के सपने होते हैं, लेकिन चुनौतियाँ यहाँ भी कम नहीं होती। करियर बनाने का दबाव, खुद को साबित करने की जद्दोजहद और दिल के रिश्तों की उधेड़ बुन, इस उम्र का सफ़र थोड़ा तूफानी होता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जो हमारे आने वाले कल की नींव भी रखता है। तो दोस्तों, कुछ खट्टे मीठे एहसास इस उम्र के इस दौर में भी होते हैं। तो चलिए ये गीत सुनते हैं और महसूस करते हैं युवावस्था के उस दौर को।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी दोस्तों, युवावस्था से फिर उस दौर का पड़ाव शुरू होता है जहां धीरे धीरे सफर आगे बढ़ता है समझदारी और जिम्मेदारियों के दौर की तरफ, जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जीता है। यहां चुनौती होती है वक्त, काम और परिवार के बीच एक संतुलन बनाने की। इस उम्र का सफर धीमा जरूर होता है, लेकिन इसमें भी एक गहरा ठहराव और सुकून होता है।

जी दोस्तों, जिंदगी के रंग हर उम्र के संग, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। और तीसरे पड़ाव के बाद जब चौथा पड़ाव आता है, उसे हम बुढ़ापा नहीं कहते बल्कि तजुर्बों का खजाना कहते हैं। चुनौतियां यहाँ शारीरिक रूप से थोड़ी बढ़ जाती हैं, लेकिन इस उम्र का सफर सबसे समृद्ध होता है। दोस्तों, देश और समाज की असली पूंजी हमारे ये बुजुर्ग हैं, जिनकी छांव में बैठकर नई पीढ़ी सही और गलत का अंतर करना सीखती है। चलते चलते हम बस इतना ही कहेंगे कि उम्र चाहे कोई भी हो, दिल का जवान होना लाजमी है। अपनी उम्र के इस मोड़ को भी जी भरकर जीना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वक्त दोबारा नहीं आएगा।

0: बंद गोभी रही 20 रुपए, शिमला मिर्च रही 50 रुपए, किया रहा 20 ते 30 रुपए प्रति किलो, भिंडी रही 25 ते 28 रुपए प्रति किलो, टमाटर रहा 18 ते 20 रुपए प्रति किलो, हरी मिर्च रही 45 ते 50 रुपए, नींबू का अजका भाव रहा 70 ते 80 रुपए प्रति किलो, कद्दू का अजका भाव है 15 रुपए ते 20 रुपए प्रति किलो। फलों की जे गल करिए केला प्रति डिब्बा अज रहा 480 ते 450 रुपए, सेब प्रति किलो के हिसाब ने रहा 160 ते 170 रुपए, अनार प्रति किलो रहा 180 ते 220 रुपए, पपीता रहा 50 रुपए, अमरूद का अजका भाव है 125 ते 130 रुपए, तरबूज रहा 15 ते 16 रुपए प्रति किलो, अंब सफेदा रहा 70 ते 80 रुपए, अंब तोता रहा 45 ते 50 रुपए, कने अंब दशहरी का अजका भाव है 60 ते 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब ने। कने जिनसा की जे गल करिए बासमती चावल अज रहे 40 ते 100 रुपए, बेगमी चावल रहे 30 ते 40 रुपए, दड़ा चावल रहे 25 ते 30 रुपए, मां की दाल रही 115 ते 130 रुपए, मूंगी रही 90 ते 100 रुपए, चना रहा 75 ते 150 रुपए, गुड़ रहा 40 ते 45 रुपए, कने मिर्च सुखिया का भाव रहा 350 ते 380 रुपए प्रति किलो के हिसाब ने। थे अज के थोक बाजार भाव कने इना सौगी उन अज का खेतीबाड़ी कार्यक्रम इत्थी खत्म हुआ दा दिया इजाजत, राम राम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7 बजने को है थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना है तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है, नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है ये पहाड़ी देश गान, जिसे गाया है लेखराम ओंकार लाल और साथियों ने।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा। आज का विषय है किसान सशक्तिकरण।
4: This is Akashwani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants are Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, KV Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator is Sonu Sood.
5: Ye Akashwani hai. Prastut hai vishesh shrinkhala. Iske antargat aaj suniye. मोदी सरकार के 12 साल, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार में MSP और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार KV प्रसाद व प्रभुदत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
6: Over the past 12 years, empowering India's Andatas, agricultural policy has widened its scope beyond welfare support to focus on structural and sustainable reforms which have strengthened productivity, income security, market access, modern infrastructure and institutional resilience. Record agricultural output, smart irrigation, easier credit, stronger insurance coverage and surged agricultural exports and allied sectors have empowered the farmers like never before, moving towards a more diversified, technology-driven and farmer-centric agricultural ecosystem. To discuss the various aspects of this robust 12-year journey of farmers' empowerment, the targeted interventions at the policy level, we have with us three distinguished guests: Mr. Binod Anand, member of government's high-powered committee on MSP and agricultural reforms, and senior journalists Mr. KV Prasad and Mr. Prabhudat Mishra. A warm welcome to you gentlemen on Akashwani.
7: Thank you very much.
8: Thank you. Namaskar.
6: So we start with you, Mr. Anand. You know, the kind of transformational changes that we have seen in Indian agriculture over the past 12 years, the way the agricultural production has gone up, the productivity has grown by leaps and bounds, the exports have shown very, very robust figures. Can you tell us, according to you, what are the three major areas of the agricultural ecosystem which you feel have received the maximum reforms, the most significant and the most crucial reforms in these 12 years?
8: Certainly. Many thanks for inviting me on this very visionary program we have completed these many years. You see, the thing is that the investment in agricultural and structural reforms in all the sectors, this has given a new different kind of arrangements. GVA especially, which is called the gross value in agriculture, that's in 2014-15, when the government has started this government, it was merely 20.9 lakh crore. Around 21 lakh crore, we can say. Today, it is pumping 49 lakh crore. So it's almost 2.5 times. MSP, we have seen that whatever the previous government has done, 2.5 times of that government is already invested in MSP. There are five commandments over which the structural reform has taken place. First is how to beyond welfare points, that is adding farmers' welfare in the ministry name as per the recommendation of the Swaminathan Committee. The strengthened productivity, income security, the market access given, the kind of infrastructural reforms and institutional resilience. So over these five commandments, government has done a lot of activities. I will go one by one for them for the better understanding of what has been done. You see, in 2014, they started with the Rashtriya Gokul Mission. Thereafter, right. I mean, certainly there are two different ministries has been carved out. Fisheries department have been separated. But when there are Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the Soil Health Card scheme, what the government has thought about in 2016. And the most important one where we need to take a pause is a National Agriculture Market, that is Enam Mission. So through Enam, there is a spot market is very active. And millions of farmers and thousands of businessmen, especially the Adatiyas, are registered over there and doing seamless businesses. Minimum support price, we must have seen, while in 2018, it was 0.1.5 times it has gone up, whatever the recommendations were from A2 plus FL. So these are the few different kind of initiative has taken. The most important among them was the creation of Ministry of Cooperation, where all sort of Sahakar Se Samriddhi has been taken up. Three different multi-state cooperative has been created. One to create an export system, second to create organic farming ecosystem, and third, which is a very important one, to make the export market very robust. So that from the diversification to aligned activities to bioenergy and to creating additional income opportunity, a resilient and integrated agriculture system, this kind of structural reforms have given a big flip. And whatever you are watching at this moment this year, that's a mission for Atmanirbhar in pulses. So these are a few visionary stages which earlier has not been taken up. And yes, these all schemes, what I'm talking about, is administratively quite implementable, and it is environmentally sustainable, economically viable, and most importantly, farmer-centric, and very well diverse and technology-driven. So this is what, in the first response, I have given to you.
6: So Mr. Anand has so extensively outlined the various path-breaking changes which have taken place in these 12 years and what they really mean for the agriculture sector in a nutshell. If we come to you, Mr. Prasad, what do you think are the three most important initiatives of the government in these 12 years which really leap out, which you feel have transformed the Indian agriculture ecosystem and empowered the annadatas of our country and moved our country towards food security?
7: Sunuji, all of us do realize that agriculture is the backbone of a large section of a society. Depends, almost 60% of the population is in this sector. It's a sowing contribution, and the farmers of this country have worked hard through the ages to make India food secure. In fact, just recently, I was talking to High Commissioner of African Nations, South Africa. He was mentioning in the context of the India-Africa Forum Summit, which of course could not take place, that the entire India, the kind of food basket India has, that not only it produces for its own 1.4 billion, but also exports. So he said, it's much more what the population of Africa. I mean, so they said, we're looking to countries like India, which have. So this tells you the long journey our farmers have made in this country. And in the last decade, how much of extra effort is being put in by the government or across the pillars Mr. Anand mentioned in particular, because they are multi-pronged. As far as you said, what are the three takeaways? I mean, there could be many for different people, but I think some of the logistical issues that have been problematic for this country is to ensure irrigation. We are largely still rain-fed irrigation. So the government has been addressing this in multiple, including micro-irrigation. And one of the things is per drop more crop, which is talking of micro irrigation drip. And this has been again going on for almost a little over two decades, because I remember way back in the year 2000 when Mr. Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, he sent a mission under then, I think, Mr. Chandrababu Naidu to work on this. So it has been a constant work in progress that there. I think that one of the technological driven aspect is the Namo Drone DV, which is now using modern technology, as Mr. Anand mentioned about Enam, using the technology for market access. Yes. Now you're using the drone technology by training women to operate as a pesticides, help them in modern farming.
6: Yes.
7: Lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor-intensive sector. Yes. And increasingly, the hands get costly, because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze, mm-hmm, you know, the creation of post-harvest management infrastructure, okay, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the problems that have been affecting this particular sector.
6: ओके मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, जो मैंने अभी मिस्टर आनंद मिस्टर प्रसाद से पूछा वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख 2-3 इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आंकते हैं जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन में?
9: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था वो है एमएसपी का फिक्सेशन। पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था। आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
6: जी,
9: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा। लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है, सबके सामने 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है। शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है, और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है। चना का देख लीजिए, चना ऊपर है। व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है। इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा मतलब 50-100 रुपये नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहाँ पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस। तो लगभग सारे जो रबी क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है,
6: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
9: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो जी। और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू किए, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीज़ें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश किए। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो थी 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे
6: जी,
9: कोई भी स्कीम हो।
6: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
8: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए, इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
3: जी।
8: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था
3: जी।
8: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
6: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरू बात होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
7: सुनो जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस, और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
6: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है। ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
7: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाढ़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
6: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल।
8: देखिए जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
6: जी।
8: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
6: पैक्स जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी,
8: क्रेडिट सोसाइटीज जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
10: तो उनकी जरूरत
8: कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे जैसे मान के चलिए 100 जिले थे तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है। चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस बायोगैस में, और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं और ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही हैं। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात ये है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
10: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए इनका क्या महत्व है?
9: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए पहले भी एफपीओ बनते थे, लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहाँ पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
10: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओस होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
9: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओस को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी। उनको बिजनेस बढ़ाना है और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
10: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
9: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिलमैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं। तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
10: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years, can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
9: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past 2 decades or so. And urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. Mm. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range.
10: Right.
9: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
10: okay,
9: so that the end product also becomes cheaper for the consumers and our inflation is also remain under control.
10: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion
6: on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
7: Thank you.
8: Thank you very much.
9: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया गया ये विशेष कार्यक्रम. हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर. शाम के 7:45 होने को है. थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे.
11: सतत प्रयासरत है प्रदेश सरकार. कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है. और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है. विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है.
12: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है. हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है. स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें.
11: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी.
13: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है. अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए. पहले आज के मुख्य समाचार. राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना आवश्यक. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के मशोबरा में किया प्रदेश के पहले महिला नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पहाड़ों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण बन रहा है प्राकृतिक आपदाओं का कारण. प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग. और कोकसर की ओर से रोहतांग पास जाने के लिए अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी. अब समाचार विस्तार से. राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे जिम्मेदार, संवेदनशील और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित नागरिक बन सकें. राज्यपाल आज शिमला में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति हमारी पहचान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है. राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा केवल

0: एक परीक्षा नहीं बल्कि नई पीढ़ी को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के मशोबरा में महिलाओं के लिए प्रदेश के पहले नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में नशा विशेषकर चिट्टे की चुनौती केवल कानूनी व्यवस्था का विषय नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक, पारिवारिक और मानवीय संकट है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरुआत से चिट्टे की चुनौती को गंभीरता से लिया है और इसे रोकने के लिए आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने संजौली में नवनिर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया।
1: समर फेस्टिवल शिमला का आगाज हर वर्ष होता था, इस बार इस कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम को जोड़ा गया है जो चिट्टा मुक्त वॉलीबॉल प्रतियोगिता का ये आयोजन किया जा रहा है और इसमें 12 हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीमें वो सम्मिलित हो रही है और इसमें चिट्टा मुक्त वॉलीबॉल जो हमारा ये आयोजन है इसके लिए आज शिमला समर फेस्टिवल से आज इसकी शुरुआत। मशोबरा में पहला डी एडिक्शन सेंटर जो हमारी लेडीज है उसके लिए खोला जा रहा है।
0: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्वतों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। रामनाथ कोविंद आज कुल्लू के घुड़दौड़ स्थित ऋषि भूमि योग आश्रम परिसर में नवस्थापित ऋषि भूमि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति और मानव का संबंध अत्यंत गहरा है और हमें प्रकृति का सम्मान करते हुए इसके साथ सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ना चाहिए। 3 दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 का सम्मेलन आज चंडीगढ़ में आरंभ हुआ। इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कर रहे हैं। पठानिया बीती रात ही इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे। उनके साथ विधायक संजय रतन, केवल सिंह पठानिया, नीरज नैयर, राकेश जम्वाल, रीना कश्यप और कमलेश ठाकुर भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कल 9 जून को सम्मेलन में विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय लक्ष्य को पाने में जागरूक नागरिक, समाज और युवा विधायकों की भूमिका विषय पर अपना संबोधन देंगे। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं में और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज ने टांडा मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग के एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर का सरकार द्वारा स्थानांतरण किए जाने का विरोध किया है। डॉक्टर जनकराज ने आज कहा कि एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर के तबादले का हजारों मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस तबादले को तुरंत रद्द करने की मांग की। डॉक्टर जनकराज ने हृदय रोग विभाग में और अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात करने का भी सरकार से आग्रह किया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि माता पिता का त्याग व समर्पण ही बच्चों की सफलता की असली नींव है। प्रोफेसर सिकंदर कुमार आज सरस्वती विद्या मंदिर शिमला द्वारा मेधावी और प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए आयोजित पारितोषिक वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य किताबी ज्ञान या डिग्रियां हासिल करना नहीं बल्कि एक आदर्श चरित्र का निर्माण करना है। प्रोफेसर सिकंदर ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में चाहे सफलता के किसी भी सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच जाए लेकिन अपने गुरुजनों का स्थान हमेशा सर्वोपरि रखें और उनका सम्मान करें। उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया। प्रदेश कांग्रेस ने नीरज भारती विवाद पर पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक बुलाई है। पार्टी महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में कहा कि अनुशासन समिति की बैठक में नीरज भारती

0: खड़े कर दिए हैं। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब उसके नेता आपसी गुटबाजी में उलझकर जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर इसका उचित जवाब देगी।
1: कांगड़ा से संबंध रखने वाले नीरज भारती जो पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पे जिस तरह से आरोप लगाए हैं, किस तरह से सूट केस में हिमाचल प्रदेश से पैसे इकट्ठे करके दिल्ली जा रहे हैं या मुख्यमंत्री के कार्यालय में बंट रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में इसलिए नहीं लाया कि वो इस तरह के कार्य, इस तरह की कुरीति करें, और वो आरोप भी इनके अपने लोग जो कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उन पे लगा रहे हैं। जो भी आरोप है वो गंभीर है और हिमाचल की जनता आने वाले 2027 में इसका जवाब देगी।
0: लाहौल स्पीति के कोकसर की ओर से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग पास जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी होगा। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जारी आदेशों में कहा है कि बिना वैध परमिट के किसी भी वाहन को पुलिस बैरियर कोकसर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एसडीएम कुनिका एकर्ज ने कहा कि ये निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। इन निर्देशों के तहत रोहतांग पास जाने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है।
2: यही अनुरोध रहेगा समस्त टूरिस्ट जो विजिट कर रहे हैं रोहतांग पास के लिए फ्रॉम कोकसर साइड, कि आप लोग ऑनलाइन पासेस के लिए अप्लाई कर लें rohtangpermits.hp.gov.in पे, अन्यथा पुलिस बैरियर पे आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा।
0: अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक चलने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता अब से थोड़ी देर बाद करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी और अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल जनसेवा, पारदर्शी प्रशासन और समावेशी विकास की एक सशक्त मिसाल है। अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस अवधि में देश ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व प्रगति की है और आम नागरिकों का शासन व्यवस्था पर विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और जवाबदेही शासन की नई संस्कृति स्थापित की है। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिला भाजपा द्वारा आयोजित मोदी सरकार के 12 साल विकास के नाम कार्यक्रम को भी संबोधित किया। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में फिर से मौसम के बिगड़े तेवरों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को राज्य के 4 जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश के मैदानी इलाकों में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी शिमला में भी दिन के समय लोगों को कड़क धूप का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि यहां सुबह शाम मौसम सुहावना बना हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना आवश्यक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के मशोबरा में किया प्रदेश के पहले महिला नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा पहाड़ों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण बन रहा है प्राकृतिक आपदाओं का कारण। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग। और कोकसर की ओर से रोहतांग पास जाने के लिए अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण।
5: एफिलिएटेड टू

0: एचपी यूनिवर्सिटी
1: यूजीसी से मान्यता प्राप्त हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
3: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिस ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
4: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद के अंतर्गत विशेष वार्तालाप का प्रसारण किया जाएगा।
6: आकाशवाणी है, आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका, प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
7: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ ये विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
8: नमस्कार, थैंक यू।
7: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन PTI के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो TV से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूं।
9: नमस्कार, यहां आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी, इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी, यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं, और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
0: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना, और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहां आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ, आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी, अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर टीवी चैनल्स। विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना। आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है। यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
9: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, इतनी गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये PTI के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ाया भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
8: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर्स क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा। मनोरंजन का साथ, महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार, जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकी नंदन पांडे,
9: रामानुज प्रसाद सिंह,
8: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पमेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए, लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का, और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा सीएम डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
9: अच्छा।
8: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म
9: जी।
8: तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजी ने कहा सर हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सेटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड उसका फॉलो अप क्या है। तो अब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
9: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लगने लगा शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको आज सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो।
10: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
9: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है
10: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहाँ महात्मा गांधी आए थे
9: जी।
10: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषाओं के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खासतौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक। कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न कटोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
9: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ, नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे एक तरह से, हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो, तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवा अवस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे कि इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
0: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन, उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करेंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं, और इन कार्यक्रमों को हर छात्र युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं।
9: तो
0: हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो,
9: कवियों को, पंत जी हो, सबने, महादेव वर्मा, सबने,
0: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद। और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे,
9: हाँ।
0: ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
9: बिल्कुल, स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे, उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की, तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से, अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गया, लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मैटर रिकॉर्ड हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से बात करते थे, लोगों से भी बात करते हैं। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए, वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
8: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था, जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर, हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वार कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया, और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर, सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर, तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है, और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है, और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
9: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा, उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है, पहले एक जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी, लेकिन आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल से मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
10: देखिए आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट, और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
9: बिल्कुल।
10: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है, और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
9: तो अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
11: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ। रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं-12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंडन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
9: जी टंडन साहब,
8: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर ना और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है, सरकार के पक्ष का भी नहीं है। और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है, मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉयश वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
0: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है,
9: बिल्कुल,
0: तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्ज्वल होगा।
9: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछना चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
12: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद रेडियो वाला ही है और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
9: इसीलिए रेडियो वाला आपका नाम है।
12: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
0: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात

0: गई थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का, वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था, उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी, आप पूछिए सवाल।
2: जी नमस्कार, मैं
1: नमस्कार।
2: डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन। तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है, वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाएं, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं,
0: विविध
1: और यहाँ
0: भारती
1: भी बहुत
0: पे
1: सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
0: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: सखी संगीत चल
0: प्रोग्राम
1: रहा
0: है,
1: है। महिलाओं
0: अभी भी
1: को
0: चल रहा है।
1: अचार बनाना, ऐसी घर के चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग्य कार्यक्रम उसमें जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कभी पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कर रहे। वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी, मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब, कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को, और क्या उनका रहता था?
3: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में, सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ। इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है, और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: नहीं, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर है इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के
3: देखिए
1: प्रति।
3: जैसे जैसे समय बदलता गया, तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा, और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है,
1: बिल्कुल।
3: और जितने लोग भी कार से सफर
1: सुबह
3: करते
1: 8 बजे शुरुआत होती है
3: वो तो
1: रेडियो।
3: वो इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पत्रकार होने के नाते भी, कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का, तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं, तो ये जो सुविधा आई है, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं कर
1: बिल्कुल।
4: सकता। नमस्कार, मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
1: अच्छा।
4: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे, सरदार जी होते थे। लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया, मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है, आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
5: मैम, मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है, उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
0: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और PhD रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स थे, उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप, पुराना भाषण सुनना है, विशेष रूप से आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
1: बड़े-बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
0: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी का अभी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी हैं अपने मेरे कवि बनने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
6: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
7: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
8: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर 8:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार संध्या।
9: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इजराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
10: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
9: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
11: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया

0: has done this Ayushman Bharat.
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
2: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपये और घायलों को 50,000-50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपये और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपये देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख

0: खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उन्हें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
5: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम

में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बूंद जो बन गई मोती। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, भरत व्यास के बोलों को सुरों में ढाला सतीश भाटिया ने।

0: वर्मा मलिक के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था, महेंद्र कपूर को आपने सुना, फिल्म थी दिल और मोहब्बत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: पाकीज़ा इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल थे, गुलाम मोहम्मद का संगीत था और यही थी आपके लिए इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। कार्यक्रम बस कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज बात एक ऐसी अदाकारा की जो अपने अंदाज से जितना लुभाती है उससे ज्यादा भाती है उनके फिटनेस की चमक। अपनी मौजूदगी से ही वो कर देती हैं पॉजिटिविटी की बौछार और दिल ये कह उठता है,
1: चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।
0: जी हाँ, आज बात 3 दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी की।

शिल्पा शेट्टी, जिन्हें दुनिया भर में उनकी फिटनेस से तो पहचान मिली ही, साथ ही वो कई अलग अलग सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ी हुई हैं। वो न सिर्फ एक अभिनेत्री हैं, बल्कि फिटनेस गुरु, बिजनेस वुमन, सामाजिक कार्यों की बुलंद आवाज, एक बेहतरीन माँ और पत्नी हैं। शिल्पा जिस अंदाज में घर और बाहर के कामों में संतुलन रखती हैं, वो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। फिटनेस का आलम ये है कि उम्र के 5 दशक पार कर चुकी शिल्पा अपनी उम्र को मात देती नजर आती हैं।

8 जून 1975 को कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी अश्विनी शेट्टी, जिन्हें आज हम शिल्पा शेट्टी के नाम से जानते हैं। उनके पिता सुरेंद्र शेट्टी एक बिजनेसमैन थे और माँ सुनंदा शेट्टी अपने समय की मशहूर मॉडल। अब आप ये सोचें कि शिल्पा को यहीं से फिल्म में जाने की प्रेरणा मिली, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुंबई में पढ़ाई कर रही शिल्पा तो अपने पिता के बिजनेस को संभालने की तैयारी में थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

स्कूल के दिनों में शिल्पा अपनी खूबसूरती को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एक रफ एंड टफ लड़की मानी जाती। अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कैप्टन शिल्पा शेट्टी खेल में खोई रहती। खेल के कारण फिटनेस का सिलसिला बचपन से ही साथ रहा। वही भरतनाट्यम में पारंगत हुई तो वो शुरू से ही डांस में भी अच्छी थी और इसके साथ ही शिल्पा कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। वैसे ध्यान दें तो ये सारी क्वालिटी एक फिल्मी हीरो की छवि दिखाती है। शायद यही कारण है कि शिल्पा भी अपनी अनुशासन से भरी लाइफ के चलते कई लोगों के लिए एक हीरो ही है।

शिल्पा खुद को हीरोइन की तरह नहीं देख रही थी, लेकिन 10वीं पास करते ही मॉडलिंग करने लगी थी। वो कई कमर्शियल्स में भी नजर आती हैं और इस तरह उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म गाता रहे मेरा दिल, जो कभी भी दर्शकों के सामने आई ही नहीं, बल्कि पहली बार शिल्पा बड़े पर्दे पर नजर आई शाहरुख खान के साथ। 1993 की ये फिल्म थी बाजीगर।

बाजीगर में शिल्पा के काम को सराहा गया, उन्हें काम भी मिलने लगा, लेकिन बाजीगर जैसी सफलता के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान आई उनकी बहुचर्चित फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ शिल्पा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म में शिल्पा ने एक डांसर की भूमिका निभाई थी और उनके इस किरदार और उनके इस डांस ने उन्हें एक अलग पहचान दी। शिल्पा के करियर में उन्हें ऐसे कई किरदार और गीत मिले जिनमें उन्हें डांस करते देखा गया और ये गीत हिट भी हुए। कुछ फिल्मों में तो शिल्पा सिर्फ एक गाने के लिए भी आईं, क्योंकि वो डांस उनके ऊपर ही जचता है। फिर वो शूल का गीत हो या दोस्ताना का अंदाज, शिल्पा को आज भी उनके इन डांस नंबर्स के लिए याद किया जाता है।

शिल्पा ने एक्टिंग के गुर सेट पर ही अपने अलग अलग किरदारों को निभाते हुए सीखे, पर एक समय के बाद शिल्पा एक ही तरह के किरदार करते हुए थक चुकी थीं। वो कुछ अलग करना चाहती थीं। शिल्पा जो चाहती थीं, वो उन्होंने कर भी दिखाया। फिल्म जानवर में जब शिल्पा ने ममता ओबेरॉय के रूप में एक माँ के अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख बयां किया, तो दर्शकों की आंखों में आंसू और आलोचकों के मुंह से वाहवाही साथ ही निकले।

रिश्ते फिल्म में शिल्पा का मछुआरन का किरदार उनके डायलॉग्स के अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से एक अलग रंगत में ढल गया। वैसे शिल्पा इससे पहले ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी थी। साल 2000 में आई उनकी फिल्म धड़कन। इस फिल्म में जिस तरह बेबसी, लाचारी, प्यार, जुनून जैसे भावों को शिल्पा ने अपने अभिनय से दर्शकों तक पहुँचाया, लोगों को पर्दे पर शिल्पा नहीं नजर आई तो सिर्फ अंजलि।

शिल्पा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपना नाम कमा रही थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में उनके काम को सराहा गया। वैसे यहाँ ये बताते चलें कि शिल्पा 6 भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। वो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा मराठी, गुजराती, तेलुगु और तमिल भी बोल लेती हैं। उनके अभिनय की भाषा दर्शकों के दिलों तक पहुँचती है।

शिल्पा की हर फिल्म की चर्चा करना तो संभव नहीं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी बात करना जरूरी है। साल 2004 में आई शिल्पा की वो फिल्म जिसे

आज तक देश विदेश में सराहा जाता है। ये फिल्म थी फिर मिलेंगे। शिल्पा ने तमन्ना साहनी के किरदार के जरिए एक एचआईवी पॉजिटिव लड़की के जीवन को लोगों के सामने रखा। ये फिल्म नहीं बल्कि लोगों को एड्स पीड़ितों की परेशानियों और एक समाज के तौर पर हमारे कर्तव्यों को उजागर करने की पहल थी। इस फिल्म से मिली सारी रकम शिल्पा ने एचआईवी पॉजिटिव पीड़ितों के लिए दान दे दी। फिर मिलेंगे को शिल्पा अपनी बेहतरीन फिल्मों में से एक मानती हैं।

शिल्पा का अभिनय लगातार निखर रहा था। वो खुद को एक एक्टर के तौर पर पसंद करने लगी थी। कन्नड़ फिल्म ऑटो शंकर में शिल्पा ने नेगेटिव किरदार यूं निभाया कि उन्हें साउथ के गब्बर सिंह की उपाधि मिल गई। शिल्पा की बेहतरीन एक्टिंग का एक और नजारा मिला। फिल्म थी लाइफ इन अ मेट्रो। शिल्पा को शिखा घोष के किरदार में देख न जाने कितनी महिलाओं ने उसमें अपनी कहानी देख ली।

शिल्पा ने अपनी माँ सुनंदा द्वारा निर्मित इंडियन चाइनीज फिल्म द डिजायर में भी एक रोमांचक भूमिका निभाई। वैसे शिल्पा शेट्टी टीवी में आने वाली शुरुआती फिल्मी सितारों में शामिल हैं। वहीं उन्होंने यूट्यूब ऐप डीवीडी वगैरह की ओर भी पहले कदम बढ़ाया। इसी तरह का एक और जोखिम भरा काम उन्होंने किया जब साल 2007 में वो ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई। पूरे समय कैमरों के सामने रहना आसान नहीं होता। शिल्पा के सामने कई तरह की परेशानियां भी आईं, लेकिन वो डटी रहीं। विनम्रता, सहनशीलता और दृढ़ता को उन्होंने अपना साथी बना लिया और इस शो की विनर बनी।

दोस्ताना के इस गाने में शिल्पा थिरकती नजर आईं और फिल्म के स्टार से ज्यादा शिल्पा की चर्चा हुई। शिल्पा अपने फिल्मी पर्दे से निकलकर टीवी की दुनिया में छाने लगी। वो कई रियलिटी शोज का हिस्सा बन रही थी, फिल्मों से एक दूरी सी बनती जा रही थी और यही वो समय था जब शिल्पा ने लंबे समय से दोस्त रहे राज कुंद्रा से शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद साल 2012 में शिल्पा पहली बार माँ बनी। उनके बेटे वियान भी अपनी माँ की तरह ही फिटनेस और मार्शल आर्ट के दीवाने हैं। साल 2020 में शिल्पा सैरोगेसी के जरिए दोबारा माँ बनी अपनी बेटी समीशा की। शिल्पा अपने बच्चों को हर त्योहार का आनंद

लंबे समय तक फिल्मी पर्दे से गायब रहने के बाद शिल्पा ने बतौर निर्माता ढिस्क्याओं फिल्म से वापसी की और अभिनेत्री की तरह नजर आई फिल्म निकम्मा और सुखी में। इन फिल्मों में शिल्पा ने कुछ हट के किरदार निभाए। रोहित शेट्टी की ओटीटी सीरीज पुलिस फोर्स में भी शिल्पा के किरदार तारा शेट्टी को सराहना मिली, लेकिन हंगामा 2 में शिल्पा का वही अंदाज देखने मिला जो उनके फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में दिखा था। यहाँ भी शिल्पा एक बार फिर अपने उसी सुपरहिट गाने पर झूमती नजर आई। साथ थे जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी।

वहीं शिल्पा को स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया और यहां उन्होंने चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड अपने नाम किया। शिल्पा अपने ग्लैमरस अंदाज, कातिलाना मुस्कान और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। इन बातों के लिए भी उन्हें कई बार अलग अलग लिस्ट में टॉप पे रखा जाता रहा है।

ये तो मानना ही होगा कि शिल्पा के एक्टिंग और किरदारों से ज्यादा उनके फिटनेस, ध्यान और योग की बातें चर्चा में रहती हैं। उनका मानना है कि योग और ध्यान के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शिल्पा शेट्टी का मूल मंत्र ही फिटनेस है और ये बात उनकी दिनचर्या का भी हिस्सा है। पॉजिटिविटी, परिवार का साथ, योग, ध्यान, संस्कृति से जुड़ाव, जीवन को सरल रखना जैसे कई ऐसे गुण शिल्पा शेट्टी में नजर आते हैं जो उनके फैंस भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं। ये बातें उन्हें एक रोल मॉडल तो बनाती ही है, साथ ही लोग खुद को उनसे जुड़ा महसूस करते हैं। शिल्पा इसी तरह सरल और सहज बनी रहें और आने वाले कई दशकों तक लोगों को फिटनेस और सकारात्मकता की ओर प्रेरित करती रहें, हमारी यही काम।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था तीन दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रही हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है एक रूपक जिसका शीर्षक है जलधारा, चंबा की रानी सुई पर आधारित ये जानकारी।

0: इतिहास गवाह है, वर्षों से मनुष्य मानवता के उत्थान में अपना योगदान देता रहा है। बलिदान के अद्भुत स्वरों से मानवीय इतिहास के पन्ने गुंजित हैं। परोपकार के उच्चतम क्षितिजों एवं सोपानों को तय करने की अद्भुत मिसाल जो चंबा में मिलती है, उसका उदाहरण संभवतः संपूर्ण मानवीय इतिहास में कम ही मिलता है।
1: अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए बलिदान की बात बिरले ही कर पाते हैं। चंबा के शाही परिवार ने प्रजा के कल्याणार्थ न केवल अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया, अपितु अपनी प्रजा तथा रियाया के लिए अन्यतम बलिदान भी दिया, जिसकी मिसाल मानवता के मानस पटल पर आज भी अंकित है।
0: चंबा राज्य की स्थापना से पहले ये रियासत अनेक रजवाड़ों और ठकुराइयों में बटी थी। इनके कर्णधार राणा और ठाकुर कहलाते थे। इनका इतिहास अनेक ताम्र पत्रों में बिखरा पड़ा है।
1: राजा मेरू 680 ईस्वी में मेरू वर्मन के नाम से सत्तारूढ़ हुआ था और अपने पराक्रम तथा समझ से उसने न केवल अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, अपितु अनेक देवालय और शक्तिपीठ भी स्थापित किए।
0: उसी वंश परंपरा में राजा साहिल वर्मन नामक एक शक्तिशाली, सूझबूझ वाला और धर्मपरायण राजा हुआ। इसके राज्यकाल में राज्य की सीमाओं में बढ़ोतरी तो हुई ही, उसने अनेक देवालय तथा मंदिर भी बनवाए।
2: महाराज, आपकी चिंता का कारण मैं हूं। हाँ महाराज, स्त्री की शोभा पति और पूर्णता संतान के साथ ही होती है, पर मेरे भाग्य में संतान का सुख न जाने कब पूर्ण होगी हमारी ये इच्छा।
3: महारानी, समय बलवान है और हम सब भाग्य के हाथ के खिलौने। समय से पहले और भाग्य से अधिक हमें कुछ भी नहीं मिलता। काश कोई होता जिसे अपना ये राजपाट सौंप कर मैं अपने कार्यों से मुक्त हो जाता। बस यही एक इच्छा रह गई है।
1: संयोग से भरमौर में योग में निपुण 84 साधुओं का आगमन हुआ। राजा रानी ने न केवल उनकी सेवा ही की, अपितु वो जहाँ ठहरे थे उस स्थान पर उनके नाम से मंदिर भी बनवाए। ये 84 मंदिर थे, अतः इस स्थान का नाम अहाता 84 रखा गया। साधु राजा रानी की सेवा भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया।
4: राजन, निसंदेह तुम्हारे जैसा योग्य शासक आज कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी धर्मपरायणता और निश्चल सेवा स्वभाव से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। बस यूं ही सदैव धर्म का पालन करते रहना, तुम्हारे मन का संशय दूर होगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी।
0: साधु महाराज के आशीर्वाद से राजा के यहाँ 10 बेटे और 1 बेटी हुई। एक ही होने के कारण बेटी अत्यंत प्रिय और लाडली थी। खिलती कली सी मासूम, कोमल और अति सुंदर। उसका नाम

0: बदलती रखा गया।
1: जब इस राज्य की राजधानी भरमौर से वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित की गई तो इसका नाम चंपावती के नाम पर चंपा रखा गया, जो कालांतर में चंबा हो गया।
0: इस नवनिर्मित नगर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। नगर को मुख्य नदी धारा के साथ जोड़ती ढकियां थी। इनके साथ साथ मंदिर स्थापित किए गए थे। प्रजा जो धीरे धीरे भरमौर से आकर यहाँ बस गई थी खुशहाल थी, पर पीने वाले जल की बड़ी दिक्कत थी। लोगों को एक लंबा सफर तय कर नदी तक पानी भरने जाना पड़ता था।
1: चंबा नगरी के ऊपर ऊंचाई पर स्रोथा नामक एक जल स्रोत था। स्थापत्य कला में निपुण विद्वानों के सुझाव पर एक कुल के निर्माण से पानी को नीचे नगर तक लाने की योजना बनी।
0: नगर की सुविधा के लिए ये कार्य हो रहा था। सभी लोग इसमें जी जान से जुट गए। बहुत शीघ्र कार्य संपन्न हो गया। एक शुभ दिन देखकर राजा, दरबारी एवं नगरजन स्रोथा पहुंचे।
2: नगरवासियों, हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हमारे कुशल कारीगरों और मेहनती मजदूरों ने मिलजुल कर हमारे जीवन को आज खुशियों से भर दिया है। आज हमारा सपना पूरा होगा, नगर के हर घर को पानी मिलेगा।
3: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
2: महामंत्री, अब देर किस बात की? पूजा अर्चना का कार्य शीघ्र संपन्न करें और कुहल में पानी छोड़कर हमारा और हमारी प्रजा का दामन खुशियों से भर दें।
3: जो आ गया महाराज।

0: पानी कुल में छोड़ दिया गया। पानी को अपने स्वभाव के अनुसार नीचे की ओर बहना चाहिए ना, बहता है मगर कुछ ही दूरी पर धरती में समा जाता है। फिर प्रयास किया गया मगर ये भी असफल ही रहा। बार बार प्रयास मगर यही लगता ये कुल ही जैसे युगों से प्यासी हो।
1: सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर वजह क्या है। वो उत्साह, वो मेहनत एक ही पल में जैसे सब समाप्त हो गया। जल देवता रुष्ट हैं, ये कुल ही कहीं अधूरी तो नहीं, या हमारा प्रयास अपूर्ण तो नहीं, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं ये नगर ही अभिशप्त हो।
0: प्रश्न से केवल प्रश्न ही निकलता। सांझ ढल गई, पंछी अपने अपने बसेरों की राह तलाश रहे थे। थके हारे लोग अब अपने घरों को लौट आए। अगले दिन सुबह राजदरबार का आयोजन हुआ।

0: महामंत्री और इस सभा में उपस्थित सभी सभासदों, आप सभी स्थिति से अवगत हैं। यूं तो हमारे राज्य में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली है, लेकिन पानी के लिए हमारी प्रजा बहुत दुखी है। हमने भरपूर प्रयास किया कि इस जल संकट को दूर किया जाए, लेकिन ना जाने हमारे प्रयास में कहां कमी रह गई।
1: नहीं महाराज, ना आपके प्रयास में कमी रही और ना ही हमारे राज्य के श्रमिकों ने कोई कमी रखी।
0: तो फिर क्या बात है, हमारी प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। ना जाने हमसे कौन सा पाप हुआ है, हमारे किस कर्म की सजा हमारी प्रजा को मिल रही है।
2: महाराज, आपके राज्य में चारों ओर सुख सुविधाएं हैं, नगरजन शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं,

0: पानी का ये संकट निश्चय ही किसी अनहोनी घटना का संकेत है, जिसका पता केवल ज्योतिष द्वारा ही लगाया जा सकता है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो राज ज्योतिषी को बुलाकर इसका समाधान करवाया जाए।
1: हाँ महाराज, हमारी भी यही राय है।
2: महामंत्री, राज ज्योतिषी को इसी समय राजसभा में आमंत्रित करें।
1: जो आ गया महाराज।
3: महाराज की जय हो। आदेश करें महाराज, मैं आपका और इस राज्य का राज ज्योतिषी आपके लिए क्या कर सकता हूं?
2: आप जानते ही हैं राज ज्योतिषी, हमारी प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। पानी के इस घोर संकट को कैसे दूर किया जाए, हमारा तो कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। राज पुरोहित भी इस विषय में कुछ कहने की स्थिति में नहीं। अब आप रमन लगाकर ज्ञात कीजिए कि क्या होने वाला है।
3: जो आज्ञा महाराज, मैं अभी रमन लगाता हूं। 3, 7 ये फिर 3, ये क्या, अब की बार 5। फिर 7, ये भी नहीं, ये क्या है? कुछ मालूम नहीं हो रहा है। महाराज, महाराज क्षमा करें, क्षमा करें महाराज, कुछ मालूम नहीं हो रहा है। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे जैसे मुझे मेरी विद्या धोखा दे रही है, कुछ भी निर्णय लेना मुश्किल हो रहा है महाराज।
2: हे प्रभु, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं?
1: महाराज, आज्ञा हो तो मैं कुछ अर्ज करूं।
2: कहो महामंत्री।
1: हालांकि राजपुरोहित और राज ज्योतिषी भी इस विषय पर कुछ निश्चित नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम सभी का और प्रजा का भी यही मानना है कि शायद जल देवता रुष्ट हैं, कोई दैवीय शक्ति ही कोहल में जल प्रवाह को रोक रही है। अतः जल देवता को खुश करने के लिए किसी यज्ञ का आयोजन किया जाए तो।
2: महामंत्री, आप सबने और हमारी प्रजा ने मिलजुल कर जो निर्णय लिया है वो हमें मान्य है, अतः इस यज्ञ का आयोजन यथाशीघ्र किया जाए।

0: यज्ञ की तैयारी शुरू हुई और पूर्ण आहुति का समय आया। शायद अब जल देवता प्रसन्न होंगे और दूर होगा ये जल संकट। लेकिन उसी रात रानी सुनैना को कुलदेवी के दर्शन हुए।
1: सुनैना, सुनैना, क्यों दुखी हो तुम?
2: माँ, महाराज का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अपनी प्रजा के दुख से महाराज व्याकुल है। पानी का अकाल पड़ा है माँ। कुहल में पानी छोड़ा जाता है और वो धरती में समा जाता है और कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है माँ। न जाने हमसे कौन सी भूल हो गई है।
1: सुनैना, जलधारा बलिदान मांगती है। बलिदान, राज परिवार से बलिदान।
2: क्या कहा? कुहल में पानी आएगा लेकिन राज परिवार से बलिदान। ये मैंने कैसा सपना देखा? यार, राज परिवार से बलिदान।
1: महाराज, महाराज,
2: महाराज उठिए जरा।

0: सुनैना।
1: बहुत घबराई हुई, क्या हुआ तुम्हें? क्या कोई डरावना स्वप्न देखा?
2: नहीं महाराज, स्वप्न डरावना नहीं था।
0: तो फिर क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आखिर बात क्या है?
2: स्वप्न डरावना नहीं था महाराज, कुलदेवी ने दर्शन दिए, कहा कि जलधारा बहेगी, अवश्य बहेगी, अवश्य बहेगी जलधारा।
3: क्या कहा कुलदेवी ने? जलधारा बहेगी, हमारी प्रजा का दुख दूर होगा।
2: हाँ महाराज।
3: कब? कब?
4: और फिर शुरू हुआ एक इंतजार पानी का। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निरंतर बहती एक जलधारा जैसे एक जीवन रेखा ही हो।
1: जलधारा तो तभी बहेगी ना जब राज परिवार से कोई बलिदान देगा। तो कौन देगा बलिदान? राजा?
2: नहीं नहीं, राजा के बिना प्रजा का क्या होगा? और मेरा, क्या मैं महाराज के बिना जीवित रह पाऊंगी? उनके बिना मेरा क्या अस्तित्व रह जाएगा? महाराज का बलिदान? नहीं, ये नहीं हो सकता।
1: तो शहजादे की बलि?
2: चुप रहो तुम, अभी उसने जीवन में देखा ही क्या है। अभी तो वो जवान हुआ है, उसकी शादी होगी, राज्याभिषेक होगा। और
1: चंपावती?
2: चंपावती? अभी तो उसने अपने जीवन का पहला पड़ाव पर भी पार नहीं किया। वो तो हम सब की आंखों की ज्योति है। और फिर कन्या की बलि? पाप, महापाप, भला ये कैसे हो सकता है?
1: तो फिर कौन देगा बलिदान? कैसे दूर होगा ये जल संकट?
2: मैं, हाँ मैं दूंगी बलिदान। मेरा बलिदान होगा, सुहागन बनकर दुनिया से जाऊंगी मैं। अपने राज्य के लिए मेरा जीवन समर्पित होगा। भला इससे बेहतर पल जीवन में और कौन सा हो सकता है? मेरा बलिदान होगा, मेरा। लेकिन मैं क्या करूं? स्वप्न की ये बात राजा को नहीं बताती हूं तो अन्याय होगा, विश्वासघात होगा। और अगर बताती हूं तो किसी ना किसी को तो बलिदान देना ही होगा। क्या करूं मैं महाराज?
0: क्यों उदास हो सुनैना, क्या सोच रही हो?
2: महाराज वही कुलदेवी वाली बात।
0: हाँ सुनैना, कुलदेवी ने कहा है तो हमें पानी अवश्य मिलेगा।
2: लेकिन?
0: लेकिन क्या
2: महाराज? देवी ने स्वप्न में कहा था।
5: सुनैना, जलधारा बलिदान मांगती है, राज परिवार का बलिदान, जल अवश्य मिलेगा। सुनैना, जलधारा बलिदान मांगती है, बलिदान मांगती है।

0: बस इतनी सी बात है? तुम महारानी होकर इतनी सी बात से चिंतित हो गई?
1: बलिदान से नहीं महाराज, इस बात से चिंतित हूँ कि मेरे बाद आप मेरे बिना कैसे रहेंगे। शहजादा माँ किसे कहेगा? और
0: तुम्हें माँ कहेगा वो, तुम ही उसका ख्याल रखोगी, तुम्हें उसका राज्याभिषेक करोगी और उसके सर पे सेरा बांधकर उसे दूल्हा बनाओगी। प्रजा को राजा भी मिल जाएगा और शहजादे को माँ भी।
1: आखिर आप कहना क्या चाहते हैं महाराज?
0: सुने ना, कुलदेवी ने राज परिवार से बलिदान मांगा है ना, तो मैं दूंगा बलिदान। सीधी सी बात है, राजा प्रजा के लिए होता है, उसी का होता है, और मैं अपना जीवन भोग चुका हूँ।
1: लेकिन
0: जितना भी इस जीवन का कार्य था वो संपन्न कर चुका हूँ, सभी सुख सुविधाओं को अंगीकार कर चुका हूँ, अब कुछ भी करना बाकी नहीं रह गया है। शहजादा भी किशोरावस्था को पार कर अपनी जिम्मेवारी को खूब निभा रहा है, अतः कोई चिंता बाकी नहीं रही। मेरे लिए बड़े गौरव की बात होगी, ढलती उम्र में मेरा शरीर मेरी प्रजा के काम आए।
1: नहीं नहीं महाराज, आप मेरा ये अधिकार नहीं छीन सकते। आपके बिना ये सब मेरे किस काम का, और आपके बिना तो मैं चाहकर भी जीवित नहीं रह पाऊंगी।
0: बस बस सुनैना, अब आगे कुछ मत कहो, इस बात का फैसला दरबार में ही होगा।
1: हाँ, लेकिन आप मुझे दरबार में अपना पक्ष रखने देंगे तभी ना?
0: हाँ हाँ, दरबार में तुम भी अपना पक्ष अवश्य रखना। जो फैसला होगा वही हमें स्वीकार्य होगा।
1: ठीक है।
2: सुनहली शाम रात में ढल गई। रात भर रानी के मन में यही बातें आती रही, जलधारा, बलिदान, राज परिवार से, महाराज, शहजादा और नन्ही चंपावती, प्रजा का दुख, पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्षरत लोग। वो अति चिंतित हो गई, सुबह न जाने दरबार में क्या निर्णय होगा।
3: फिर हुई एक भोर सुहानी, लेकिन चहचहाती चिड़ियों की ध्वनि क्रंदन में बदल गई। रानी ने वजीर धौलू को बुलाकर कहा,
1: वजीर जी, आपको इसलिए बुलाया है कि अभी जो दरबार बुलाया जा रहा है मुझे उसमें जाना है। मैंने महाराज से अनुमति ले ली है। आज एक बहुत आपद घड़ी आ पहुंची है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा आज उठने वाला है और इसमें मेरा भाग लेना अति आवश्यक है।
0: आप सभी जानते हैं कि जल संकट के संबंध में हमारे सारे प्रयास विफल हो चुके हैं और आशा की एक किरण जागी है। हमारी कुल देवी ने महारानी को स्वप्न में दर्शन दिए और बलिदान मांगा है।
4: महाराज, महाराज, मैं अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूँ।
5: महाराज, ये अवसर मुझे दीजिए। महाराज, महाराज, आप जिसे भी कहें वो तुरंत तैयार हो जाएगा। महाराज, आप आदेश करें और इस संकट का निवारण करें।
0: नहीं, नहीं, नहीं, आप सब निश्चिंत हो जाएं। कुल देवी ने राज परिवार से बलिदान मांगा है। हाँ, राजा होने के नाते मेरा यह उत्तरदायित्व बनता है कि प्रजा के संकट निवारण के लिए मैं अपना जीवन बलिदान करूं। आप समस्त सभासद एक मत से मुझे इस परोपकार में आहुति देने की अनुमति प्रदान करें।
4: नहीं महाराज, हम ये निर्णय नहीं कर सकते। आप तो हमारे पालनहार हैं, आपके बिना राज्य में अराजकता फैलेगी। हम अपने स्वामी का जीवन बलिदान नहीं कर सकते महाराज।
6: मैं पिताश्री, मेरा जीवन आपकी अमानत है। आप मुझे इसी समय आज्ञा दें और प्रजा के संकट को दूर करें।
0: नहीं शाहजादे, तुम हमारे राज्य का भविष्य हो, आज के लिए भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जा सकता।
7: पिताश्री, मैं भी तो आप ही का अंश हूँ। कुलदेवी ने बलिदान मांगा है तो माँ के चरणों में मुझे भेंट कर दो। मेरा जीवन आपके काम आए तो इससे अच्छा क्या होगा।
0: नहीं पुत्री, तुम तो हमारे जीवन की ज्योति हो। हम सबके होते एक नन्ही गली तोड़ दी जाए, एक कन्या का बलिदान, और बेटी तो पिता के घर में अमानत होती। ये सोचना भी पाप है। ये नहीं हो सकता। मैं फिर कहता हूं, आप सब मेरा ये अधिकार मुझसे ना छीने।
8: और महाराज, मेरा अनुरोध आपसे है, मेरे साथ अन्याय ना करें। महाराज, मेरा भी तो कोई कर्तव्य है, अधिकार है। आप मेरी ममता का गला नहीं घोंट सकते और ना ही मेरी मांग सूनी कर सकते हैं। पति के बिना नारी का जीवन सूना हो जाता है और पुत्र के बिना उसका आंचल सूना हो जाता है। आप ना होंगे तो ये वैभव, ये सुख, ये मेरे किस काम का महाराज। और यूं भी कुलदेवी ने मुझे दर्शन दिए हैं। मैं अपना परिवार छोड़कर आपके परिवार में

0: शामिल हुई हूँ। आप मुझे पराया मत कीजिए महाराज, ये जीवन आप ही का है, आपके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई मायने नहीं। मेरी विनती है महाराज, मुझे अपना बलिदान करने की अनुमति देकर सुहागिन ही रहने दें और सुहागिन के रूप में ही इस दुनिया को छोड़ने की अनुमति दें।
1: ये तो ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत ऐसे नहीं हो सकता। रानी रानी रानी रानी बोली जाती है।

0: राजा का मन उदास था और आंखें नम। रानी सजी संवरी सखियों के साथ नंगे सिर बलौता गांव की ओर चल पड़ी, जहां स्रोते का जल रुका पड़ा था। प्रजा के कल्याण के लिए वहीं रानी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। और उसी समय आसमान पे बादल घिर आए, बिजली चमकी और रानी सुई एक याद बनकर रह गई। पानी चंबा की कुल में बह निकला, रानी नहीं रही, रहता तो कोई भी नहीं है। पर परोपकार में अपने जीवन को समर्पित करने वाली सुनैना कभी मरी नहीं, वो हर वर्ष जीती है और हमारे दिलों को उद्वेलित कर जाती है।
1: राजा ने रानी की स्मृति में स्रोते से कुछ नीचे, जहां से रानी ने आखिरी बार चंबा शहर को पालकी रुकवा कर देखा था, वहीं एक धर्मस्थल का निर्माण करवाया, जहां हर वर्ष चैत्र मास में मेला लगता है। इस मेले का आगाज एक लाल रंग की पालकी से होता है। इस पर रानी के प्रतीक के रूप में रानी का मुखौटा रखा जाता है। राजघराने के लोग तथा गणमान्य व्यक्ति पालकी को नगर की सीमा तक छोड़ने जाते हैं। इस पालकी के पीछे अपने पारंपरिक अलंकरणों से सज्जित महिलाएं रानी सुई की गाथा गाती हुई चलती हैं।

जी श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये रूपक जिसका शीर्षक था जलधारा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। चांदनी रातें कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और आज भी बहुत सारे रोमांटिक फिल्मी गीत लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, रात के इस हसीन मोड़ पर जहाँ हवाओं में थोड़ी सी कशिश है और आसमान में चांद अपनी पूरी आबो हवा के साथ चमक रहा है, इस समय हम भी आपके साथ हैं और सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं दिल की दिल से इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका शीर्षक है चांदनी रातें। दोस्तों, कुछ गाने महज धुने नहीं होती, वो एक पूरा प्यार का मौसम होता है। और प्यार की जब बात आती है ना, तो ये एहसास वाकई दुनिया की सबसे खूबसूरत नियामतों में से एक है। जब कोई शख्स आपके दिलो दिमाग पर इस कदर छा जाए कि हर ख्वाब उसी के नाम हो जाए, तो ज़िंदगी का हर लम्हा इस खूबसूरत नगमे जैसा लगने लगता है।

जी हाँ दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जब किसी की चाहत में दिल यूं खो जाता है तो दुनिया का हर मंजर खूबसूरत हो जाता है। ये मोहब्बत का जादू है जनाब, जो धड़कनों को एक नया साज दे जाता है। जब दिल में सिर्फ वही एक समाया हो तो आंखों के सपने भी जिंदा हो उठते हैं। इस खूबसूरत एहसास को, इस खूबसूरत जज्बात को यूं ही संभाल कर रखिए, क्योंकि जहां ऐसी सच्ची मोहब्बत होती है ना, वहां जिंदगी खुद ब खुद मुस्कुराने लगती है और आवाज़ यही निकलती है कि मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है।

जी हाँ, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, और प्रेमियों की अगर हम बातें कहें ना, तो हर किसी के अपने एहसास होते हैं। कहीं ये शिकायत होती है कि तुमने मेरा दिल चुरा लिया, और कहीं ये इकरार भी होता है कि मैंने खुद तुम्हें अपना दिल दे दिया। जी हाँ, ये बातें महज शब्दों का ताना बाना नहीं है, बल्कि समर्पण का एक एहसास है। इसमें जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से हार जाने की वो खुशी है जो सिर्फ सच्चे प्यार में ही मुमकिन होती है। तभी तो किसी शायर ने लिखा है कि लोग कहते हैं कि तुम मुझे चुरा ले गए, पर उन्हें क्या पता कि हम तो खुद ही तुम्हारे हो गए।

जी हाँ दोस्तों, जब दो प्यार भरे दिल साथ होते हैं ना, तो कोई भी मौसम प्यार का मौसम बन जाता है। एक ऐसा ही मौसम सन 1973 में आया था, जब फिल्म प्रेम पर्वत के लिए जानिसार अख्तर साहब ने अपनी कलम को मोहब्बत की स्याही में डुबोया और जयदेव जी ने उसे एक ऐसी धुन दी जो आज भी धड़कनों की रफ्तार धीमी कर देती है। जी हाँ, गीत है ये दिल और उनकी निगाहों के साए। इस गीत की खूबसूरती जानते हैं क्या है? इसमें कोई शोर नहीं है। ये उस दौर की बात करता है जब मोहब्बत जुबान से नहीं बल्कि आँखों के साए में रहकर महसूस की जाती थी, जब महबूब का सिर्फ आसपास होना ही ज़मीन को जन्नत बना देता था, जहाँ सिर्फ सुकून है और दिल को ये एहसास ऐसी वादी में ले जाता है जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इस भागती दौड़ती दुनिया को थोड़ी देर के लिए थाम लीजिए और डूब जाइए इस मखमली एहसास में।

इस हद तक मुकम्मल हो जाता है तो इंसान का अपना कोई वजूद नहीं रहता, वह अपने महबूब के वजूद में ही सांस लेता है। तभी तो किसी ने कहा है कि ना मेरा वजूद तेरे बिना, ना तेरी सुबह मेरे बिना, हम इस कदर बंधे हैं एक दूसरे के दिल में कि सांस भी ना आए जुदा होकर तेरे बिना।

जी हाँ दोस्तों, एक वादा हम भी आपके साथ करते हैं कि वक्त बदलेगा, मौसम बदलेंगे, मगर इस आवाज़ का हम सफ़र बनकर आपके दिलों तक हमेशा पहुंचते रहेंगे। इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ